0: सूत क्यों कर रखिए सूत पवे सोए नानक की सूत में उतरे ज्ञान उतरे तो महला पहला
1: मन का सुत लोभ है देव सुत कूड़ अकिस तू वेखना पर त्या पर तन रूप कनी सुत कान पहला इतबार खाए नानक हसात में बदे
0: ਜਾਏ ਜਮਨ ਮਰ

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। थोरी देरि में तव्हां भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तव्हां तबसरो ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ गीत ऐं ग़ज़ल ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िरि में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त असां भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

तव्हां भगत कवरराम साहिब जो सदाबहार आवाज़ु ॿुधी रहिया हुआ। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे तबसरो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 ते UAE जो सरकारी दौरो कंदो। हू UAE जे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां मुलाक़ात कंदो। ॿिन्ही अॻवाननि जे विच में बेतरफ़ी मामलनि, ख़ासि करे ऊर्जा सहकार ऐं गॾोगॾु आपसी दिलचस्पी जे इलाक़नि ऐं अंतर्राष्ट्रीय मामलनि ते वीचारनि जी ॾे वठि जी उमीद आहे। इहे मज़बूत राजनैतिक, सांस्कृतिक, इकनॉमिक्स ऐं माण्हुनि जे लाॻापन जे बुनियाद ते बेतरफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप खे अॻिते वधाइण जी तरीक़नि ते चर्चा करण जी उमीद आहे। इहो दौरो ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में अहम वापारी ऐं सीड़पकारी लाॻापन खे वाधारो ॾियण लाइ कमु कंदो। UAE भारत जो टियों नंबर वॾो वापार साथी आहे ऐं गुज़िरियल 25 सालनि में कुल मिलाए सीड़पकारी जो 7 वॾो ज़रियो आहे। UAE 4.5-5 मिलियन खां वधीक यानी हिकु विशाल भारतीय समाज जा माण्हू हुते रहिया आहिनि। हिन करे उहो दौरो उन्हनि जे भलाई ते चर्चा करण जो हिकु मौक़ो पिणु हूंदो। पंहिंजे दौरे जे ॿिए में नीदरलैंड जे प्रधानमंत्री श्री राब जेटन जी दावत ते श्री मोदी 15-17 मई 2026 में नीदरलैंड जो सरकारी दौरो कंदो। 2017 में पंहिंजे दौरे खां पोइ ही प्रधानमंत्री जो नीदरलैंड जो ॿियो दौरो थींदो। दौरे दरमियान प्रधानमंत्री हुननि जे महामहिम राजा विलियम अलेक्ज़ेंडर ऐं राणी मैक्सिमा सां मुलाक़ात कंदो ऐं प्रधानमंत्री राब जेटन जे सां ॻाल्हियूं कंदो। प्रधानमंत्री जो दौरो आला सतह, रक्षा, सुरक्षा, नया वीचार ऐं जुदा जुदा खेत्रनि में वेझे सहकार जी रफ़्तार ते तामीर कंदो, जंहिंमें सिक्योरिटी, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमी कंडक्टर ऐंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर शामिल आहिनि। नई सरकार जे दौर जी शुरुआत में प्रधानमंत्री जो दौरो मल्टी फैसेटेड पार्टनरशिप खे वधीक मज़बूत ऐं वधाइण जो मौक़ो अदा कंदो। नीदरलैंड यूरोप में भारत जे सभ खां वॾनि वापारी मंज़िलुनि मां हिकु आहे। साल 2024-25 में बेतरफ़ी वापार 27.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहियो ऐं भारत जो चौथो वॾो सीड़पकारी मुल्क आहे, जंहिंजी कुल मिलाए FDI 55.5-56 बिलियन अमरीकी डॉलर आहे। दौरे जे टे चरण में स्वीडन साम्राज्य जे प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रियर्सन जी दावत ते प्रधानमंत्री 17-18 मई 2026 ते गोथेनबर्ग स्वीडन जी यात्रा कंदो। प्रधानमंत्री इन खां अॻु 2018 में पहिरियों भारत जे इंडिया नॉर्डिक समिट लाइ स्वीडन जो दौरो कयो हो। श्री मोदी श्री क्रियर्सन सां बेतरफ़ी लाॻापन जी पूरी दायरे जो जाइज़ो वठण ऐं भारत बेतरफ़ी वापार खे वधाइण लाइ सहकार सां जा नवा रास्ता ॻोल्हण लाइ बेतरफ़ी ॻाल्हि ॿोल कंदो, जेको 7.5-75 बिलियन अमरीकी डॉलर 2025 ताईं पहुची चुको आहे ऐं भारत में स्वीडिश FDI जेका साल 2000 खां 2025 में 2.5-825 बिलियन अमरीकी डॉलर ताईं पहुची वई आहे, उन्हीअ सां गॾु ग्रीन ट्रांज़ेशन, AI टेक्नोलॉजियूं, ई स्टार्टअप, लचकदार सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु ऐं माण्हुनि जो माण्हुनि सां लाॻापो बाबति प्रधानमंत्री यूरोपियन कमीशन जी अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन सां गॾु यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री लीडिंग पैन यूरोपियन बिज़नेस लीडर फोरम खे बे ख़िताब कंदा। यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री और लीडिंग पैन यूरोपियन बिज़नेस लीडर फोरम खे बि ख़िताब कंदा। पंहिंजे दौरे जे चौथे चरण में प्रधानमंत्री 18-19 मई 2026 में इंडिया नॉर्डिक समिट ऐं बेतरफ़ी कार्यक्रम लाइ नॉर्वे जो सरकारी दौरो कंदो। ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जो नॉर्वे जो पहिरियों दौरो हूंदो। 43 सालनि में भारत खां नॉर्वे जो पहिरियों प्रधानमंत्री दौरो पिणु हूंदो। प्रधानमंत्री महामहिम राजा हॉलैंड, प्रधानमंत्री महामहिम राजा हैरल्ड ऐं महारानी सोनिया सां मुलाक़ात कंदो ऐं प्रधानमंत्री श्री जोनस गेहरस्टोर सां बि बेतरफ़ी ॻाल्हियूं कंदो। प्रधानमंत्री नॉर्वे जे प्रधानमंत्री सां गॾु इंडिया नॉर्वे बिज़नेस रिसर्च समिट खे पिणु ख़िताब कंदो। उहे इहो दौरो भारत नॉर्वे लाॻापन में थियल तरीक़ी जो जाइज़ो वठण ऐं उन्हनि खे वधीक मज़बूत करण लाइ रस्तो ॻोल्हण जो मौक़ो मुहैया कंदो। वापार ऐं सीड़पकारी ते ध्यानु ॾियण सां भारत ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइज़िंग ऑन इंडिया ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट EFTA करण, उन्हीअ सां गॾु क्लीन एंड ग्रीन टेक एंड ब्लू
इकोनॉमी ते ओहो दौरो बढ़ाही 73 बिलियन अमरीकी डॉलर 2024 जो लगभग बी तरफी व्यापार ए बेतरफी व्यापार में रफ्तार पैदा करण ए नॉर्वे जे सरकारी पेंशन फंड GPFG पारा भारतीय पूंजी बाजार में 28 बिलियन अमरीकी डॉलर जे सरकारी के वधाण जो मौको पिण हुंदो। टियो नॉर्डिक समिट 19 मई 2026 ते ओस्लो में थींदो। प्रधानमंत्री मोदी सा नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड ए स्वीडन जा प्रधानमंत्री उन समिट में शामिल थींदा। हिन समिट में नॉर्डिक मुल्कन सा भारत जे लागापन के वधिक स्ट्रेटेजिक तुल व अर्ज मुहैया कंदा, खास तौर ते टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, डिफेंस, स्पेस एंड द आर्टिक में। पंहिंजे दौरे जे आख़िरी चरण में इटालियन गणराज्य जे प्रधानमंत्री सुश्री जॉर्जिया मेलोनी जी दावत ते प्रधानमंत्री 19 मई 2026 में इटली जो सरकारी दौरो कंदो। प्रधानमंत्री आख़िरी दौरो 2024 में G7 समिट लाइ इटली जो दौरो कयो हो। दौरे दरमियान हू इटालियन गणराज्य जे राष्ट्रपति श्री सर्जियो मेट्रेला सां मुलाकात कंदो ऐं प्रधानमंत्री मेलोनी सां ॻाल्हियूं कंदो। ही दौरो बेतरफ़ी लाॻापन में मज़बूत रफ़्तार जे पिसमंजर में थी रहियो आहे। ॿिन्ही पासनि खां गॾियल स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-19 ते अमल कयो पियो वञे। जुदा जुदा खेत्रनि में सहकार लाइ हिकु समूरो रोडमैप जंहिं में बेतरफ़ी वापार शामिल आहे, जेको साल 2025 में 16.75 अमरीकी डॉलर ताईं पहुची वियो। सीड़पकारी खे वधाइण जंहिंमें 66 बिलियन अमरीकी डॉलर अप्रैल 2000 खां सेप्टेम्बर 2025 जे कुल FDI रिकॉर्ड कई आहे। रक्षा ऐं सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल टू पीपल टाइस। प्रधानमंत्री जो ईंदड़ दौरो भारत जे यूरोप भाईवारी खे वधीक मज़बूत कंदो, ख़ासि तौर ते ताज़ो पूरो थियल भारत EU FTA।

ये रोशनी में क्षेत्रन में खास तौर पे व्यापार और सड़ककारी लगापन के मजबूत कंदो तमा तबसरो बुधी रहा हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

त महेश चंद्र जे आवाज़ में गीत ॿुधी रहिया हुआ। हींअर अचो असां कमला केसवानी जी आवाज़ में ग़ज़ल ॿुधूं।

तवा कमला का केसवानी जी आवाज बुधी रहा हुआ हियर पेश आहे खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी छह ॾींहनि जो यूएई नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे एंड इटली जे दौरे ते अज दौरो शुरू कयो। प्रधानमंत्री ऐं यूएई जे प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान बई एनर्जी कॉर्पोरेशन ते बेतरफ़ी वीचारनि जी डेवट कंदा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चयो त भारत जे चेयरमैनशिप हेठि हिन साल जो मक़सदु ब्रिक्स आहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐं हिन जे चाइनीज़ मनसब ज़ी जिनपिंग बीजिंग में ॻाल्हि कई। भारतीय नेवल शिप आई एन एस सुनन्या

पंहिंजे सोरहं मुल्कनि जे कर्मचारियुनि सां अॼु कोलंबो पहुतो। भारत जी समृद्धि पहल हुई।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसिताईं ॾींदा मोकल सदाईं गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017

200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीती का कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे क्षितिज माथुर के गाए भजन। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतो भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अंधेरों के इतने आदी हो जाते हैं कि रोशनी पर यकीन करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और हर ठहरी हुई जिंदगी में एक दिन बहार भी ज़रूर आती है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि मौसम बदलने में वक्त लगता है, मगर जब बदलता है ना तो जिंदगी पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो आइए, उठिए, मुस्कुराइए, शायद आज जिंदगी की निंदिया से जागी बहार आपका इंतज़ार कर रही है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों जानते हैं, दोस्ती ना सिर्फ हंसने का नाम नहीं है, ये वो रिश्ता है जो गिरने पर उठाता है और जीत मिलने पर सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों को ही होती है। ज़िंदगी की दौड़ में मंजिलें बदलती रहती है, कभी हार मिलती है तो कभी जीत, लेकिन अगर साथ में अपने यार हो ना तो हर सफ़र आसान लगने लगता है। आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं, उन रिश्तों को सलाम करने का है जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़े रहते हैं, और वो होते हैं हमारे दोस्त।

दोस्तों, ये पंछी सिर्फ आसमान में उड़ते हुए पंख नहीं है, ये तो आज़ादी की वो कहानी है जो हर सुबह लिखी जाती है। इनकी चहचहाट में कोई शिकायत नहीं होती, बस एक सुकून होता है, एक भरोसा होता है कि दुनिया अब भी खूबसूरत है। इन्हें देखिए ना, कैसे ये हवा में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। ना कोई डर, ना कोई रुकावट का बोझ, बस एक खुला आसमान और एक अनकही सी हिम्मत। शायद हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए कि उड़ान के लिए मंजिल नहीं, हौसला चाहिए होता है। और अगर दिल में सच्ची चाहत होती है ना, तो फिर कोई भी रास्ता, कोई मिल गया जैसा जादू बन जाता है।

जानते हैं, सुबह की हवा जब पेड़ों से होकर गुजरती है ना, तो पंछियों के सुर खुद ब खुद जग जाते हैं। ये कोई सीखा हुआ गीत नहीं होता, ये तो प्रकृति का दिया हुआ वरदान होता है, जहाँ ना कोई चिंता है और ना कोई कल का बोझ। बस एक पल है जो पूरी तरह जिया जा रहा है। इन पंछियों को देखकर लगता है कि जिंदगी अगर सुर में जी ली जाए ना, तो हर दिन एक

दोस्तों, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुकता हुआ सा लगता है, रास्ते भी अपने नहीं लगते और सपने भी दूर हो जाते हैं। लेकिन असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहां लोग रुक जाते हैं। जो गिर कर भी उठने की हिम्मत रखते हैं ना, वही अपनी कहानी लिखते हैं। हर मुश्किल हमें तोड़ने नहीं आती है, वो हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। और याद रखिएगा,

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये सब तेरे लिए लेकर
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे,

0: जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियाँ वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं।

0: की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच

0: नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सैंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% जरूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों मुमालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तश्दीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इमकान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं, जिससे बाहमी तजारत का इन्हिसार

0: डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से एलएनजी तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत यूएई शराकतदारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तिसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फरोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के दौरान हुई, जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमनो सलामती आलमी इस्तेकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106.68 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की 93.14 रुपये फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.74 रुपये, जबकि फी लीटर डीजल 95.13 रुपये हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटेरियल दरामद करने की इजाज़त देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाज़तनामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
2: DGFT ने पहली दफ़ा दरख्वास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीक नामा उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें पेशगी तस्दीक नामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुतालिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नजरसानी शुदा मुसविदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत व तजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में जवाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था, जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत, जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं, यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन जवाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अदविया एंटी माइक्रोबियल से पाक हों। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है, जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी

0: जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा पांचवें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मस्कूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराए ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोजा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर जिला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर जिले का मशहूर मेला है, जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने अंडमानों निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का ये पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारिजा इजलास को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के लिए कदम उठाएं एस जयशंकर। मुल्क में SIR के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंतखाबी कमीशन ने 16 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में खसूसी जाम नज़रसानी कराने का फैसला किया। अखबारात ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद इन्हसारी पर जोर देने के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के मुअस्सर इकदामात को भी नुमाया जगह दी है। अखबारात में शाया होने वाली बैनुल अक्वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा, शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन के तल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर।

वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नैदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत की ज़ेरे सदारत ब्रिक्स एक ज़्यादा शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्वर्गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं पंडित हरीश तिवारी का गाया राग आसावरी तोड़ी।

स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आपने सुना हरीश तिवारी का गायन। ये पेश कर रहे थे राग आसावरी तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3।

0: अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी के महिलाओं की शिक्षा पर विचार। आलेख रीमा यादव और स्वर गुलनिगार चौधरी।
1: अक्सर हम महात्मा गांधी को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के नायक के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका असली संघर्ष तो सामाजिक न्याय और समानता के लिए था। गांधी जी का मानना था, यदि भारत को वास्तव में स्वतंत्र होना है तो उसकी आधी आबादी यानी महिलाओं को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आना ही होगा। गांधी जी के लिए शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान या ऊंची डिग्रियां नहीं था। उन्होंने एक बार बहुत ही मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा था, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन यदि एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। गांधी जी की नज़र में शिक्षा वो है जो मनुष्य के भीतर सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाए। महिलाओं के संदर्भ में वे इसे और भी गहराई से देखते थे। वे कहते थे कि शिक्षा वो शस्त्र है जो महिला को उसकी गुलामी से मुक्त करती है। पुराने समय में समाज ने महिलाओं के लिए जो लक्ष्मण रेखाएं खींची थी, गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से उन रेखाओं को नया अर्थ दिया। वे अक्सर कहते थे कि शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी महिला और पुरुष की शिक्षा में समानता के समर्थक तो थे ही, लेकिन वे दोनों को एक जैसा बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क बड़ा व्यवहारिक था। वो कहते थे कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का कार्यक्षेत्र प्रकृति ने अलग बनाया है, इसलिए उनकी शिक्षा में भी कुछ भिन्नता होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि महिलाएं गृहबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता और बच्चों के मनोविज्ञान की शिक्षा लें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वे महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद रखना चाहते थे। इसके उलट गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि महिलाएं पुरुष की दासी नहीं हैं, वे उनकी सहचरी हैं, उनकी अर्धांगिनी और समान अधिकारों वाली साथी हैं। वे चाहते थे कि शिक्षा महिलाओं में वो आत्मबल पैदा करे, वे समाज की कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ खड़ी हो सकें। गांधी जी का मानना था कि एक शिक्षित स्त्री ही अहिंसा की सबसे बड़ी दूत बन सकती है, क्योंकि स्त्री में त्याग और प्रेम की शक्ति पुरुष से कहीं अधिक होती है। अब बात करते हैं गांधी जी के सबसे प्रिय प्रतीक चरखे की। बापू के लिए चरखा आर्थिक शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम था। वे जानते थे कि जब तक महिला आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेगी, वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने शिक्षा को कौशल यानी स्किल से जोड़ा था। वे चाहते थे कि हर लड़की आत्मनिर्भर बने। गांधी जी के शब्दों में, चरखा एक ऐसा संगीत है जो नारी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाता है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। ऐसी शिक्षा जो अंग्रेजी में कहें तो हैंड हार्ट हेड का समन्वय करे। वे चाहते थे कि महिलाएं निडर बने। उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन भारत की कोई महिला रात के 12 बजे भी अकेले सड़क पर निडर होकर निकल सकेगी, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा देश वास्तविक रूप में स्वतंत्र हो गया है, और ये निडरता केवल शिक्षा से ही आ सकती है। आज हम 21वीं सदी में हैं। आज महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, देश चला रही हैं, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस रास्ते की नींव कहीं ना कहीं बापू के उन्हीं विचारों में थी जिन्होंने महिलाओं को घर से निकलकर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए

0: साहस दिया। बाबू ने हमें सिखाया कि नारी अबला नहीं है। उनकी नज़र में स्त्री अहिंसा का साक्षात रूप थी। आज हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें गांधी जी के उस विचार को हमेशा याद रखना चाहिए कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण का आधार है। गांधी जी ने एक बार कहा था, स्वराज के निर्माण में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं बल्कि अधिक ही होगा, क्योंकि वे अधिक कष्ट सहन करने की क्षमता रखती हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये बात समय समय पर कही है कि महिलाओं को उनकी निर्भरता के आधार पर वंचित करना या उन्हें समान अधिकारों से वंचित रखना उचित नहीं है, बल्कि शिक्षा महिलाओं को उन प्राकृतिक अधिकारों को बनाए रखने, उनमें सुधार करने और उनका प्रसार करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़के लड़कियों को स्वयं के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा कर सके। महिलाओं को भी उनकी ये सलाह है कि वे सभी अवांछित और अनुचित दबावों के खिलाफ आवाज उठाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी महिलाओं की शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे और उनका ये मानना था कि महिलाओं की शिक्षा के बिना समाज और देश का पूर्ण विकास असंभव है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी के महिलाओं की शिक्षा पर विचार। आलेख रीमा यादव और स्वर गुल निगार।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300।

66.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

अर्ज करता हूं कि मैं क्यों ना चाहूं पनाह भी मेरी बख्शिश भी मुनहसिल तुझ पर, पनाह भी मेरी बख्शिश भी मुनहसिल तुझ पर।

गोशुबर आवाज सब है, कुछ तो फरमाए हुजूर। गोशुबर आवाज सब है, कुछ तो फर...

फुला किसकी निगहबानी में है। शेर इसका नाम, पेट पर पत्थर बंधे होते थे लब।

में है शेरस करना आपके रूए मुबारक की झलक क्या देख ली आईना सदियों से अब तक गुम है हैरानी में है आईना सदियों से अब तक गुम है हैरानी में है शेर पेश कर रहा हूँ कल

0: आप सुन रहे थे हम्द बारी ताला और नाते रसूल करीम, पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद जहीर वकार। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, अब बात करते हैं 15 मई से जुड़ी उन ऐतिहासिक घटनाओं की जिन्होंने अपने समय में दुनिया को नई सोच, नई पहचान और नई प्रेरणा देने का काम किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सरजीत आइए जानते हैं कि आज के दिन की क्या विशेषता है। श्रोताओं, आज की तेज भागती जिंदगी में हम सब अपने काम, मोबाइल और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपने ही परिवार के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय नहीं निकाल पाते।

0: लेकिन सच यही है कि कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, अगर परिवार साथ हो तो हर परेशानी छोटी लगने लगती है। इसी रिश्ते, अपनापन और एकजुटता के महत्व को समझाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में इस दिवस की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य लोगों को परिवार की अहमियत और समाज में उसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना था। सरबजीत, अगर हम देखें तो परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं होता है, बल्कि ये वो एहसास है जहां हमें बिना शर्त अपनापन, भरोसा और सहारा मिलता है।
1: बिल्कुल, और जैसे आपने एहसास का वर्णन किया, सो इमोशनल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, वैल्यूज, सोशल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, दैट्स व्हाट ऑल एम्ब्रेसेस द आइडिया ऑफ फैमिली। एंड एज हैज बीन सो राइटली सेड, इट डिडंट मैटर हाउ बिग आवर हाउस वाज, इट मैटर्ड that there was love in it, and that's what the family brings all about.
0: बिल्कुल श्रोताओं, कभी साथ बैठकर खाना खाना, माता पिता से खुलकर बातें करना या बुजुर्गों की कहानियां सुनना, यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हम अपने परिवार को सिर्फ समय ही नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और अपनापन भी दें, क्योंकि परिवार से बड़ी ताकत शायद दुनिया में कोई नहीं है।
1: All right, moving on in this list of important events that happened on the 15th of May this year, this day rather, 1756, England declared war on France, officially began the Seven Years' War.
0: वहीं 1878 में आज ही के दिन भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इस समाज ने सामाजिक सुधार, शिक्षा और आधुनिक विचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं 1930 में एलेन चर्च यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान में भरने दुनिया की पहली महिला फ्लाइट अटेंडेंट बनी। उन्होंने विमान सेवाओं में महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले थे। और आगे बढ़ते हैं तो 1949 में मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी, का औपचारिक रूप से वृहद राजस्थान राज्य में विलय हुआ था। ये राजस्थान के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और 2005 में लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एयर इंडिया का विमान कनाडा पहुंचा। इसे भारत और कनाडा के बीच विमान सेवाओं की आपसी के वापसी के रूप में देखा गया था। और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज ही के दिन किन खास व्यक्तियों की जयंती या पुण्यतिथि है। शब्दों को भावनाओं की ताकत देने वाले महान साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्रही की आज पुण्यतिथि है। वे उड़िया साहित्य के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक, साहित्य की लगभग हर विधा में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में समाज, मानवीय संवेदनाएं और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृति माटेरा मणिषा आज भी उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उन्हें उड़िया साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया था। कालिंदी चरण पाणिग्रही को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कुछ लोग सिर्फ सेना का नेतृत्व नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही महान सैन्य अधिकारी थे फील्ड मार्शल कोंडेडप्पा मडप्पा करियप्पा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने का गौरव प्राप्त करने वाले करियप्पा ने भारतीय सेना को नई पहचान और मजबूत दिशा दी। वे मानते थे कि एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासन और देश के प्रति समर्पण होता है। सैनिकों के बीच वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक माने जाते थे। देश के प्रति उनकी असाधारण सेवा और योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और आगे बढ़ते हैं, कर्तव्य, साहस और नेतृत्व की मिसाल बने भारतीय नौसेना के जाबाज अधिकारी थे महेंद्रनाथ मुल्ला, जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1926 में हुआ था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वे आईएनएस कुकरी के कप्तान थे। युद्ध के समय जब दुश्मन के हमले में जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, तब उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने की सबसे पहले महत्व दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम समय तक अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और जहाज के साथी समुद्र में समा गए थे।
2: ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा।
0: भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बात हो और क्रांति की गूंज सुनाई न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी क्रांति की आग को अपने साहस और जुनून से और प्रज्वलित करने वाले महान क्रांतिकारी थे।

0: 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की खिलाड़ी को हराया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश है अकवाले ज़री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: एक ऐसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत और रंग व नस्ल के लोग रहते हों, इस एहसास को आम करने की शदीद ज़रूरत होती है कि अपने मजहब, अपनी तहजीब और अपनी ज़ुबान के एतबार से वो लाख दूसरों से मुख्तलिफ हों। मगर एक आम पसंद मुल्क की हैसियत से ऐसे किसी भी मुल्क के तमाम बाशिंदों को मुल्की और कौमी शाहरा पर अपने जुज़वी इख्तलाफात को भूल कर चलना चाहिए और अपने मजहब या अपनी तहजीब से वफादार रहते हुए वसी मानों में कौमी फलाह बहबूद को जरूर पेश निगाह रखना चाहिए। इस्लाम हो या ईसाइत, हिंदू मत हो या बुद्ध मत या कोई और मजहब, सभी इंसान को भाईचारगी की तालीम देते हैं। कुरान करीम में फकरा और मसाकीन के साथ साथ अच्छा सलूक करने और उनकी मदद करने की बात कही गई है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इन फकरा और मसाकीन का मुसलमान होना जरूरी है। कुरान करीम में सैकड़ों मकामात पर जिन समाजी और इंसानी मसाइल में खुदाए ताला की तरफ से रहनुमाई की गई है, उनमें अक्सर व बेशतर इंसान या बनी आदम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और इस तरह पूरे बनी नौ इंसान को बहैसियत इंसान के देखा गया है और बिलवास्ता तौर पर तमाम लोगों को अपना मुखातिब बनाया गया है। अगर कोई शख्स अपने बर्ताव और रवैये से मुनाफरत और असबियत की तालीम देता है तो अक्सर देखा गया है कि खुद उसके अपने मजहब के लोग भी उसे एक अच्छा इंसान नहीं गर्दानते और पूरा माशरा उसे एक मुश्तबा आदमी तसव्वुर करता है। गोयत कहता है कि दो बर्ताव ही ऐसा आईना है जिसमें हर शख्स अपने सही इमेज की नुमाइश करता है और उसी आईने के अक्स से इंसान की वो शख्सियत भी सामने आ जाती है जिसे अक्सर वो मख्फी रखना चाहता है। एक सेकुलर माशरे में हर इंसान के ज़ाती बर्ताव और रहने सहने के अंदाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है, इसलिए कि हर इंसान अपनी जगह पर एक शख्सियत का मालिक होता है। उसके असरात होते हैं, उसके मुतालिकीन उससे सबक सीखते हैं और असर कबूल करते हैं। जब तक ऐसे माशरे का हर फर्द खुद को फ़िरके वाराना हम आहंगी पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार तसव्वुर न करे और इस जिम्मेदारी का एहसास दूसरे लोगों में भी आम न करे, उस वक्त तक ऐसे किसी माशरे में अमन चैन की जिंदगी गुजारनी न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो सकती है। सोचने की बात यह है कि अमूमन लोग जिस मजहब की बिना पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, अगर वो उसी मजहब की तालीमात का गैर मुतालिया करें और अपने मजहब को रूहानी पाकिजगी और दाखिली इल्म दानिश का जरिया और वसीले के तौर पर अपनाएं तो बहुत से मुस्बित नतीजे बरामद हो सकते हैं। फेल्डम का कौल है कि दाखली इल्म दानिश और रूहानी तहारत का शऊर ही इंसानी बर्ताव में एतमाद पैदा करता है और ये एतमाद ही जिंदगी का सबसे अहम सरमाया है।
1: अभी आप सुन रहे थे अकवाले ज़री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। आज का मौजू था यगानगत, रावी थे अब्दुल जब्बार। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश खदमत है गैर फिल्मी गज़लों का प्रोग्राम हुस्न गज़ल। अमीर अहमद की आवाज़ में आज सुनिए शकील बदायूनी और शमीम जयपुरी का कलाम।

0: इस गज़ल के साथ ही आज का हुस्न गज़ल प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम कंट्री वाइड।
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्री वाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था, जो उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा, और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से

0: होने वाले केरला में। ये हर साल हम देते थे, इस साल हमने क्या किए हैं और एक एआई बेस्ड एक मॉडल लाए हैं जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो आईएमडी का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके उसको आईएफएस कहते हैं, आईआईटीएम का ईआरएफ कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है और ये बेस ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि आईएमडी का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ERG ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, उसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप पे तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल

0: किया है। ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है EWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, EWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। ये एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ERG डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNCA जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन होगी।

0: रेंज जो शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं। वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया। उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए, और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगे, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है। उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल सखी फिर उसका गाँव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है, हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो वो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं, और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन उसको देखनी चाहिए, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर

0: फिर अग्रो AWS कह रहे हैं उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे। फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये नगमा अभी आपने सुना, जहरीला इंसान फिल्म से। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश सूरज फिल्म से है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में ब्लैक मेल फिल्म से आप ये नगमा भी आप सुन रहे थे। आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नज़र है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद।
1: दुनियाओं से की

किशोर कुमार की आवाज़ में ये नगमा भी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था और कौन। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। फिल्म है आमने सामने।

दाग फिल्म का नगमा भी अब सुन रहे थे किशोर कुमार का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में है, फिल्म है रूप तेरा मस्ताना।

एक और एक ग्यारह, इस फिल्म का नगमा आपने सुना किशोरदा की आवाज़ में। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए जनाब जीत कौशिक का तहरीर करदा ड्रामा, उन्वान है एक दिल लाख तस्वीरें।

मेरा काम खत्म नहीं हुआ कि तूने फिर कर दिया। अरे राजू बेटे, बहुत तंग करने लगा है। पता है ना कि पापा गए हैं टूर पर, 3 दिन से पहले लौटेंगे नहीं, इसलिए अपनी माँ के नाक में दम कर लो। देती हूँ बाबा, तू देती हूँ। ये तू कर, 6 महीने का होने को आया, पर मजा है कि माँ को जरा सा भी आराम करने दे। बेटा अभी आधे बर्तन भी साफ नहीं हुए हैं। ये दूध पी ले। अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे दूध की बोतल खत्म करते हैं।

और फिर सो जाते हैं। अरे तेरा क्या है, तू तो मूंछों पर ताव देकर फिर सो जाएगा। अरे पर अभी हमारे पिंकी बेटा के मूंछे तो है ही नहीं। अरे सो गया। हाँ अच्छे बच्चे सो जाते हैं, माँ को जगाए नहीं रखते। पिंकी बेटे ये तो बता, कब बड़ा होगा तू? पहले पहिया पहिया चलेगा, फिर दौड़कर, और दौड़कर एक दिन मेरी गोद में थम से आ जाएगा, और फिर और बड़ा होने पर मेरी उंगली पकड़कर बाजार जाया करेगा, छत पार करके सीढ़ियाँ उतर कर। पर अकेला नहीं जाने दूंगी, ये सीढ़ियाँ ना मुराद इन पर से पाँव फिसल गया तो? और एक दिन वो भी आएगा जब हम तुझे स्कूल में दाखिल करेंगे, मैं और तेरे पापा।

0: ये तेरे बिस्किट, ये टॉफी और ये दो रुमाल, एक गंदा हो गया तो?
1: तैयारी तो यूं हो रही है जैसे साहबजादे घोड़ी चढ़ने जा रहे हो।
0: फिक्र ना करो जी, मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा तो तुमसे ज्यादा फपेगा।
1: पर भाई, इसकी बहू को पसंद हम करेंगे?
0: जी नहीं, इसके लिए जान सी दुल्हन लाएंगे हम, गोरी चिट्टी।
1: अब ये काजल का टीका छोड़ो और चल दो, देर हो गई है। स्कूल का दाखला मजाक नहीं, बच्चे का इंटरव्यू, फिर माँ बाप का इंटरव्यू। नमस्कार हेडमास्टर साहब, क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ?
2: आइए आइए, तशरीफ रखिए। क्या नाम है बरखुरदार का?
0: जी जी, पिंकी।
2: पिंकी, ये नाम क्या हुआ भला?
1: हम इसे इसी नाम से बुलाते हैं, बड़ा होने पर अपने लिए खुद नाम चुन लेगा।
2: लाइए फॉर्म दिखलाइए। हाँ, ये रिलीजन धर्म के कालम आपने कुछ नहीं लिखा?
1: लिखा है सर, हिंदुस्तानी।
2: हिंदुस्तानी मज़हब नहीं है, कौमियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, कुछ लिखिए।
1: हेडमास्टर साहब, मेरा बेटा हिंदुस्तानी है, मैं ज़ात पात में यकीन नहीं रखता।
2: तब मुझे अफसोस है मिस्टर, मैं आपके बेटे को दाखिल नहीं कर सकता। आप तो इनकलाबी लगते हैं, नाम नहीं, मज़हब नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी।
0: कर दिया ना तेरे पापा ने शुरू में ही घपला। अब क्या करूं बेटा, वो तो किसी जात पात को मानते ही नहीं। सच पूछे राजे बेटे, मैं भी नहीं मानती। जिसे अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज नहीं, वो किसी धर्म की आड़ लेकर भी इंसान नहीं बन सकता है, बल्कि मजहब के भंवर में खो जाएगा। पिंकी बेटे, धीरे धीरे तू बचपन की मंजिलें तय करता हुआ एक दिन बड़ा हो जाएगा, जमात दर जमात पास करता जाएगा, एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान पास करता, उम्र की सीढ़ियों पर कदम जमाता, हाँ, हाई क्लास तक।
1: आज अखबार कुछ लेट नहीं हो गया? पिंकी बेटा।
3: जी पापा।
1: दांत से नाखून काटना अच्छी बात नहीं बेटे, ये नई आदत कहाँ से सीखी?
0: घबरा रहा है बेचारा, आप भी तो नर्वस हैं, बार बार बाहर जाकर अखबार की राह देख रहे हैं।
1: मैं नर्वस नहीं हूँ, देख लेना हमारा बेटा कुछ ना कुछ पोजीशन जरूर लाएगा। नर्वस पिंकी है?
3: आई एम नॉट नर्वस डैड।
1: यू आर माई सन, नहीं तो चाय क्यों नहीं पीते? फिक्र छोड़ो, चाय खत्म करो। आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज नेचुरल, हम खुद इस दौर से गुजर चुके हैं। स्कूल और कॉलेज के इम्तिहान से और शादी के इम्तिहान से। अखबार आ गया। पिंकी, अखबार उठाना।
3: मम्मी आप?
0: अच्छा बाबा, मैं ही ले आती हूँ। ये ले। हाँ, ये है नतीजा। 400 अपना।

0: चार हजार ना। अरे पिंकी पिंकी देख, मुबारक हो पिंकी बेटे। अरे ये रहा तुम्हारा रोल नंबर, यूनिवर्सिटी में पांचवी पोजीशन।
1: कांग्रेचुलेशन माय सन, यू हैव डन इट। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू।
2: मुझे अफसोस है पापा, आई हैव लेट यू डाउन, आई एक्सपेक्टेड।
0: अरे कैसी बातें कर रहा है रे, हम में तो तुम पर नाज है बेटा। ए जी आप भी आंसू पोंछिए जी।
1: खुशी के हैं आंसू।
0: आप कैसे भी हो।
1: अच्छा बेटा ये बताओ, तुम सब्जेक्ट्स क्या लोगे, क्या बनना चाहोगे?
0: मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा।
1: वाह क्या खूब कही, क्योंकि आपके मायके में ज्यादातर डॉक्टर दुनिया की आबादी खत्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। ये क्या तो हुई भी?
0: क्योंकि आपके मायके में भी भाई मेरा मतलब है कि आपके खानदान में ज्यादातर इंजीनियर हैं, इसलिए मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। ये आपने कैसे फैसला कर लिया?
1: इसलिए कि इसकी रगों में मेरा खून गर्दिश कर रहा है।
0: जन्म से मैंने दिया है, आपने नहीं। आप अपनी दलील रहने दीजिए, ये तो डॉक्टर बनेगा।
1: जी नहीं इंजीनियर।
2: मम्मी डैडी आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मुझे फैसला नहीं करने देंगे। अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या मेरी राय कोई वक्त नहीं रखती?
0: ये हुई ना बात पिंकी बेटे।
1: तुम कुछ भी बनो बेटा, इतना याद रखना, ऐसा कुछ ना बनना, ऐसा कुछ ना करना जिससे तुम्हें नदामत हो और हमारा सर शर्म से झुक जाए।
0: बस और हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। हाँ बेटा, तुम हमेशा सर ऊंचा उठाकर जिंदगी की मसाफत तय करना, अपने डैडी की तरह इंजीनियर या अपने मामा और नाना की तरह डॉक्टर, फैसला तुम करोगे, हम नहीं।
3: अले अले अले ये क्या ले क्या लेटे लेटे घूम गए।
0: अरे कैसे आराम से सो रहा है शैतान।
3: और तुझे सीधा कर दूं, करवट के बल नहीं लेटते बेटा। और छाती पर से हाथ उठा, नहीं तो बुरे सपने आएंगे।
0: अच्छा बेटा मान ले तू इंजीनियर बना तो?
4: मैं भीतर आ सकता हूं इंजीनियर साहब?
2: आइए सेठ चंपकलाल जी बैठिए।
4: धन्यवाद, दिखता है बड़े बिजी हैं। इंजीनियर साहब आप बहुत बिजी रहते हैं, कुछ सेहत का भी ख्याल रखा करिए।
2: मेरी सेहत तो बिल्कुल ठीक रहती है सेठ जी, आप कहिए कैसे जहमत की।
4: अजी आप काम खत्म कर लीजिए, हमारी बात तो हो जाएगी।
2: काम तो चलता ही रहता है चंपकलाल जी।
4: मैं भी यही कहता हूँ इंजीनियर जी कि काम जरूर चलता रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए।
2: ठीक फरमाते हैं।
4: आपकी प्रमोशन पर नई नई पोस्टिंग हुई है
2: जी, तो फिर?
4: तो फिर क्या, आपने पुल के काम को ओके कर दिया?
2: जी नहीं,
4: बस यहीं पर मार खा गया हमारा देश, काम रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम भी चलते रहना चाहिए।
2: यही गलती कर गए आप सेठ चंपकलाल जी। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखलाऊं कि पुल की तामीर कैसी हुई है।
4: अजी आप बैठिए इंजीनियर साहब, पुल मैंने बनाया है, मेरा देखा भाला है, आप तो बस फाइल पर ओके कर दीजिए।
2: क्या आप जानते हैं कि यह पुल दोनों पहाड़ों के बीच बरसाती नाले से ठीक 50 मीटर ऊपर बना?
4: जी हाँ, तो बस ऐसा कीजिए आप कि आप मीटर के हिसाब से ही ओके कर दीजिए, हम तैयार हैं।
2: क्या आप ये भी जानते हैं कि सीमेंट में आपने रेत की कितनी मिकदार मिलाई है?
4: अजी सीमेंट में रेती तो गिराई जाती है, हलवाई का दूध होता तो पानी मिलाते।
2: और आप ये भी जानते होंगे कि इस पुल के ऊपर से भारी वजनी गाड़ियां गुजरेंगी?
4: जी हाँ, और क्या, पुल के ऊपर से क्या कश्तियां गुजरेंगी?
2: मुझे अफसोस है सेठ चंपकलाल, मैं पुल को ओके नहीं कर सकता।
4: संजीदगी से सोचकर फैसला कीजिए।
2: मैं सोचने में और फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ।
4: जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है।
2: किसे?
4: बस इन्हीं सवालों के चक्कर में देश मात खा गया इंजीनियर साहब। अजी जमाना तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, आप भी कीजिए, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है। ये लीजिए, रख लीजिए संभाल कर, पूरे 25,000 हैं, बाकी बाद में।

0: मिस्टर चंपकलाल, आपको ये जुर्रत कैसे हुई?
1: बस यही देश मात खा गया अजी, हमारा तो धंधा है इंजीनियर साहब, लक्ष्मी को देना और घर आई लक्ष्मी को ठुकराना, यूं समझो कि देवी की तौहीन करना है।
0: लगता है काफी मोटी खाल है आपकी।
1: आप भी क्या खूब मजाक करते हैं जी, अजी बड़े मजाकिया हैं आप तो।
0: जी नहीं, मैं तो नहायत संजीदा हूँ।
1: चलिए ये लीजिए, हमारा आपका पहली बार रिश्ता कायम हो रहा है, लीजिए 40,000 लीजिए और बात खत्म कीजिए। दो लाइन ही तो लिखनी है आपको बस।
0: सवाल दो लाइन का नहीं है सेठ चंपकलाल, सवाल जमीर का है और मेरा जमीर आप खरीद नहीं सकेंगे। आप जा सकते हैं।
1: आप नए हैं, मैंने बरसों इसी धंधे में काम करके बाल सफेद किए हैं। आपके ही अफसर की कोठी के लिए 500 बोरी सीमेंट और 20,000 ईंटें मैंने फ्री सप्लाई की हैं, बिल्कुल फ्री, मुफ्त। आप मुझे नहीं जानते, वो मुझे जानते हैं। आप समझते होंगे फ्री का क्या मतलब।
0: गेट आउट मिस्टर चंपकलाल।
1: शुक्रिया, मैं जा रहा हूं।

0: आपने मुझे बुलाया सर?
1: जी हाँ, बैठिए। सिगरेट?
0: शुक्रिया सर, मैं सिगरेट नहीं पीता।
1: कहिए, नई जगह कैसी लगी?
0: जी बहुत ही अच्छी सर, मुझे बचपन से ही पहाड़ों से वालेहाना इश्क है।
1: गालिबन अभी शादी नहीं हुई?
0: जी हाँ सर, अभी नहीं हुई।
1: तुम्हारी उम्र 26-27 बरस तो होगी ही?
0: जी 26।
1: शादी कर लेनी चाहिए। कुछ पैसा जोड़ते भी हो या नहीं?
0: महंगाई इस कदर है सर,
1: इसीलिए जोड़ना चाहिए। फिर अभी तुम्हें शादी भी करनी है
0: सर, इस नौकरी में
1: जानता हूं भाई, भले ही अफसर हूं लेकिन हूं तो सरकारी नौकर। कार है?
0: जी नहीं।
1: आंखें खुली रखकर देखोगे तो कार तुम्हारे इर्द गिर्द है, पैसा भी है। झुक कर उठा लो, बाजू फैलाओगे तो घेरा कम हो जाएगा, पैसा नहीं। उठाते क्यों नहीं?
0: जी
1: अरे भाई, चींटी भी बरसात से पहले अपने लिए दरख्त की दरार में अनाज जमा कर रखती है। जमाने को पहचानते हो?
0: जी पहचानता हूं।
1: नहीं, किसी गलत फहमी या खुश फहमी में मुब्तला हो। 40,000 की रकम ठुकरा कर तुमने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया।
0: सॉरी सर, क्या आपने मुझे इसलिए बुलवाया था?
1: पुल को ओके का सर्टिफिकेट दे दो, ये काम तुम्हें करना होगा।
0: करना होगा?
1: हाँ करना ही होगा। सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा।
0: मैं सोच चुका हूं सर।
1: संजीदा फैसले जल्दबाजी में नहीं किया करते।
0: लेकिन मेरा जमीर।
1: किस जमीर की बात किया चाहते हो नौजवान? किस काम आता है जमीर? जमीर होता क्या है? जमीर के पीछे भागोगे तो भूख और परेशानी ही हाथ लगेगी। तुमने कभी जमीर को देखा है? जमीर की दुहाई देना एक शराब के पीछे भागने के मुतादिफ है। खुद को बहकावा, धोखा, फरेब देना। जमीर? जमीर क्या तुम्हें कार दस्तियाब करा सकता है? जमीर से अच्छी कमीज है जिसे ओढ़कर इंसान नंगा जिस्म तो ढक सकता है।
0: सर यह मेरी दरखास्त है, इसे पढ़कर दस्तखत कर दीजिए।
1: दरखास्त? कैसी दरखास्त?
0: मेरा इस्तीफा। मेरे लिए जमीर की अहमियत है सर, और मैं इस दलदल और कीचड़ से अपने पांव और बकौल आपके अपनी कमीज को साफ रखना चाहता हूं। थैंक यू सर।
2: ठीक किया पिंकी तूने, इस्तीफा दे दिया। तुम्हारे लिए यही मुनासिब था, तुम सच्चाई के रास्ते से नहीं डगमगाए। मेरा सर ऊंचा कर दिया तूने बेटे। देखो तो शैतान को कितने इत्मीनान से सो रहा है, और मैं तेरे ख्वाब देखती जाग रही हूं। मां के दिल को तू अभी नहीं समझेगा रे, ये मेरी ममता है कि तू सो रहा है, मैं जाग रही हूं। घोड़े बेचकर चैन से सो रहा है। अच्छा बता, कितने घोड़े बेच दिए? लेकिन पिंकी बेटे, अगर फर्ज कर लूं तू डॉक्टर बन गया

0: हेलो
1: डॉक्टर साहब, मैं धीर बोल रहा हूँ। अजी सुंदर जी, धीर ऑफरिंग भी वाला
0: ओ धीर साहब,
1: डॉक्टर साहब, बात यह है कि मिसिस धीर की तबीयत काफी नासाज है, इसीलिए इस वक्त मजबूरन आपको तकलीफ दे रहा हूँ। अजी वो बेहद अनईजी सी महसूस कर रही है।
0: अरे धीर साहब, आज सुबह ही तो वो मेडिकल चेकअप के लिए आई थी। आप घबराइए नहीं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त और नॉर्मल हैं। मैं आपको
1: वो जी वो आप तो बखूबी जानते हैं डॉक्टर साहब, उन्हें आप पर बहुत एतमाद है। अगर हम आकर एक बार में देख ले, उनकी जहनी तसल्ली हो जाएगी। और अगर आपकी तशखीस कर
0: मिस्टर धीर
1: तो...
0: मिस्टर धीर, आप मुतमईन रहें, मेरे आने की चंदा जरूरत नहीं है। अगर वो घबराहट सी महसूस कर रही हैं तो आप एक काम कीजिए कि गुनगुने पानी में एक छोटा चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट मिलाते हैं।
1: अरे वो डॉक्टर साहब बात ये कि
0: अरे आप मेरी बात तो सुनिए धीर साहब, वो ठीक हो जाएंगी। और हाँ, एक काम कीजिए, नींद की गोली भी दे दें और सुबह तक वो अरे हाँ सच, वो डिनर में उन्होंने क्या लिया था?
1: बात ये डॉक्टर साहब कि आज उनकी किट्टी पार्टी थी, टीमे के समोसे और वो चावल खाई थी। अजी मैं शाम की बात कर रहा हूँ जी, बात वह की डिनर में तो वो मुश्किल, उन्होंने वो आधा चिकन ही खाया होगा और शायद वो एक डेढ़ परोठा दिया होगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल,
0: दैट्स ऑल। खैर, जैसा मैंने कहा वैसे ही कीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको आना ही होगा, वो ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपके आए बिना बात बनेगी नहीं।
0: मिस्टर धीर, आप तो यूं ही घबरा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि बाहर तूफान भी है। और देखिए प्लीज, इस वक्त आप जिद मत कीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप आ जाइए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप आ जाइए, हम आपको देखिए वो तीन गुना फीस दे देंगे। दरअसल बात यह कि मेम साहब बहुत घबरा रही है।
0: फीस की बात नहीं है मिस्टर धीर, खैर आप बजिद हैं तो पहुंचता हूं मैं।
1: है शुक्रिया शुक्रिया, जल्दी आ जाइएगा
0: जी। क्या मुसीबत है, रात को भी चैन नहीं। और इन अमीर आदमियों के चोंचले और नखरे, आधा फ्राइड चिकन, परांठा और कीमे के समोसे, बहुत खूब। अच्छा खासा शख्स भी बीमार हो जाए। ये तूफान और ये घंटी, देखता हूं कौन है। आइए आइए, बाहर मत खड़े रहिए, भीग जाएंगे आप।
2: भीग तो मैं चुकी हूं डॉक्टर साहब।
0: आप अंदर आ जाइए ताकि मैं दरवाजा बंद कर लूं।
2: जी
0: हाँ, कहिए अम्मा क्या बात है?
2: शाम के वक्त से मेरा पोता मछली की तरह तड़प रहा है डॉक्टर साहब, क्या करूं? उसका बाप मिल में अपनी ड्यूटी पर गया है, मैंने अपने देसी टोटके करके देख लिए, रत्ती भर भी इफाका नहीं हुआ, भट्टी की तरह बदन तप रहा है और 5-6 बार कह भी हो चुकी है। वरना मैं भला इतनी रात गए आपको क्यों तकलीफ देती, उसकी हालत देखी नहीं जाती मुझसे।
0: कितनी उम्र है उसकी?
2: 11 साल का।
0: खाने को क्या दिया था?
2: हम गरीब लोग हैं डॉक्टर साहब, सुबह के बासी चावल थे, उसी में नमक मिर्च मिलाकर हम सबने पेट भर दिया था, उसने भी वही खाए थे।
0: ठीक है, मैं आपको दवा दे देता हूँ, आप दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। सुबह उसे मेरे पास ले आना, मैं देख लूँगा।
2: आपकी बड़ी मेहरबानी होती अगर आप चलकर उसे एक नज़र देख लेते बेटा। आपकी फीस के रुपए तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बालिया है, मैं आपकी और क्या खिदमत करूं डॉक्टर साहब।
0: अम्मा आप अपनी बालियां अपने पास रखिए।
2: तो क्या आप उसे नहीं देखेंगे बेटा?
0: ये आपसे किसने कहा अम्मा? ठीक है जरा रुकिए, मैं चलता हूँ।
2: परमात्मा तुम्हें रहती दुनिया तक सलामत रखे डॉक्टर बाबू, आप देवता है देवता।
0: अरे कहाँ अम्मा, मैं तो सिर्फ इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। अरे रामलाल सुनो,

0: अभी शायद धीर साहब का फोन फिर से आएगा, उनसे कह देना कि मैं एक अर्जेंट केस देखने गया हूँ, सुबह मैं उनके घर चला जाऊंगा, ठीक है? आइए अम्मा चले।
1: आप ये बक्सा मुझे दे दो बेटा।
0: आप चलिए अम्मा, ऐसा वजनी नहीं है ये।
1: शायद रिक्शा तो चौक में मिलेगा आपको, वहां तक
0: आप आइए अम्मा, मैं अपनी गाड़ी में चलूंगा, आप तो बस मुझे रास्ता बताती जाएं।
1: अच्छा, आइए चलो।

0: पिंकी बेटे, तूने वही किया जो मैं चाहती थी, जैसा मैं सोचती थी। अमीर आदमियों के पास सिमोज़र की झनकार है, जिसे सुनकर पीसीयू डॉक्टर दौड़े चले आएंगे। लेकिन बेटे, उस बुढ़िया के यहाँ बिना फीस के कोई ना जाता। अच्छा ये बता, तुझे ये हुनर किसने सिखाया? मेरा मतलब है, तूने उस बुढ़िया की आंखों में मजबूरी, बेबसी, लाचारी कैसे पढ़ ली? पिंकी बेटे, जब तू जवान होगा तो कुदरती बात है, जवानी के उस दौर में किसी को देखकर तेरे दिल में भंवर पैदा होंगे। ऐसा लगेगा कि जिंदगी के आसमान पर कहकशा झुकाई है, इंद्रधनुष के रंग 400 बिखरे हैं, कानों में घंटियां बज रही हैं, और तेरा दिल किसी अबाबिल की मानिंद खुली फिजाओं में पर फैलाकर परवास करने लगेगा। तब तू मुझे बता देगा ना अपनी पहली मोहब्बत की बात, मुझसे मत छिपाना पिंकी। दिल की तख्ती पर पहली मोहब्बत के नकुश कभी नहीं मिटते हैं, उसकी खुशबू अमर बेल की तरह हमेशा जहन से लिपटी रहती है। अच्छा बेटे, ये तो बता, मुझे बता, तेरी महबूबा कैसी होगी? एक किससे मोहब्बत करेगा तू? ऐसी मोहब्बत जिस पर मुझे और तेरे पापा को नाज हो।
1: ए, चुप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं?
2: क्या जरूरी है कि हम अपने अल्फाज खामखा जाया करें?
1: तो क्या चुपचाप का रोजा रख लें? आंखें खोलो। नींद आई है क्या?
2: नहीं, नहीं तो?
1: तो फिर होंठ को चिपके हैं? देखो पिंकी, तुम्हारी खामोशी से मुझे घबराहट होने लगी है।
2: क्या बोलूं? तुम जानती हो कि मेरे पास बातचीत के टॉपिक्स की बहुत कमी है।
1: तो चलो उठो।
2: सुनो, क्या हम पैरों ऐसे नहीं बैठे रह सकते? हम दोनों, मैं, आंखें बंद करके तुम्हारे जानों पर सर रखकर।
1: तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो?
2: तुम ही बता दो, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो?
1: सोचती हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाता।
2: तो बेहतर यही है कि सोचो मत, कुछ भी मत सोचो, आओ बस इन्हीं लम्हों को अपने जहन में समेट लें, शायद ये लम्हे फिर कभी लौट के ना आए।
1: ठीक कहते हो, जब ही तो मैं डर जाती हूँ, अक्सर सहम जाती हूँ सोचकर।
2: एक बात पूछूं?
1: कहो।
2: आओ हम दोनों शादी कर लें।
1: एक तूफान बरपा हो जाएगा।
2: वो क्यों? देखो मैं किसी तूफान से नहीं डरता।
1: मैं बंगाली और तुम
2: पंजाबी, इससे क्या होता है?
1: शादी की बात सुनते ही लोगों की सेहत खराब हो जाएगी।
2: और हमारी सेहत? सुनो, तुम्हारे जहन या दिल में हमारा अपना एक घर हो, ये बात का कभी नहीं आती?
1: मैं एक घर में ही तो रहती हूँ।
2: हमारा घर, और फिर जानती हो घर क्या होता है? घर किसे कहते हैं? घर ना तो किसी चार दीवारी का नाम है और ना ही खिड़कियों और दरवाजों को घर कहते हैं।
1: तो
2: घर उस नशेमंद का नाम है।

0: जहां दिन भर की काविश के बाद सुकून नसीब हो, जिसमें जिसमें अपनी एक मकनातीसी कशिश हो जो हमें बांध कर यकजा रखे, जहां मैं हमेशा तुम्हारे बाजुओं के घेरे में खुद को महसूस करूं, जहां हमें तन्हाई और हिजर के कैक्टस के सलीब पर लटकना ना पड़े।
1: अरे तुम तो अच्छे खासे इंसान थे, ये शायरी का जुनून कब से हुआ?
0: आओ हम अपना घर बसा लें और उसमें अपने ख्वाबों के हसीन बारात सजाएं। मैंने कल ही अपनी माँ से तुम्हारी बात कही थी।
1: क्या कहा उन्होंने बताओ? ए बताओ ना, जल्दी से बताओ ना क्या कहा।
0: कह रही थी कि पापा से बात करेंगी।
1: जवानी में दीवानगी का यही आलम होता है पिंकी। अभी तो मजे से सो, जाग, दूध पी और फिर सो जा। तू ही तो हमारा मुस्तकबिल है, तुझी से तो हमारे ख्वाब जुड़े हुए हैं। माँ के एक दिल में लाखों तस्वीरें उजागर होती हैं। जानते हो आज से सदियों पहले शेक्सपियर ने क्या कहा था? किसी भी नाम में क्या धरा है, ये कहा था उसने। और आज इस एक नाम के कारण इंसान आपस में नफरत की चिंगारियों को हवा दे रहा है। ऐसा ही सादत हसन मंटो ने भी कहा था। उनकी बात सुनाती हूं कि नाम में क्या धरा है। कीमतें और कदरें किस कदर बदल गई हैं। रोशनी की बजाय इंसान क्यों अंधेरों के जंगल में जा रहा है? हां उसकी लिखी बात है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम? दूसरे आदमी ने खौफ और दहशत के मारे डरते हुए कुछ कहा। पहले आदमी ने सुनते ही दूसरे खौफ ज्यादा आदमी के पेट में छुरा घोंप दिया। हां बेटा, ये है नाम की बदकिस्मती, वो नाम जिसे हम जश्न मनाकर अपनी औलाद को दे देते हैं। ये है इस दौर की एक ट्रेजेडी, नाम की ट्रेजेडी। 21वीं सदी की जाने बढ़ता हुआ इंसान एक वहशी दरिंदा होने का सबूत दे रहा है। उसका जहन मफलूज हो रहा है, उसकी रगों में कीना, बुग्स और नफरत का खून सरायत कर रहा है। पिंकी बेटा, यही वो अलामतें हैं जो मुल्क और कौम को कमजोर करती हैं, आजादी की बुनियाद को दीमक की तरह खोखला करती हैं। मुल्क के जिस्म से इस दीमक को तुझे दूर करना होगा बेटा। हमने बड़ी कुर्बानियों, काविशों और जद्दोजहद के बाद आजादी हासिल की थी। इस आजादी को बरकरार रखने के लिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम पर है बेटा।

0: सामईन, अभी आप सुन रहे थे जनाब जीत कौशिक का लिखा हुआ ये ड्रामा एक दिल लाख तस्वीरें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल वाहिद से खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने तजारती और सलामती के उमूर में इख्तलाफात के बावजूद तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों में 21 अफराद हलाक जबकि 45 जख्मी हुए हैं। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने क्यूबा में ईंधन के बुहरान के दरमियान हवाना में क्यूबा के हुक्काम से मुलाकात की है और मकाऊ में सेंड आलमी कप में वुशू में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन

नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात समेत खास तौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तसादी और अवाम से अवाम के राबितों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सतूनों में से है। उन्होंने कहा कि UAE गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% ज़रूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू ज़हबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती LNG कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमूरी तौर पर 4.5 मिलियन मेट्रिक टन सालाना है। उनके मुताबिक भारत UAE से LNG खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहदा अरब इमारात भारत को तकरीबन 40% LNG भी दरामद करता है और यह पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम ज़खायर, काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रेड इंटरेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। UAE आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिसके माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसी तर इश्तराक की अक्कासी होती है। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म मोदी के 8वें दौरे के मौके पर UAE में भारतीय सफ़ीर दीपक मित्तल ने कहा कि एक ऐसे वक्त में, जबकि खित्ते को गैर मामूली वाक़ियात और चैलेंजों का सामना है, तो वज़ीर आज़म का यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत UAE जामे कलीदी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, सरमायाकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फ़रोग देने, इक्तसादी इस्तेहकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फ़रोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के दौरान हुई, जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमन व सलामती आलमी इस्तेहकाम के लिए मरकजी हैसियत के हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। ब्राज़ील के वज़ीर खारजा मौरो वियरा, रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोफ, ईरान के वज़ीर खारजा सैयद अब्बास इराकची और दीगर ममालिक के वज़राए खारजा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास का मरकजी मौजू पायदारी, इख्तिरा तआवुन और इस्तेहकाम है। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़कर 97.77 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपए से बढ़कर 90.67 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106.68 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की 93.14 रुपए फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.74 रुपए जबकि फी लीटर डीजल 95.13 रुपए हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान कराए जाने की तारीख का ऐलान किया है। मज़कूरा इम्तिहान जून की 21 तारीख को होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने तलबा और वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो सिर्फ NTA के मुसद्दिका ज़राए पर ही इन्हिसार करें। इससे कबल ये इम्तिहान 3 मई को हुए थे, लेकिन मुबैना पेपर लीक की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया था। CBI इस मामले की तहकीकात कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती जैसे उमूर पर तत्तुल के बावजूद तजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन पर जोर दिया है। अपनी दूसरी मुद्दतकार के दौरान चीन का सदर ट्रंप का यह पहला दौरा है।
व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों

0: कीव पर किए गए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरतहाल से मुतल्लिक खिदमात के मुताबिक मस्कूरा हमले में घरों, एक स्कूल, जानवरों के इलाज से मुतल्लिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी जिनमें से ज्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थीं। यूक्रेन के दिफाई निजाम ने मुबैना तौर पर ज्यादातर मिसाइलों को नाकारा बना दिया लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरी जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मस्कूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे को लेकर संजीदा नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने इत्तेहादियों से अपील की है कि वो इन हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब दें। क्यूबा में जारी तवानाई के बहरान के दरमियान अमरीका के CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने हवाना में क्यूबा के वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने खुफिया मामलात के इश्तराक, सिक्योरिटी, माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमरीका ने कहा है कि वो क्यूबा के साथ तआवुन के लिए तैयार है बशर्ते कि क्यूबा भी खातिर ख्वाह इस्लाहात के लिए आमादा हो। क्यूबा ने कहा है कि वो इमदाद के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है लेकिन उसने अमरीका से इक्तसादी पाबंदियां हटाने की बात भी कही है। भारतीय वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में 11वें सेंट आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नगानगो को सीधे सेटों में शिकस्त थी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का ये पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 201 रन का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने यह हदफ 6 विकेट और एक गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे। आज लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने तजारती और सलामती के उमूर में इख्तलाफात के बावजूद तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों में 21 अफराद हलाक जबकि 45 जख्मी हुए हैं। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने क्यूबा में ईंधन के बहरान के दरमियान हवाना में क्यूबा के हुक्काम से मुलाकात की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म है आप आए बहार आई।

0: मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी रहेगा। अब सुनिए तारीख साज प्रोग्राम। तहरीर है जनाब मुजीब सिद्दीकी की। मौजू है फने कव्वाली।
1: कव्वाली के फन की कहानी दरअसल नए और पुराने जमानों का एक संगम है। वो जमाना जब हिंदुस्तानी तहजीब के सफर का आगाज हुआ और वो जमाना जब एशिया की अजीम सरजमीन पर हला रोशनी और आवाज की तमाम वसतें और तमाम बरकतें यज्ञा हैं। हिंदुस्तान के तहजीबी सफर की एक मंजिल वो आई जब लफ्ज और सुर दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हुआ। तानपुरे पर सुर छोड़ा गया, तानपुरे की आवाज गीत के पहले शुरू हुई, गीत के दौरान मौजूद रही और गीत खत्म होने के बाद तक गूंजती रही। शायरी और मौसीकी के उफुक पर हिंदुस्तान के रंगों और आवाजों की घनत फैली हुई है।

0: रमा बोल बात सभी कुछ शामिल होता है। रहने तो अमीर खुसरो पर, उनके मुर्शिदों और उनके उस्तादों पर, जो इस बर सगीर को एक ऐसी सिम से मौसीकी दे गए जिससे अहल फन और अवाम बराबर लुत्फंदोज होते हैं। खुसरो के दौर के बाद कव्वाली खानकाहों से निकलकर अवाम के दिलों में आबाद होती चली गई और इसका इस तारीख का सफर आज तक जारी है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। तहरीर थी जनाब मुजीब सिद्दीकी की, मौजू था फ़ने कव्वाली। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को, फिल्म है कोई मिल गया।

0: इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए सुनिए प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था, जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

0: 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
2: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू strengthening cooperation within the BRICS framework. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
1: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे 4 महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आंकते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
3: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही, मुझे लगता है, ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खासतौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले उसके जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी मेंबर के लिए उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खासतौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है या यूएई है या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है
1: जी।
3: और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं, जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है, तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है, उसके अंदर मुझे लगता है कि ब्रिक्स देश जो है उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है, तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की, जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलरिटी की, कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है, उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है, उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की, उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में है, वहां पे

0: उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी, चीन भी एक ब्रिक्स का देश है, उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहां के एम्बेसडर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स के देश, जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है,
1: जी
0: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर,
1: हाँ
0: उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं, और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं, उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है, उससे काफी जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है, और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का, ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, और कल भी इसके बारे में जो है BRICS 20 के बारे में एक सम्मेलन होगा,
1: जी
0: उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है, और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश, वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी, वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है, और पूरा जो मल्टीलैटरल सिस्टम है जो अभी, क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए, चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और बहुत सी संस्थाएं हैं, WTO है, WHO है, तो
1: जी
0: उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए, उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी, और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
1: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा, और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
0: जी, भारत ने तो पहले से कहा है, और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए।
1: जी
0: और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है,
1: जी
0: वो ग्लोबल साउथ के देश है, वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी, और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो यह है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर, उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर, एक मत होकर कुछ बात करते हैं, तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से, क्योंकि क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए, और बाकी जो देश हैं इजिप्ट, रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा, और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
1: जी
0: वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में, और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है, तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है। और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भू राजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, इनफैक्ट जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं, तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा
1: जी
0: हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी, एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो,
1: जी
0: ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है, और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले

0: 20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे, लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो
1: जी
0: इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि इसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे ये है कि उनसे, क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, और जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका, वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारी जो और संस्थाएं भी हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन हो, चाहे WTO वगैरह हो, तो
1: जी
0: सब जगह पे ब्रिक्स के देश, क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं, तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहाँ पे अगर इन सब बातों के बारे में, खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस के सुधार के बारे में कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद. आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है.
0: जी, शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. अब आलमी खबरें नश्र होंगी.
3: ये आकाशवाणी है. अब आप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़े दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने तजारती और सलामती के उमूर में कशीदगी के बावजूद तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है. यूक्रेन पर रूस के हमलों में 21 अफराद हलाक जबकि 45 जख्मी हुए हैं. CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने ईंधन के बहरान के दरमियान हवाना में क्यूबा के हुक्काम से मुलाकात की है. और मकाओ में सैंडा आलमी कप में वुशू में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे. 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे. दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अलाक़वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे. वो मजबूत सियासी, सकाफती, इकतसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल करेंगे. दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है. उन्होंने कहा कि UAE गुज़िश्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% ज़रूरत पूरी हुई है. उन्होंने مزید کہا کہ بھارتی کمپنیوں نے ابوظبی قومی تیل گیس کمپنی کے ساتھ طویل مدتی ایل این جی

कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं जो मजमूई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और यह पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मुकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इमकान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसी तर इश्तराक की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तसादी इस्तेहकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान ताउन को फरोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के दौरान हुई जो कि नई दिल्ली में जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती जैसे उमूर पर तातुल के बावजूद तजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन पर जोर दिया है। अपनी दूसरे मुद्दत कार के दौरान चीन का सदर ट्रंप का यह पहला दौरा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अब नए हुरमूज को तवानाई की तरसील के लिए पूरी तरह खुला रखा जाना चाहिए। ईंधन के लिए मगरबी एशिया पर इन्हसार को कम करने के लिए चीन की तरफ से मजीद अमरीकी तेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की गई। सदर ट्रंप ने चीनी एशिया पर भारी महसूलात को फिलहाल रोक दिया है, जबकि चीन ने नायाब मादनियात की सप्लाई महदूद न करने पर इत्तफाक किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जयशंकर ने बताया कि दोनों लीडरों के दरमियान मगरबी एशिया की सूरत हाल और उसके असरात के सिलसिले में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहमी मफाद के दो तरफा मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के वजराए खारजा की 2026 की मीटिंग में जनाब इराकची की शिरकत को भी सराहा। इम्तिहानात से मुताल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान कराए जाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। मजकूरा इम्तिहान जून की 21 तारीख को होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने तलबा और वालदेन से दरख्वास्त की है कि वो सिर्फ एनटीए के मुसद्दका जराए पर ही इन्हिसार करें। इससे कबल ये इम्तिहान मई की 3 तारीख को हुआ था, लेकिन मुबैना पेपर लीक की वजह से इसे मुस्तरद कर दिया गया था। सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग हुई, जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मौसर निकात से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादले ख्याल किया गया। कीव पर किए गए रूस के मिजाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक, जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरत हाल से मुतालिक खिदमात के मुताबिक मस्कूरा हमले में घरों, एक स्कूल, जानवरों के इलाज से मुतालिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिजाइलें दागीं, जिनमें से ज्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थी। यूक्रेन के दिफाई निजाम ने मुबैना तौर पर ज्यादातर मिजाइलों को नाकारा बना दिया, लेकिन कुछ मिजाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरी, जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मस्कूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे को लेकर संजीदा नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने इत्तेहादियों से अपील की है कि वो इन हमलों का जोरदार तरीके से जवाब दें। क्यूबा में जारी तवानाई बहरान के दरमियान अमरीका CIA के डायरेक्टर रेडक्लिफ ने हवाना में क्यूबा के वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने खुफिया मालूमात का इश्तराक, सिक्योरिटी, माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने तिजारती और सलामती के उमूर में कशीदगी के बावजूद तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों में 21 अफराद हलाक जबकि 45 जख्मी हुए हैं। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने ईंधन के बहरान के दरमियान हवाना में क्यूबा के हुक्काम से मुलाकात की है। और मकाओ में सडाना आलमी कप में वशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा धानिया ने सोने का तमगा जीता है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।

0: देखिए, मैंने भी एक दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई। दुआ ये थी कि मुझे मेरे श्रोता बताएं कि हम कौन सी फिल्म की बात करें, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे कोई सवाल पूछें और आप वो बात हमें बताएं ना। देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि आज की फिल्म कौन सी है, उसके बारे में आपको बता दूंगी। पहले ये बता दूँ, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में आप गाना सुन रहे थे। और आगे बढ़ें, इस सफ़र को हम और आगे ले जाएं, उसके पहले एक बहुत ज़रूरी संदेश सुन लेते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कमेंट्स और आपकी बातें हमारे तक आ रही हैं, हम वो सब बातें करेंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी तक आप प्रोग्राम सुन रहे थे, जी हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं 1982 में रिलीज हुई फिल्म शक्ति की। और अभी आपने जो गाना सुना वो गाना था महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, और हम इस फिल्म के बारे में आपसे और भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये रमेश सिप्पी के निर्माण में ये फिल्म बनी थी, घरेलू बैनर था सिप्पी फिल्म्स का, और इसमें उन्होंने अपने घरेलू निर्माण से बाहर जाकर निर्माता मुशीर रियाजी की कंपनी MR प्रोडक्शंस के लिए इस फिल्म का निर्देशन किया था। अपने निर्माण के दौरान ये फिल्म चर्चा में रही और फिल्म प्रेमियों में इस फिल्म काफ़ी उत्सुकता बनी रही। और बस यही हम बातें और भी बताएंगे आपको इस फिल्म के बारे में, लेकिन आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक वो गाना जो इस फिल्म के हीरोइन, जी हाँ, देखिए दो दिग्गज कलाकार तो थे ही, कौन, जी हाँ, अमिताभ बच्चन और उनके साथ थे महान नायक हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। तो एक तरफ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ थे हमारे साथ कौन, जी हाँ, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। इन दोनों की जोड़ी ने दोबारा कभी साथ में काम नहीं किया। शक्ति फिल्म एक ऐसी थी जिसमें इनको लाया गया साथ में, और इस फिल्म में दोनों को साथ लाया गया था, लेकिन उसके बीच में तकलीफ क्या थी और क्यों कैसे दोनों साथ में काम करने पर राजी हुए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे एक दोस्त, देखिए यहाँ पर भावसार साहब ने हमें इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख करके दी हैं, उसको हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और हमारे जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सब की बातें भी हम आपसे करेंगे। लेकिन एक गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस फिल्म का, एक और गाना जिसको फिल्माया गया है इस फिल्म की नायिका स्मिता पाटिल पर।

जी हाँ, ये आप गाना सुन रहे हैं फिल्म शक्ति से, और गाया किसने था? किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने। और देखिए, हम बात कर रहे हैं आज एक ही फिल्म से में, फिल्म शक्ति की। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस फिल्म के दो दिग्गज कलाकार थे अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, इनके साथ थे राखी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी और अनिल कपूर भी। फिल्म का जो निर्देशन है हमने आपको बताया था रमेश सिप्पी ने किया, लेखक थे वो लेखक जोड़ी, जी हाँ, सलीम और जावेद। और इसके बारे में आपको बता दें एक चीज़ और कि इस फिल्म में ना जो लेखन है वो सलीम जावेद की सफल जोड़ी ने किया था। इससे पहले रमेश सिप्पी के साथ इन्होंने अनेक सफल फिल्में दी हैं, जैसे अंदाज है जो 1971 में रिलीज हुई, सीता और गीता 1972 में, शोले 1975 में और शान 1980। ये सारी फिल्मों का लेखन सलीम जावेद की जोड़ी ने किया था। और रमेश सिप्पी मदर इंडिया की तरह एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें पिता को अपने आदर्शों के लिए पुत्र का बलिदान करते हुए दिखाया जाए। उन्होंने ना शिवाजी गणेशन की एक तमिल फिल्म के सारे अधिकार खरीद कर अपने लेखकों की जो टीम है, जी हाँ, सलीम जावेद के साथ मिलकर उस फिल्म की कहानी को विकसित किया और शक्ति फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार किया। शक्ति फिल्म की जो कहानी और पटकथा और प्रस्तुतिकरण है उसमें सलीम जावेद की जो पिछली फिल्म है, जी हाँ, कौन सी, दीवार 1975 में जो रिलीज हुई थी, उसका ना साफ असर दिखाई देता है, जो स्वयं मदर इंडिया और गंगा जमुना से प्रेरित है ये जो दीवार फिल्म है। तो हम बात कर रहे हैं आज फिल्म किसकी, जी हाँ, शक्ति की। तो और इनकी बात करें और आप लोगों की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, और इनके साथ ही जुड़े हैं हमारे साथ सुरेश जाधव। शक्ति फिल्म हमने सनम को खत लिखा, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है, शुक्रिया। और इनके साथ हैं अनीता जाधव नेहरू चौक पैठण से। फिर है राखी जी ने 70 के दशक में बहुत फिल्मों में अमिताभ जी की नायिका की भूमिका निभाई थी, फिल्म शक्ति में अमिताभ जी की माँ की भूमिका निभाई थी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। और इस फिल्म में उन्होंने क्यों अमिताभ की माँ बनना स्वीकार किया? क्योंकि वो दिलीप कुमार के अपोजिट हीरोइन के रूप में आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अमिताभ की माँ बनना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करना था। और ये हैं हमारे साथ पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी, और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इसके लिए शुक्रिया। फिर हमारे साथ हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी, ज़िला हिसार से, और इन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और गाने तो खैर है ही पसंद। तो संदीप मक्कर हैं, ज्योति मक्कर हैं, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमाल शाहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से, बहुत शुक्रिया आप सभी का। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, इन्हें शक्ति फिल्म के गाने सुनकर अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। देखिए हमारे साथ हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरुलाल सिंह, अविराज सिंह, और इन्हें पता है कि हमारी आज की फिल्म है शक्ति, तो भाई फिल्म तो उसी का है, फिल्म वही है शक्ति, तो गाने भी उसी फिल्म के बजेंगे। तो अब हम आपको जो और एक गाना इस फिल्म का सुनाते हैं, और वो कौन सा गाना है देखिए आप बताइए। हाँ,

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: देखिए सनम को खत लिखा किसने? स्मिता पाटिल ने। और फिर अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे दोस्तों ने हमें क्या क्या लिखा। जी हाँ, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। फिर है हमारे साथ भूषण खेड़ा, फैजल पंजाब, जी हाँ पंजाब से है हमारे साथ। इनके साथ है विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लड्डी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा, वानी खेड़ा और बी खेड़ा, जीवन बुक गीत झुमका गिरा। अच्छा ओके, आपने फरमाइश की है। नहीं आज तो हमको, आज हम आपको सिर्फ शक्ति फिल्म के ही गाने सुनाएंगे। और पंकज देखिए ये हमारे साथ है, राजू अग्रवाल, केशव प्रयाग, प्रियांशी विवेक, और ये हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी वास से। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे और दोस्त, जी हाँ ये हैं गुरमीत सिंह मेहता। अच्छा आपको तो मैं ईमेल शामिल कर चुकी हूँ। तो देखिए हमारे साथ जितने दोस्त जुड़े हैं, तो ये हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। फिर हमारे साथ हैं दीवार और शक्ति का टकराव, मेरा मानना था कि शक्ति की कहानी सलीम जावेद की फिल्म दीवार से काफ़ी मिलती जुलती थी। अच्छा ये लिख रहे हैं कौन, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार। देखिए इस फिल्म में ना कुल जमा 3 ऐसे गाने हैं जिनको आप गाना बोल सकते हैं, और एक गाना है जो बमुश्किल 1 मिनट 1.5 मिनट का है। अब इस फिल्म का जो संगीत है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। और इस फिल्म की अगर हम आपसे बात करते हैं दोस्तों, तो इस फिल्म का जो कथानक है वो एक पुलिस अधिकारी हैं जो हैं दिलीप कुमार, अश्विनी कुमार उनका नाम है। वो अपने सिद्धांतों और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उनकी पत्नी की भूमिका में है राखी, जबकि उनके बेटे विजय का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है। कहानी तब मोड़ लेती है जब बचपन में विजय का अपहरण हो जाता है। अपराधी अश्विनी कुमार से एक अपराधी को छोड़ने की मांग करते हैं, लेकिन वे कानून से समझौता नहीं करते। विजय बच तो जाता है, लेकिन उसके मन में यह बात गहरे बैठ जाती है कि उसके पिता ने अपने कर्तव्य को उससे ऊपर रखा। यही भावनात्मक दूरी आगे चलकर पिता और पुत्र के रिश्ते को तोड़ती चली जाती है। विजय धीरे धीरे अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता है, जबकि अश्विनी कुमार कानून और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। तो ये है इस फिल्म की एक कहानी, कथानक। और इसमें जो एक मास्टर क्लास एक्टिंग रही है दिलीप कुमार की, साथ है अमिताभ बच्चन, एक एंग्री यंग मैन और एक रेस्ट्रेंड, शांत और भीतर दबे भावों वाला अभिनयकर्ता दिलीप कुमार। तो इस फिल्म की बहुत सी विशेषताएं हैं, जिसमें पिता पुत्र के संबंधों पर एक बहुत सशक्त फिल्म है। ये कमर्शियल सिनेमा और सीरियस ड्रामा का एक दुर्लभ संतुलन है। संगीत आर डी बर्मन का है, सलीम जावेद की सशक्त पटकथा है, रियलिस्टिक इमोशनल ट्रीटमेंट इस फिल्म को दिया गया है। और इस फिल्म को फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले, और दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला, और इसीलिए ये फिल्म बहुत याद की जाती है। तो ये था आज के फिल्म शक्ति का एक, आपके साथ हमने इस पूरे सफ़र को बांटा। चलते चलते बस आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं हूँ आपके साथ आज रेडियो हम सफ़र सोनाली। तो दीजिए मुझे यानी अब सोनाली को इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।
0: कम समय में ज़्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ दोस्तों, आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से जुड़े हैं, और हम यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे थे एक ही फिल्म से, मैं आज फिल्म शक्ति की, जो 1982 में रिलीज हुई थी। और अब बस ये सफर यहीं पर हमने आपसे विदा ले ली है, और इस सफ़र को आगे हम किसी और दिन भी जारी रखेंगे। फिलहाल अब हम आपको बता दें, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज संयुक्त अरब अमीरात दे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नाल मुलाकात, मीटिंग ऊर्जा सहयोग ते दवल्ले व्यापार ते केंद्रित। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 3-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਖਨਊ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਹਿਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਦਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਮ ਬਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਸਿਆ। ਉਨੂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ NTA ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੈ ਕਿ ਨੀਟ UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ NTA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਏ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ NTA ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਟ UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੈ। ਉਨੂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ

0: 14 पैसे फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108 रुपये 74 पैसे जबकि फी लीटर डीजल 95 रुपये 13 पैसे हो गया है। दूसरी जानिब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी आज सीएनजी की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया है। अब दिल्ली में फी किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79 रुपये 9 पैसे और गाजियाबाद और नोएडा में 87 रुपये 70 पैसे है। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 84 रुपये 12 पैसे फी किलोग्राम हो गई है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव से नई दिल्ली में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि उन्होंने रियासत से मुतालिक अहम तरक्याती तरजीहात पर तफसीली बातचीत की। वजीर मौसूफ ने सबकी शमूलियत वाली तरक्की और सभी के लिए बेहतर फजाई राबतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तस्वुर के मुताबिक मध्य प्रदेश में हवाबाजी से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और इलाकाई राबतों में इजाफा करने की वजारत के अज़्म को दोहराया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12 21-13 कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमुरा और युइची शिमागोमी को शिकस्त दी। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की 12वें नंबर और ओलंपिक्स में 2 बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागोची को क्वार्टर फाइनल में 21-19 18-21 और 15-21 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूजबी में तवानाई से मुतालिक तावुन और 2 तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमत नामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defense, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEET UG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Ratindra Basu elected as new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. Prime Minister Narendra Modi is in Abu Dhabi on the first leg of a 6-day tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Prime Minister Modi has since met President Sheikh Mohammed bin Zayed with energy cooperation and bilateral trade high on the agenda. The talks took place amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
2: UAE पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। UAE को जिस तरह निशाना बना लिया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करें।

0: customers. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirtha metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय

0: के कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुच्चेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुच्चेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
7: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और आप जानते हैं कि यह वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। जी हाँ, और आज इस प्रोग्राम में सितारों की महफिल लेकर, जिसमें हम एक ना एक सितारा लेकर आते हैं, हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कलाकार नहीं, एक एहसास बन जाते हैं। जब वो मुस्कुराएं तो लाखों दिल खिल उठे, जब वो नृत्य करें तो संगीत भी झूम उठे, और जब वो पर्दे पर आए तो जैसे पूरा सिनेमा जगमगा उठे। तो आज की जो हमारा प्रोग्राम है वो खास तौर पर समर्पित है उस खूबसूरत सी अभिनेत्री को जिनकी मुस्कान में मासूमियत है, अभिनय में गहराई है और नृत्य में जादू है। जी हाँ, आज इनका जन्मदिन भी है। अंदाज़ा तो आपने लगा ही लिया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, किस सितारे की बात कर रहे हैं। और जब आप अंदाज़ा लगा लेते हैं तो आप जानते ही हैं ना कि क्या करते हैं, संदेश भेज देते हैं मेल के ज़रिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। अपने जवाब इस संदेश पर, इस पते पर हम तक पहुँचा दीजिए। फिलहाल हम उस खूबसूरत अभिनेत्री का ये खूबसूरत सा गीत आप तक पहुँचा रहे हैं।

जी आपका इंतजार हम खत्म कर रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित, जिनका आज जन्मदिन भी है। जी हाँ, 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी का बचपन बहुत सादगी और संस्कारों के बीच बीता था। उनके पिता शंकर दीक्षित और उनकी माँ स्नेहलता दीक्षित चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई में आगे बढ़े। बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी ने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई भी की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नृत्य में उनकी रुचि बचपन से ही थी और उन्होंने कथक की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी और यही नृत्य आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी 1984 में फिल्म अबोध से। फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन माधुरी की मासूमियत लोगों की नज़रों में आ गई और शुरुआती दौर आसान नहीं था। कई फिल्में असफल भी रहीं, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और फिर आया साल 1980।

दी और इस फिल्म के इस गाने को जो आप सुन रहे हैं 1 2 3 ने पूरे देश में धूम मचा दी। 90 का दशक जो हर तरफ सिर्फ एक नाम ही दिखाता था, एक नाम की ही गूंज आती थी और वो नाम था माधुरी दीक्षित। उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में दी, दिल, साजन, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास, यानी कि इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद यहाँ पर अगर हमने नाम लेने शुरू कर दिए तो वक्त नहीं बचेगा। और इन फिल्मों में उन्हें अभिनय की दुनिया की सबसे ऊंची कतार में ला खड़ा कर दिया। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म का वो गीत जिस गीत के कारण उनको धक धक गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा था।

अगर बॉलीवुड में नृत्य की बात हो और माधुरी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। धक धक करने लगा, चोली के पीछे क्या है, दीदी तेरा देवर दीवाना या फिर गीत ले लीजिए आप मार डाला। इन गीतों में माधुरी ने सिर्फ डांस नहीं किया बल्कि उनके भाव, लय और अदाओं से उन्हें अमर बना दिया। कई बड़े डांसर्स और अभिनेत्रियां मानती हैं कि माधुरी दीक्षित से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। माधुरी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता। कॉमेडी हो, इमोशन हो, रोमांस हो या फिर गंभीर किरदार, वो हर भूमिका में ढल जाती थी। याद कीजिए उनकी फिल्म मृत्युदंड, लज्जा, इनमें उनके गंभीर अभिनय को भी लोगों ने खूब पसंद किया।

हम नेने से शादी की और कुछ समय के लिए वो यूनाइटेड स्टेट चली गई। लेकिन उनके चाहने वालों का प्यार कभी कम नहीं हुआ और वही प्यार था कि दोबारा उनको फिल्मी दुनिया में ले आया। माधुरी ने कई सारे पुरस्कार भी जीते, उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।

माधुरी दीक्षित। जी हाँ, माधुरी को पेंटिंग का भी शौक है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। खाली समय में उन्हें चित्र बनाना और संगीत सुनना पसंद है। अपने करियर के शिखर पर जब माधुरी पहुंची थी तो उन्होंने डॉक्टर श्री

आपके ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं। नवा शहर पंजाब से गगनदीप थानी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका प्रशांत, प्रियम जी जुड़े हुए हैं, और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ हैं। नागर कोल्हा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल और परिवार के सदस्य हैं। चिरमिरी कुरासिया कालडी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ राम, सहोदर जी साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली, फैज, फराज, फरीन जी हमारे साथ हैं। संजय डिंगे, नमन डिंगे, अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुलरुल गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। अंबेडकर चौक बकोड़ी से उत्तम और स्वराज सिंह, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी, नंदा और हनुमान जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदवासी निगत, परवीन, शरफाज, फरदान और परिवार के सभी सदस्य हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराव सत्तोड़ जी जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश हमारे पास संदीप मक्कर जी का आया हुआ है जालंधर पंजाब से। इनके बाद भी कुछ और संदेश हैं जिनको हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे।

तो दोस्तों, फिल्मों के अलावा माधुरी ने कई डांस रियलिटी शो में जज बनकर नई प्रतिभाओं को प्रेरित किया। उनकी मुस्कान और उनकी विनम्रता आज भी लोगों का दिल जीत लेती है। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा अध्याय है जिसे जितना पढ़ो उतना कम लगता है। उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है, उनका नृत्य आज भी उतना ही मनमोहक है और उनकी अदाकारी आज भी दिलों पर राज करती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि वक्त कह रहा है कि अब और ज़्यादा नहीं। हालांकि माधुरी दीक्षित जी के इतने सारे सुपरहिट सॉन्ग हैं, लेकिन वक्त की कमी के

कारण हम उनको चाह कर भी आपके पास नहीं सुनवा पा रहे हैं। फिर अगली मुलाकात हो गई एक नए सितारे के साथ, एक नई फिल्म के साथ। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए और इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कीजिए।

2026 की मीटिंग के दूसरे दिन एक ओपन सेशन से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन सरगर्मियों की वसत से इस बात की अहमियत का अंदाजा होता है कि सभी रहनुमा तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में कसीन मुल्की तआवुन को मुस्तहकम बनाने में शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैन अल-अक़वामी माली तरीक़ेकार में इस्लाह की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने इस्लाह शुदा कसीर मुल्की निज़ाम की लगातार वकालत की है, जो एक ऐसा मुल्क है जो मौजूदा दौर के हक़ाइक़ की अक्कासी करता है

में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहमी मफाद के दो तरफा मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग में जनाब अराक्ची की शिरकत को भी सराहा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि तलबा हुकूमत की तरजीह हैं और वो उनके तईं हसास हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो तलबा इस इम्तिहान में दोबारा शामिल हो रहे हैं उन्हें अगले महीने की 14 तारीख तक इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नीट UG इम्तिहान अगले साल से मौजूदा OMR पर मबनी तरीक़ेकार के बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके से कराया जाएगा। तालीम के वजीर ने एतराफ़ किया कि NTA को वाज़े इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई बदउनवानी ना हो इसके लिए इम्तिहान के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के इकदाम किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। क्यूबा में जारी तवानाई के बहरान के दौरान CIA के डायरेक्टर रेडक्लिफ ने हवाना में क्यूबा के वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने एक दूसरे को खुफिया मालूमात फराहम की और सिक्योरिटी और माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमरीका ने कहा है कि वो क्यूबा के साथ तआवुन के लिए तैयार है बशर्ते कि क्यूबा खातिर ख्वाह इस्लाहात के लिए आमादा हो। क्यूबा में पाबंदियों के बाइस तेल की सप्लाई में कमी आई है जिससे वहां ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। इससे निमटने के लिए अमरीका ने क्यूबा को 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। ईंधन की कमी से क्यूबा के अस्पतालों स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर असर पड़ा है। क्यूबा ने कहा है कि वो इमदाद के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है लेकिन उसने अमरीका से इक्तिसादी बंदिशें हटाने की बात भी कही है। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि CIA के डायरेक्टर ने सदर ट्रंप का पैगाम उनको पहुंचाया है कि वो क्यूबा के माशी और सलामती के उमूर पर तआवुन के लिए तैयार हैं बशर्ते कि क्यूबा पॉलिसी में तब्दीली करे। कीव पर किए गए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरत हाल से मुतालिक खिदमात के मुताबिक मज़कूरा हमले में घरों एक स्कूल जानवरों के इलाज से मुतालिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिसाइलें दागी जिनमें से ज़्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थीं। यूक्रेन के दिफाई निज़ाम ने मुबैना तौर पर ज़्यादातर मिसाइलों को नाकारा बना दिया लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरी जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मज़कूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे के तईं संजीदा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती जैसे उमूर पर तातुल के बावजूद तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन पर जोर दिया है। अपनी दूसरी मुद्दत कार के दौरान चीन का सदर ट्रंप का ये पहला दौरा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आबनाई हुरमुस को तवानाई की तरसील के लिए पूरी तरह खुला रखा जाना चाहिए। ईंधन के लिए मगरबी एशिया पर इन्हिसार को कम करने के लिए चीन की तरफ से मजीद अमरीकी तेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की गई। सदर ट्रंप ने चीनी अशिया पर भारी महसूलात को फिलहाल रोक दिया है जबकि चीन ने नायाब मादनियात की सप्लाई महदूद न करने पर इत्तेफाक किया है। शिमाल मशरकी जमहूरिया कांगो में एबोला वायरस फूट पड़ने से 35 अफराद हलाक और सैकड़ों मुतासिर हुए हैं जिसकी वजह से ये तशवीश पैदा हो गई है कि कहीं ये बीमारी सरहदों के पार भी न फैल जाए। तकरीबन 246 अफराद के बारे में एबोला से मुतासिर होने का शुबा है। बीमारियों पर काबू पाने और उनकी रोकथाम के अफ्रीका के मरकजों ने बताया कि इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए आज इलाकाई सेहत हुकाम ने एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद की है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12 21-13 कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमोरा और योइची शिमागोमी को शिकस्त दी। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

0: कल रात धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान ने अबू धाबी में तवानाई से मुतालिक तआवुन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने ईंधन के बहरान के दरमियान हवाना में क्यूबा के हुक्काम से मुलाकात की। और बैडमिंटन में भारतीय मर्दों की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश जुबीन नौटियाल की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म का नगमा। नगमा निगार नीलेश मिश्रा, मौसिकार प्रीतम।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए माया फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी मुजीब सिद्दीकी ने।
1: शहनाई की दुनिया में शहनाई बजाने के सिलसिले में एक नाम जिसके सभी मोतरिफ हैं, एक ऐसा फ़नकार जो एक तवील अरसे से इस फ़न के मैदान में अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा है और इस अंदाज़ में कर रहा है कि शायद उसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका। मेरी मुराद उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब से है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। हमें मौका मिला है कि इनसे कुछ बातें की जाएं, अपने सुनने वालों को सुनवाई जाएं इनके फ़न के बारे में, इन्हीं की ज़बानी। तो खां साहब, बिस्मिल्ला आपका नाम है और बिस्मिल्ला शुरू का लफ्ज़ या हरफ़ आगाज़ समझा जाता है
2: जी।
1: शहनाई के बजाने के सिलसिले में लोगों का ख्याल है
2: जी
1: कि आपका नाम हरफ़ आगाज़ भी है और हरफ़ आखिर भी।
2: बहरहाल ये तो खुदावंद आलम का करम है,
1: क्योंकि देखिए ना, शहनाई को जो ये मकाम दिया, खुद शहनाई साज को मैं कह रहा हूँ
2: जी जी,
1: आज जो दुनिया में इसका मकाम बुलंद हुआ वो आम तौर से यही लोगों का ख्याल है और मैं समझता हूँ कि हक बजानी भी कि आपकी ही बदौलत ये मकाम शहनाई को मिला।
2: ये तो दुनिया कहती है और बहरहाल उनके सामने जो चीज़ें आईं वो तो वही कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या मेहनत की है, किस तरीके से रियाज़ किया है और किस किस मुसीबत से इसको हासिल किया है और उनके ज़रिए से मुझ तक मिला, और अल्लाह का करम है आज दुनिया क्या कह रही।
1: सही। अच्छा खान साहब, आपकी शहनाई बजाने में, शहनाई बाज में
2: जी
1: आम तौर से ख्याल होता है कि जैसे जब आपकी शहनाई बज रही होती है कि जैसे गला बोल रहा हो
2: जी,
1: गायकी बज रही हो
2: जी जी,
1: अस्थाई अंतरे का जो उतार चढ़ाव है
2: जी,
1: तो उसमें वो पूरब की ठुमरी वगैरह के लगता सीधे सीधे बोल पढ़े जा रहे हैं।
2: हाँ,
1: तो इसकी वजह क्या है?
2: वजह ये है कि ये शहनाई तो बहरहाल हम लोगों ने बजाया, लेकिन इसके कबल और पुराने ज़माने में सैकड़ों साल पेशतर हमारे यहाँ भी तो गाने ही गाने वाले थे और उनका ताल्लुक ऐसा था कि उस्ताद ताज खां उस्ताद उनके भांजे थे, मोहम्मद हुसैन खां उस्ताद उनके शागिर्द थे हमारे मामू, और हमारे नाना वगैरह ये सब हमारे बड़े मामू सब थोड़ा गाना भी गाते थे, लेकिन शहनाई जो लिया वो गायकी जो थी शहनाई में आ गई। दुनिया के सामने ये है कि साहब शहनाई है, लेकिन उसके जो तरीक़े हैं बहने के, राग शुरू करने के, उसके विचार करने के, और उसके साथ साथ ये कि बढ़त में खरचता रिखब खरचता गंधार कितनी ताने बनेंगे क्या, ये सब उन लोगों का है, करते चले आए। आज हम भी आते हैं मैदान में और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, दुनिया जानती है कि भाई क्या है। वैसे शहनाई तो हर जगह बजती रहती है।
1: सही। वो जो मैंने गायकी वाली बात कही थी ना कि लगता है कि गायकी बज रही है
2: जी,
1: तो ऐसा तो नहीं है कि आपका गाने से भी कुछ खास ताल्लुक रहा?
2: नहीं, हमारे यहाँ तो ये

0: पहली तालीम है कि जो भी हम इसके अंदर करते हैं शहनाई में, वो पहले हम लोगों को सिखाया गया है। अस्थाई अंतरे, ये सब तमाम चीज़ें जबानी रटा के और गवा के उसके बाद सब वो साज में आ गया और हम लोग करते रहते हैं।
1: जिसका मतलब आपने गाना भी सीखा?
0: थोड़ा सा, कोई ये कि गवैया थोड़ी हूँ
1: जी। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप गाना भी अगर गाते तो कुछ?
0: हाँ, ये ज़रूर है, अगर गाना गाते तो थोड़ा गाते, ज़रूर गाते। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें शहनाई में हैं वो पहले गले में आएगी तभी आएगा वो, लेकिन ये कि हमने उसका रियाज नहीं किया और वक्ती हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मामू, हमारे उस्ताद, हमारे मामू थे, उन्होंने हमको बतलाया था, थोड़ा सा उन्होंने बतला दिया भाई ये है, ये इसके बोल हैं, ये अस्थाई में है इस तरीके से, उस वक्त थोड़ा सा गाते थे।
1: वो आपके मामू, आपके उस्ताद का नाम क्या था?
0: अली बख्श खां। और उनके एक भाई थे सादिक अली खां नाम था, और उनके बड़े भाई थे वलायत हुसैन खां नाम था, और ये शागिर्द थे मोहम्मद हुसैन खां साहब के, और मोहम्मद हुसैन खां साहब शागिर्द थे ताज खां उस्ताद के। यूँ है,
1: तो ये जो आपके मामू थे जो उस्ताद जिनका आपने नाम बताया, इनसे आपने शहनाई सीखी या गाना भी?
0: शहनाई भी गाना भी, यानी राग जो है वो तो ताज खां उस्ताद के यहाँ से आया है, उन तक पहुँचा, उन्होंने हमको भी बतलाया और उसको बाद शहनाई में रियाज कराया उन्होंने।
1: अच्छा, हाँ हाँ, ये आपकी फूंक और बाज में जो जो मिठास है ना
0: जी,
1: जिसके सभी शैदा हैं, एक आलम शैदा है, ये इसकी वजह कोई टेक्निकल है? टेक्निकल से मेरी मुराद ये है कि इसकी वजह यह है कि आपका बड़ी ज़बरदस्त आपका ज्ञान है संगीत के राग रागनी में
0: जी,
1: या ये कि इसमें आपका कोई रूहानी जज्बा शामिल होता है जब आप बजा रहे होते हैं?
0: हमारे बुज़ुर्गों का कौल ये है, रियाज दो किस्म का होता है, एक है ऐसा रियाज कि जो हमने अस्थाई अंतरे संचाई अभोग सब याद किया, दो चार ताने ये कर लिया और साहब मैदान में गए, ये हुआ कि साहब फला राग इन्होंने गाया और बड़ा सही गाया और खूब गाया। और एक रियाज ऐसा होता है कि वो राग तो थोड़ा याद किए हुए, यानी जहाँ कोई 100 याद किए हैं, 200 याद किए, उसको 10 राग याद हैं, लेकिन उस 100 राग का जो रियाज था उसने 10 राग में किया है। अच्छा, अब उसमें क्या बात है कि एक एक सुर उसने तौल तौल को रियाज किया है, और जब तक सही नहीं बोला है वहाँ से उस हटा नहीं है, वो रियाज करता रहा। नतीजे के तौर पर ये होता था कि वही राग दूसरा गा बजा रहा और वही वो लेके बैठेगा तो जरा उसमें कुछ कैफियत दूसरी पैदा होगी।
1: सही,
0: ये तरीका हमारे यहाँ था और वही हमारे मामू ने हमको बताया कि तुम घबरा के कभी मत शुरू हो कि कोई किसी के बाद, फर्ज कीजिए कि गाना हुआ, सितार हुआ, सरोद हुआ, कोई भी ऐसा अच्छा सांस बच चुका है उसके बाद तुम्हें बैठना है तो तुम घबरा के शुरू को, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था कि पहला काम तुम ये करो कि शुरू करते ही पब्लिक को अपने हाथ में ले लो, और वो क्या है? वो है सुर। एक सुर से दूसरे सुर में मिलना जो है, दो बोल रहे हैं मालूम हो कि एक,
1: वाह
0: ये है असल में, दो सुर हैं यानी खरज खरज है, लेकिन जिसका छेड़ा जाए तो ये पता चले कि एक बोल रहा है। इस तरीके से खरज में हमारे उस्ताद जो थे वो इसी ढंग से बतलाते थे कि ये खरज मिला, अब उसके बाद खरज था पंचम, तो ये मालूम हो रहा सही बोल रही है, खरज था मध्यम सही बोल रही है। जैसे मतलब बहुत से रागों में ऐसा है कि खरज था मध्यम जाना है, केदारा मालकोस मध्यम जाना है, तो खरजता मध्यम किस ढंग से जाएंगे उसको ऐसे सही तरीके से मध्यम बोली कि हर एक शख्स ये कह दे भाई बहुत उम्दा, यानी कोई काम नहीं हुआ अभी, कोई उसमें फिरत नहीं है, कोई उसमें चाल नहीं है, खाली सुर बुलाना है खरजता मध्यम, लेकिन उस ढंग से सच्ची बोली कि सब कहते वाह वाह वाह वाह
1: सही, वाह वाह, ये गोया की राज है
0: जी।
1: और अच्छा हजब, तो आपने कितनी उम्र से शहनाई?
0: ये तो भाई साहब तकरीबन 6 साल के जब हम थे, हमारी वालदा का इंतकाल हो गया था, हमारे मामा और हमारे नानी और नाना ने पाला, तो वहीं चले आए और वहीं अपना ये हुआ कि साहब थोड़ा सा उर्दू और थोड़ा सा हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ खत वगैरह हम लिखने लगे, लेकिन मैं स्कूल से ज़रा भागता था खेलने में, ये हमारी आदत थी। मामू ने देखा कि इसका टाइम बिल्कुल बर्बाद होगा, ये पढ़ने में इसका ध्यान नहीं लगता, बस इतना काफ़ी हो गया कि ये कुछ खुदूत लिख लेता है पढ़ लेता है, वह इसको ले लो। तो वो हुआ क्या कि उन्होंने जो हमको अस्थाई अंतरे बताए उनमें नोट कर लिया और कभी भूलते थे उसको देख के याद कर लेते थे, उन्होंने हमको सारा टाइम हमको संगीत में ले लिया और हमको बचपन से इसी का शौक भी था।
1: अच्छा
0: जी,
1: अच्छा बचपन में जब आपको उन्होंने सिखलाया शहनाई
0: जी,
1: तो क्या आपको ऐसा उस वक्त आपका दिल चाहा कि शहनाई के बजाय कोई और साज सीखते?
0: नहीं, चूंकि हमारे घर की चीज़ थी ना, एक तरफ एक कमरे में बड़े मामू बजा रहे हैं, एक तरफ मझले मामू बजा रहे हैं, एक तरफ छोटे मामू बजा रहे हैं, एक तरफ हमारे वाली साहब हैं, वो हमारे बड़े भाई से, वो तो हर वक्त तो यही माहौल हमारा बना है। वो शौक ही इसमें आ गया हमारा कि हम इसी को लें। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि वो लोग गाते भी थे, बाजे बाजे वक्त मामू बैठे अस्थाई अंतरा याद कर रहे हैं, वो गाना भी सुन रहे हैं, तो हम खेलते खेलते कभी गाना भी गाते थे, बोल क्या ये पता नहीं।
1: अच्छा।
0: खेल रहे हैं लेकिन वो गाना, वो धुन जो है उसकी वो चल रही है। और छोटा सा साज उन्होंने बना दिया था, जो साज हम लोग बजाते हैं इससे बहुत ही छोटा पतला साज, वो दिन भर खेल भी रहे हैं उसको भी, टें टें इधर उधर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं। लेकिन 6 साल की उम्र से शुरू करने के बाद 12 साल में प्लेटफार्म पर हम आ गए थे,
1: स्टेज पे।
0: जी
1: अच्छा।
0: और इस तरीके से आया कि वो सनद हमको, वो तारीख हमें याद है, हम सन 16 में पैदा हुए हैं और सन 30 में कॉन्फ्रेंस हुई है इलाहाबाद, DR भट्टाचार्य साहब, उसमें फैयाज खां वगैरह ये सब लोग गए हुए थे, पुराने लोग, अब्दुल अजीज खां साहब,
1: अच्छा,
0: ये सब लोग गए थे। तो उसमें हमको हमारे मामू ने बैठा रहा था, तो हमने केदारे की गत बजाई थी और वहाँ पर वो तमगा जो था हमारे मामू को मिलने वाला था कॉन्फ्रेंस का, तो फैसला हुआ ये कि भाई खां साहब आप लोगों ने तो बड़ा नाम किया लेकिन ये आइटम का हकदार ये लड़का है, वो तमगा अब तक हमारे पास है।
1: अच्छा। और जाहिर है कि उस पर आपको बड़ा नाज होगा।
0: बहरहाल वो तो एक सनद है और एक तारीखी चीज है वो।
1: और आपके मामू जो आपके उस्ताद थे उनको भी बेहद खुशी हुई होगी।
0: अरे फिर न पूछिए कि उन्होंने वहां से आने के बाद क्या किया, अब आपको मैं क्या बताऊं। घर में आने के बाद मैं खाला वगैरह थी, माँ तो इंतकाल कर गई थी, खाला वगैरह थी, भाई जरा काम करो, क्या कि नोन मिर्चा आवार दो इस पर, मतलब
1: नजर
0: नजर में लगे। अच्छा दूसरी चीज ये कि खुद गए बाजार से बालाई लाए, बालाई लाने के बाद एक उंगली पहले खा लिया तो हमें खिलाया।
1: वाह। अच्छा फिर उस वक्त से जाहिर है कि आपकी भी बड़ी हौसला अफजाई उस प्रोग्राम से।
0: हाँ, बचपन से शौक था। हाँ बचपन से लगाव तो संगीत से जरूर था, इसमें कोई कलाम नहीं।
1: तो रियाज फिर आपने कितना शुरू किया?
0: रियाज हमने समझ लीजिए कि 6 साल की उम्र से वैसे तो चले, लेकिन जब करीब करीब 10-12 साल के हो गए तो बहुत अच्छा खासा रियाज होने लगा, बड़ा साज मिल गया। और उसके बाद मामू हमारे साथ बैठने लगे। पहले शुरू में तो आधा घंटा 45 मिनट ये टाइम था, लेकिन आखिर में आते आते 3.5-4 घंटे मामू भी बैठे और मैं भी बैठा हूँ
1: लगातार,
0: हर रोज लगातार, किसी दिन नागा नहीं। वही जब मुहर्रम का जमाना आता था
1: सही,
0: तो उसमें हम छोड़ देते थे, हमारे मामू भी छोड़ देते, और माह श्याम का जब जमाना आता था इसमें चूंकि रोजा रखते थे तो इतनी मेहनत नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भी रोजा खोलने के 2 घंटे के बाद खाना वाना खाने के बाद 15-20 मिनट सांस देखते थे।
1: अच्छा खान साहब, शहनाई वैसे तो शहनाई के साथ जो तस्वीर है वाबस्ता
0: जी,
1: वो खुशी का है, मसरत के लम्हा।
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ। शादी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसमें आपने कभी गम के सुरों को और गम की कैफियत को और उस तासुर को घोलने की कोशिश की, आपको कामयाबी मिली उतनी ही जितनी खुशी के?
0: नहीं, ऐसा है कि स्वर भी 2 किस्म के होते हैं। देखिए है कि एक स्वर ऐसा होता है कि वो सुर लगा तो इंसान वाह करता है, आह बड़ी अच्छी तारीफ थी भाई, वाह वाह वाह। और एक सुर जो लगा तो उसको वाह करने की ताकत नहीं बल्कि हाय करता है।
1: क्या कहना, सही।
0: अच्छा वो हाय में क्या होता है कि हाय 1-2 मरतबा करेगा लेकिन उसके बाद फिर वो सकत नहीं रह जाएगी, वो महवे हैरत रहेगा और देखता रहेगा कि भाई क्या बातें पैदा हो रही, और उसको वो सुर जो है खींच के उसके दिमाग को कहाँ पहुँचा देता है कि जैसे कोई जंगल है और कोई फरियादी अपने परवरदगार से फरियाद कर रहा है, तो फरियाद करने वाला जो है तो गिड़गड़ाएगा ना, और गिड़गड़ाने में जाहिर है कि आंसू निकलेंगे। जब इस किस्म का तसव्वुर उसको होगा तो ऐसे मौके पर वो सुर कैसा बोलेगा खुद फैसला करें।
1: बहुत सही है, बहुत अच्छा आपने उसका उसकी तशरीह की। आपको ज़्यादा क्या, आपका दिल चाहता है कि आपके सुनने वाले वाह कहें या हाय?
0: नहीं देखिए, आजकल ज़रा सा कुछ ऐसा हो गया है कि दूसरे मुल्कों की हवा लगती चली जा रही, और उसमें नतीजा ये होता है कि तालियां जो बज गईं वो समझ लीजिए बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। हालांकि हम लोगों के बचपन में तालियां बजती थी कॉन्फ्रेंसों में, लेकिन किस जगह जहां सही मानों में सच्चा सुर लगा और सच्ची लय पर आए, भाई वाह वाह वाह वाह वाह। और आजकल तो ये है कि अगर सुर से ज़रा अलग हो जाओ और ज़रा ताल से ज़रा सा खफीफ, तो उसमें लड़ाई अगर हो गई तो सोचते कि यही है संगीत, ये मज़ेदार है। हालांकि ये नहीं है, संगीत का मतलब ये है कि जिस वक्त वो तालियां बजाना चाहे, शोर करना चाहे, तो इतना सुर गालिब हो जाए उन पर कि वो इसकी ताकत न रह सके कि तालियां बजाएं और शोर मचाएं। اور نتیجہ یہ ہو کہ جس وقت ختم ہو جائے پروگرام تو چاہے وہ ایک گھنٹے کا ہو چاہے دو گھنٹے کا ہو, ان کو یہ معلوم ہو کہ ابھی دس منٹ پروگرام ہوا, اور وہ یہ

0: जैसा मालूम होगा, इसके अंदर ऐसा मालूम होगा जैसे एक छोटी लड़की बच्ची नाच रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि भाई वाह वाह वाह, क्या मालूम हो रहा है, डांस हो रहा है।
1: आपके बाज में तो बिलाशुबा ये सारी चीजें,
0: जब तमाम चीजें हैं और मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें और क्या बाकी है, तो अब चूंकि अब जमाना जरा दूसरे किस्म का है, अब इसमें ताकत की जरूरत है ना, और फिक्रें हैं। जाहिर है कि बाल बच्चे हैं, उनको देख ये कर ये कर ये कर, तमाम दुनिया की बातें, तो ये सब अगर एक तरफ हो जाए और अभी भी टाइम मिले, तो यकीन मान लीजिए अभी आप दूसरे ढंग की शहनाई सुनेंगे। बशर्ते कि हमको टाइम मिले, 5-7 साल कोई हमसे नहीं बोले और हमें कोई फिक्र ना हो कि हमें खाना पीना, बच्चों का करना, ये क्या करना, कुछ नहीं, तो 5 साल के बाद आपको कुछ और ही शहनाई नजर आएगी।
1: हम उम्मीद,
0: हमारे मामू का कौल ये था कि पहले के बुजुर्ग जो गुजर गए हैं, उन्होंने पानी बरसाया और दिया जलाया, लोग कहे कि गलत है, हो गलत, मामू कहते थे सही है, हमारे मामू कहते थे सही है। अब ऐसी सूरत में हमारे मामू कहते थे कि हम वो तो नहीं है, लेकिन इतना दावा रखता हूं कि जब चाहूंगा रुला दूंगा, जब चाहूंगा हंसा दूंगा, और ये करते थे वो, तो ज्यादा नहीं, 2-3-4 राग उनके ऐसे थे। 18 घंटा रियाज था उनका उस जमाने में, और 18 साल तक बालाजी मंदिर में रियाज किया उन्होंने। ये सब चीजें ऐसी नहीं आती भाई साहब, ये है गाना बजाना, मना करता है गा ना,
1: ना
0: बजा ना, और जब इसके पीछे पड़ो तो कहता है कर्तव्य, ये है कर्तव्य, करेगा तब होगा। तो हमारे मामू ने सब किया है और उनसे हमको जो कुछ भी सूखा मिला है, हम उससे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
1: वाह वाह साहब, और अभी जो आपने आखिर में जो कुछ कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नए संगीतकार जो हैं सीखने वाले, उनको काफ़ी इससे रोशनी मिली होगी और हमारे सुनने वालों को बहुत लुत्फ आया होगा। खास साहब, एक बार फिर हम अपने सुनने वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
0: आदाब से, आदाब से।
2: सामिन भी, आप भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से की गई गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। आपसे महवी गुफ्तगू थे मुजीब सिद्दीकी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम के आगाज में समाप्त फरमाइए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है मेरी जंग।

0: चीन के उनके हमनसब शी जिनपिंग के दरमियान अहम बातचीत हुई, जिसमें अमरीका और चीन के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। अगरचे दुनिया की इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान ईरान, ताइवान और कई मामलात पर इख्तलाफात बरकरार हैं, सदर ट्रंप ने नामानिगारों को बताया कि वो और चीन के सदर ईरान में तनाज़ा को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके हक में है कि ईरान न्यूक्लियाई हथियार का हामिल ना हो। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बहुत अच्छी तजारती डील्स हुई, अगरचे उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात नहीं बताई। चीन की हुकूमत का कहना है कि उसके और अमरीका के दरमियान कई नए मफाहमत नामे हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कीव पर किए गए रूस के मिजाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक, जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरत हाल से मुतालिक खिदमात के मुताबिक मस्कूरा हमले में घरों, एक स्कूल, जानवरों के इलाज से मुतालिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिजाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थीं। यूक्रेन के दिफाई निजाम ने मुबैना तौर पर ज्यादातर मिजाइलों को नाकारा बना दिया, लेकिन कुछ मिजाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरी, जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मज़कूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे को लेकर संजीदा नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने इत्तेहादियों से अपील की कि वो इन हमलों का जोरदार तरीके से जवाब दें। शुमाल मशरकी जमहूरिया कांगो में एबोला वायरस फूट पड़ने से 35 अफराद हलाक और सैकड़ों मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से ये तश्वीश पैदा हो गई है कि कहीं ये बीमारी सरहदों के पार भी न फैल जाए। तकरीबन 246 अफराद के बारे में एबोला से मुतासर होने का शुबा है। बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीका के मरकजों में ने बताया कि इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए आज इलाकाई सेहत हुकाम ने एक हंगामी मीटिंग मुनक़द की है। रेंथम बासो को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली का बिला मुखालफत स्पीकर चुन लिया गया है। जनाब बासु, जो भारतीय जनता पार्टी के कानून साज रुकन के तौर पर कोच बिहार जनूब की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने असम्बली इंतखाबात में अपनी पहली कामयाबी के बाद ये ओहदा पहली बार संभाला। उनका इंतखाब प्रोटेम स्पीकर तपिस रॉय की निगरानी में आज सुबह किया गया। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने जनाब बासु का नाम बाकायदा तौर पर तजवीज़ किया था। ऐवान ने इस तकर्रुर की सौती वोट से तस्दीक कर दी। तृणमूल कांग्रेस के अरकान इंतखाबी अमल के दौरान मौजूद नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने इजलास में बाद में शिरकत की। क्यूबा में जारी तवानाई के बहरान के दौरान CIA के डायरेक्टर रैटलिफ ने हवाना में क्यूबा की वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने एक दूसरे को खुफिया मालूमात फराहम की और सिक्योरिटी व माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमरीका ने कहा कि वो क्यूबा के साथ ताउन के लिए तैयार है, बशर्ते कि क्यूबा खातिरख्वाह इस्लाहात के लिए आमादा हो। क्यूबा में पाबंदियों के बायस तेल की सप्लाई में कमी आई है, जिससे वहां ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सित्वक साई राजरंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12, 21-13 से कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमोरा और योइची शिमा गोमी को शिकस्त दी। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की 12 नंबर और ओलंपिक्स में 2 बार तमगा जीतने वाली PV सिंधु ने जापान की एकाने यामागोची को क्वार्टर फाइनल में 21-19, 18-19 और 15-21 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूज़बी में तवानाई से मुतालिक ताउन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर खारजा डॉ जयशंकर ने इस्लाह शुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुजाकरात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात की अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की यह पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा का आगाज कर रहे हैं श्री जबान सरायकी के प्रोग्राम झोक माही दे नाल।
3: कलम दे धनी साईं कुंभन दास, कृष्ण जैकू सांवला, सांवल शाह, बेपरवा, किशन, कान्हा, पता नहीं कितने नावां दे नाल वरियां तू सड़ा वेंदारी है। उसे कृष्ण दे गुणगान करन आले भक्तां विच थे हन 8 वड्डे कवि, जिन्हां को बाद विच अष्ट छाप दे कवि सड़ा गया। इस अष्ट छाप दे कवियां विच सब तू पहले कवि थे साईं कुंभन दास जी। इना दे बाद साई सूरदास, साई कृष्णदास, साई परमानंद दास, साई गोविंद स्वामी, साई छीर स्वामी, साई नंद दास ते साई चतुर्भुज दास। ए सिलसिला ए रीत 1448 ईस्वी तो ला के 1530 ईस्वी तक यानी तकरीबन पूरे 100 साल चली। ए शुरुआत साई कुंभन दास नाल शुरू थी है। साई कुंभन दास का जन्म मथुरा जिले के गोवर्धन कस्बे के नाल जमुनावतो ना दे एक ग्रां विच खत्री खानदान जैकू गोरवा खत्री आदे हन 1448 ईस्वी चेत्र महीने की कृष्ण पक्ष की कारसी की डिवार थी है। उन्हां दे डाड़के खानदान विच खेतरी का कम ही रोजी रोटी का जरिया है। खेतरी किसानी करना तो सुखी रहना। उन्हां को अपने वड्डे वटेरां दी तरह इयो कम रास भी आ गया है। खास तौर पर उन्हां दियां जमीना पारसोली ग्रां विच पौंदियां हन। किसानी दी आमदनी इत्ती ना होंदी है जो अपने घर आले आराम नाल गुजारा कर सकन। कदहीं मीह दा ना आवना, कदहीं मीह दा ज़्यादा आवंजना, कदहीं बीज रहावना ते कदहीं जम्मण दी किल्लत करके हथ हमेशा तंग रहा है। पर वल भी उन्हां दी खासियत है कि उन्हां अपनी लोड़ पूरी करन कीते किसी के सामने अपना हथ नहीं फैलाया। उन्हां कीते तो कृष्ण साईं दी भक्ति हब्बो कुछ है। भावें टब्बर बहु वड्डा है ते खेती दी आमदनी नाल घर टब्बर को चलावना बहु औखा कम है, पर वो कस वध करके टब्बर दा गुजारा खेती नाल ही करेंदे रहे। उन्हां दे टब्बर जाल दे नाल 7 पुत्र, 7 नुआ ते 1 विधवा भतरी जी भी है। साईं कुंभन दास कृष्ण भक्त चंगे ग्रस्त ते वड्डे त्यागी हैं। महासंतोषी ते नेक बंदे दी खासियत ए भी है जो कृष्ण भगवान उन्हां दे सामने आप प्रकट थी के सखा भाव आले खेड खेडते हैं। उन्हां दे गुरु दा नाम महाप्रभु बल्लभाचार है। 1493 ईस्वी जडण वल्लभाचार थाई गोवर्धन आए हैं तदा ही कुंभन दास ने उन्हें को अपना गुरु धार गिद्दा है। इस तो 15 वरिया पहलू श्री नाथ जी की मूर्ति प्रकट थी है। हुण गुरु की आज्ञा को सिर मत्थे रख के कुंभन दास श्री नाथ जी की सेवा करन लगे। पुष्टी मार्ग अव्वल तो श्री नाथ जी के मंदिर दे कीर्तनकार दा वड्डा अहुदा मिल वञण ते भी उन्हां अपनी किसानी दा कम नहीं छोड़ा ते मरदे दम तक गरीबी च अपने टब्बर दा पेट उसे नाल भरेंदे रहे। श्री नाथ जी दे मंदर च साईं कुंभन दास जी नित नवे नवे पद गा गा के सुनावण लग पए। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਥ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਪਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁ ਲੱਜਤ ਅਤੇ ਝਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਥੀ

मां में बालण आइया बला झूले लालण पंजे मां में बालण आइया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला

याले बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त

चल की तो बात सिलसिला होएगा सूफी रंग, जिस दे तहत हशमत शाह दा कलाम वख वख गुलूकारां दी आवाज दे विच। ते सामिन, इस तों इलावा तुहाडा पसंदीदा सिलसिला तमन्ना अपने वेले मुताबक हाजिर करांगे।

काफी पारे ने इन्हां नूं वेच के मैं किन्ने ही कुआड़े खरीद सकदा, पर हुण मैनू लकड़ां कट्टण दी लोड़ नहीं है। हुण मैनू छेती छेती घर जाके ये खबर अपनी घरवाली नूं दसनी चाहीदी है। हाँ, मैं जांदा।

0: ओए जगु फगू।
1: जी जनाब।
0: यू ब्लडी बास्केटबॉल फुटबॉल वॉलीबॉल, ओए चोरा ना अजे कोई पता लगा के नहीं?
1: ओ जनाब सारा शहर जंगल फोल मारिया
0: पर चोरा ना को पता ही नहीं लग रहा। ब्लडी बास्केटबॉल, ओए चोर तानू अपना पता लिख के देके जानगे।

0: नहीं है। हाँ? ये तो अपने एसएसपी साहब ने
1: जनाब अधिक पहचान नहीं सके जनाब।
0: पर जनाब ये देवते का रूप तुहानू धारण करने की लोड़ पै गई सी।
2: सानू शिकायत मिली सी कि साढ़े कई मुलाजम भ्रष्टाचार फैला रहे ने, रिश्वत लै रहे ने, जिस करके बैंक में दी छवि लोगों खराब हो रही सी। इसलिए मैं आप पेस वटा के भ्रष्टाचार फैलाने वाले फड़ रहे हैं। हवलदार तुहाडे वर्गे ईमानदार मुलाजमा करके ही मैं अपने महकमे ते माण है। तुहाडी तरक्की लई मैं महकमे अगे सिफारिश करांगा।
1: जनाब सानू माफ कर दिओ।
0: जनाब जनाब असीं तौबा करदे आ। जनाब अज तो बाद ईमानदारी दे राह ते चलांगे। जनाब
2: सानू इस गरीब लकड़हारे दी ईमानदारी तो सबक लेना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मिठा होता है। क्यों भाई लकड़हारे
0: सर जनाब लकड़हारे
2: नारायण नारायण ये भी मेरा ही भेजा है बंदा सी।
3: Oh, no!
4: चलाक स

0: यूएन को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए, कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, ताकि उनके जितने भी कृषि कार्य हैं उन्हें एक्सपर्ट से जानकारी मिल पाए और वो अपनी बुआई से लेकर कटाई तक की सभी सवालों का जवाब हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जान पाएँ। और अगर बात करें खरीफ फसलों की, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली, ये जो फसलें हैं इनकी तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इस समय खेत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और उसके आधार पर कौन कौन से पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी है, उसके अनुसार ही हम पोषक तत्वों का उपयोग करें, जिससे कि हमारी फसल बेहतर हो पाए और हमारा खर्चा भी कम लगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज एक हम खास बातचीत लेकर आए हैं, जिसका विषय है खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक, और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, निदेशक विपणन इफ्को से। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, जिस तरह आप अपने फसलों में लगातार उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं और वो भी लगातार अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उससे काफी नुकसान हो रहा है। हमारी फसलों के साथ साथ हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी हवा सब खराब हो रही है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, ये जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं ज़्यादातर विदेशों से आते हैं और हमारा काफ़ी पैसा बाहर जाता है। फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, क्या फायदे हैं, आइए इन सब बातों की जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, जो निदेशक हैं विपणन विभाग इफ्को में। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को बताएं कि संतुलित जो उर्वरक कैसे प्रयोग करें और उनका क्या फायदा है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, संतुलित उर्वरक प्रयोग करने की शुरुआत हम सभी किसान भाइयों को पहले मिट्टी परीक्षण से करनी चाहिए, और जो कि समय अभी चल रहा है, अभी जिन खेतों में कोई फसल नहीं है वहाँ पे अभी आप धान की रुपाई करने का कार्यक्रम बना रहे होंगे, ऐसे खेतों में अभी मिट्टी की जांच संभव है। आप मिट्टी का नमूना ले लें और नमूना जो है अपने समीपवर्ती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लें। वो मृदा नमूना लेने के लिए जो सावधानियां हैं, वो 6-7 स्थानों से 6 इंच गहरी एक आयताकार एक खुदाई खुरपे से करें और उसकी दीवारों को खुरच करके अपने तसले में रख लें, किसी टोकरी में रख लें साफ, फिर ऐसे 6-7 जगह से इकट्ठा करें और फिर वो एक जगह फैला करके खूब उसको मिलाएं और मिला के उसको 4 भाग करें, उसके 2 ले लें, 2 छोड़ दें और फिर करें इसी तरीके से। और जब लगभग आधा किलो मिट्टी बचे तो उसमें अपना नाम, खेत का नाम, पहचान और पता, अपना मोबाइल नंबर, ये सब नमूने में डाल करके इसको आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से उसकी जांच करा लें, और जांच के अनुसार फिर अगर आप उर्वरकों का प्रयोग करोगे, उनकी मात्रा की जानकारी आपको सही अगर चाहिए तो उसी तरीके से आपको मिल पाएगी। अभी ये भी देखने में आया है कि जैसे जो संस्तुति मात्राएं आएँ उसमें भी हम आधा उर्वरक बचा सकते हैं, और जो हमारे पास इस समय एक निवेश हमारे पास है उनका प्रयोग करके। बहुत सारे किसान भाइयों ने मूंग उड़द की खेती की होगी, जिसको अभी खेत में मिला देंगे हरी खाद के रूप में। कुछ लोगों ने ढैंचे की खेती की होगी हरी खाद की, वो भी उसको खेत में मिलाएंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि हमारी खेती में जो पोषक तत्व हैं, जो उनकी उर्वरा शक्ति हमारी धरती माता की है, हरी खाद के प्रयोग से भी बढ़ती है। दूसरा, अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो अभी देखिए हमारा जो केंद्रीय शोध संस्थान है ICR, उसकी तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम तकनीक विकसित की हुई हैं। उसमें एक तकनीक से एक बहुत ही छोटा सा एक बाटल में पाद आता है, जिसको हम लोग बहुत भारी मात्रा में बनाते हैं और किसान भाइयों को प्रयोग के लिए देते हैं, उसका नाम है बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल ज़रूर करें किसान भाई। उसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ। एक 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें पानी भरें, पानी भरने के बाद जो उस छोटी सी एक सीसी है उसका जो भी पदार्थ है उसको उसमें डालें, 2-3 किलो गुड़ या राब या जिसको जेगरी बोलते हैं उसको आप उसमें डालें, और फिर ताज़ा पिसा हुआ बेसन अगर 2-1.5 किलो है उसको डाल दें, और खेत की मिट्टी जहाँ रसायनों का प्रयोग कम से कम हुआ हो, रसायन मुक्त हो तो अच्छा है, अगर पेड़ है तो उसके नीचे की थोड़ी सी मिट्टी खोद लें ऊपर की तय हटा के, तो उसका 2 मुट्ठा जो है आप उसमें डाल दें और

जमीन जो है थोड़ा सा अच्छी होनी शुरू होगी, धरती माता के लिए एक अच्छी जैविक खुराक उपलब्ध होगी और जो वहाँ पे शेष पड़े थे वो भी एक तरीके से पोषक तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद में एक काम और करना चाहिए, देखिए जब खेत की तैयारी करते हैं तो जुताई करेंगे, जुताई करने के बाद में फिर उसमें आप लेवा लगाएंगे, इस बीच में थोड़ा समय होगा, इसके लिए थोड़ा सा पहले से तैयारी कर लो। हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र आते हैं, बायो फर्टिलाइज़र आता है और माइक्रोराइजा भी आता है, तो बायो फर्टिलाइज़र का एक काम अलग है, माइक्रोराइजा भी एक तरीके से जैविक है, माइक्रोबियल फर्टिलाइज़र ही है, उसको दोनों को थोड़ा थोड़ा जरूर लीजिए। भाई देखिए अभी चूँकि हमारे भूमि में हमारी धरती माँ में जीवाश्म की मात्रा कम हो गई है, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन आप सुनते होंगे लोग बताते हैं कम हो गया है, ऑर्गेनिक कार्बन यानी उसकी धरती माँ की जो प्राण शक्ति है जो जीवनी शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसको हमें पूरा करने का काम करना है, तो बायो फर्टिलाइज़र ये काम करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र को दो तरीके से ज़रूर इस्तेमाल करिए, धान की खेती में करना है, कैसे करेंगे, मान लो एक लीटर आप ले लीजिए NPK कंसोर्टिया, उसमें तीनों होता है, नत्रजन वाला भी होता है, फास्फोरस वाला भी होता है, पोटास वाला होता है। अब आप आधा लीटर जो है करीब 60-70 किलो सड़े गोबर की खाद में इसको मिला के छायादार स्थान पे 6-7 दिन तक रखिए और मिलाते रहिए बीच में, और फिर आपके पास अगर और जैविक खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर है आपके पास, जैसे मान लो चाहे कूड़े करकट की हो, चाहे गोबर की हो, चाहे किसी फसल अवशेष की हो, कुछ भी हो, तो ये 60 किलो उस खाद में भी मिला करके अगर रख देंगे 4-5-6 दिन के लिए छायादार स्थान पे, तो एक तरीके से पूरा ये जो जैविक खाद है एक तरीके से उसमें अतिरिक्त ताकत भर जाएगी। ताकत कैसे भरेगी, बैक्टीरिया उसमें बनने लगेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने बैक्टीरिया होंगे उतनी हमारी खेत की जीवनी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे, तो उसको फिर हम अपने एक एकड़ खेत में उसको डालते हैं। फिर एक हमारा केंद्रीय शोध संस्थान है SES MCRI, उसका एक हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है जिसको बायोस्टूमुलेंट आप लोग कहते हो, वो सागरिका के नाम से आता है और एक आता है तरल भी आता है, तो ग्रेन्यूल वाले को सामान्य खेतों में जैसे धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, मक्का बोएंगे, बाजरा बोएंगे, ज्वार बोएंगे, उनमें 10 किलो उसको डाल दीजिए। उसके बाद में धान की जब आपने नर्सरी लगा दी होगी या नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे होंगे बोने की, तो उसको आप 24 घंटे तक या 12 घंटे तक भिगो के रखते हैं, उस समय उसमें नैनो DAP जो हमारा आता है तरल, उससे उसका ट्रीटमेंट करिए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करके उसको देखेंगे और उसमें थोड़ा बायो फर्टिलाइज़र भी अगर डाल देंगे तो भी अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है जब हमने भूमि शोधन कर दिया बायो फर्टिलाइज़र से, जब वो शेष हमारा एक लीटर में बचा हुआ है उससे जड़ शोधन जरूर करना है। जड़ शोधन से मतलब मेरा क्या है, एक छोटा सा होज या किसी तरीके का उसमें नैनो DAP का मिश्रण डाल देंगे बना करके, और उसमें जड़ें अपनी डुबोएंगे थोड़ी देर के लिए और फिर छायादार स्थान में रख के खेत में रुपाई कर देंगे। इससे क्या होता है, नैनो DAP से जब जड़ों का शोधन करेंगे या किसी बीज का शोधन करेंगे या किसी कंद का शोधन करेंगे, तो नैनो DAP के सूक्ष्म कण कुछ बीज के अंदर, कंद के अंदर, जड़ों के आसपास चिपक जाएंगे, कुछ प्रवेश कर जाएंगे, जिससे नत्रजन और फास्फोरस की ताकत जो है, जो पोषक तत्व है, वो अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होने के समय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। जबकि आप रासायनिक खाद का जब प्रयोग करते हो तो जब अंकुरण हो जाता है तब पोषक तत्व मिलता है, इसमें अंकुरण की प्रक्रिया को शुरू करने के समय से ही पोषक तत्व उपलब्ध होने लगता है। फिर DAP या जितनी कोई भी खाद डालते हैं फास्फेटिक, उसकी मात्रा को आप आधा कर दीजिए। और यूरिया अगर बेसल ड्रेसिंग में डालते हैं, पहले तो धान में कोई डालता नहीं है, अगर डालते हैं तो उसकी मात्रा को भी आधा कर दी। फिर जब रोपाई कर देंगे, ये अवस्था 25-30 दिन में आएगी, जो खूब धान उसका जो टिलरिंग शुरू होगी थोड़े दिनों बाद 20-21 दिन में, तब एक बार एक एकड़ में आप 40 किलो या 45 किलो एक बोरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए। फिर खाद नहीं डालनी है, आधी ही डालनी है, और फिर उसके 8-10 दिन के बाद जब खूब किल्ले निकल आएंगे, खेत में नीचे से भी ताकत मिलेगी और साथ में फिर ऊपर से आपको नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका का स्प्रे कर दीजिए मिला के एक एक बोतल, और फिर यही स्प्रे 25-30 दिन के बाद फिर कर दीजिए धान के खेत में, बाकी फिर खाद डालने की जरूरत है नहीं। आप देखेंगे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आप जो भी चीज़ पैदा करने जा रहे हैं, चाहे धान पैदा करने जा रहे हैं, चाहे ज्वार पैदा करने जा रहे हैं,
इन सभी जो धान्य वाली फसल

0: फसलें हैं इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, इनकी क्वालिटी, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अच्छी होगी। मूंगफली बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होती है, कपास बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होता है, बहुत सारी फसलें खरीफ में होती हैं, सोयाबीन होता है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो फसलें खरीफ की हैं सभी में आपको इन तकनीक का इस्तेमाल करना है। बायो डिकम्पोजर, बायो फर्टिलाइजर, माइकोराइजा का भी मात्रा जब आप बुआई कर रहे हैं उसी समय 2 से 5 किलो माइकोराइजा 1 एकड़ में आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, पोषक तत्वों का गतिशीलता बढ़ जाएगी। मानो कभी हम खाद डालते हैं तो कहीं पर गिरता है, पौधे की जड़ कहीं होती है, तो वो उसकी गतिशीलता को बढ़ाता है और बहुत सारे तरीके से उसको सुरक्षा और उसकी वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। तो ये जितने भी उत्पाद हमने आपको बताए हैं ये बहुत ही सुलभ हैं और सभी जो है केंद्रीय शोध संस्थानों के विज्ञान के तकनीक के आधार पर बनाए गए हैं। इनको अगर किसान भाई डालेंगे तो निश्चित रूप से खाद की मात्रा को हम आधा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, फसल चक्र का भी किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आम तौर पे किसान क्या करता है, जहाँ धान गेहूँ कर रहा है वहाँ धान गेहूँ कर रहा है, चाहे ऊपर वाली ज़मीन है तो भी धान बोता है, और हम कह रहे हैं जहाँ निचली ज़मीनें हैं जहाँ पानी भरता वहाँ धान बोना तो मजबूरी है। जहाँ ऊँची ज़मीनें हैं जहाँ पे पानी निकल जाता है, हम अगर 6 महीने वाला अरहर लगा लें उसके बाद गेहूं कर लें। अब अरहर अगर लगा लेंगे तो अरहर का उत्पादन धान जितना तो नहीं होगा, लेकिन अरहर की कीमत कितनी मिलेगी किसान को और ज़मीन कितनी मजबूत हो जाएगी। अरहर की किस्में आ गई हैं जो 5 महीने में तैयार हो जाती हैं। जो लोग जून में अभी लगा देंगे या थोड़ा और पहले लगा देंगे, किसी तरीके से पानी वानी देते रहेंगे, बड़े आराम से अक्टूबर के महीने में अरहर कट जाएगी। फिर रबी की जो फसल आप करेंगे वो बहुत ही बढ़िया होगी। अगर हम बायो डिकम्पोजर, बायो फर्टिलाइजर और जो हमने चीज़ें बताई हैं, नैनो तकनीक का इस्तेमाल जरूर करिए। ये देश में किसानों के हित के लिए बनाई गई हैं। इसका विशेष लाभ क्या होता है कि इससे प्रदूषण मुक्त खेती संभव है। अभी देखिए क्या हो रहा है, पंजाब का किसान हो चाहे यूपी का किसान हो चाहे हरियाणा किसान हो, शिमला मिर्च खेती करेगा कम से कम 10 बोरी यूरिया डालता है। गोभी में लोग 12-14 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं कई बार में। अब आप सोचते हैं क्या हमारी जमीन का क्या हाल होगा। जमीन भी तो एक पूरी सृष्टि का आधार है, सभी के लिए भोज्य पदार्थ अगर कहीं से उपलब्ध होते हैं तो जमीन से होते हैं, और कुछ भी होता है तो जमीन के बिना कुछ नहीं होता, कृषि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उस जमीन के स्वास्थ्य के बारे में आप सोचते हैं, फिर जमीन का क्या हाल होता है, जब यूरिया 10 बोरी 12 बोरी 1 एकड़ में डाला तो जमीन कमजोर होती है और उस यूरिया से बहने वाला नाइट्रेट जल में जाता है, जल को प्रदूषित करता है, जमीन में रहता है तो जमीन को प्रदूषित करता है। और आपको शायद ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ज्यादा अगर नत्रजन का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, दूसरे पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो भी प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है, और जमीन का वातावरण भी खराब हो जाता है। यानी जल भी खराब पीने वाला, जमीन भी खराब, और हवा में निकलती जहरीली गैसें तो उससे हमारी हवा भी खराब। तीन ये तो प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित होते हैं। अब चौथा मालूम आप क्या सोचते हैं किसान भाइयों, जो आप 12 बोरी या 10 बोरी यूरिया और तमाम रसायनों का अंधाधुंध स्प्रे करके सब्जी पैदा करते हो तो सब्जी बहुत जहरीली होती है, उसमें उन रसायनों के नाइट्रेट के अवशेष सब्जियों में पहुंच जाते हैं। आप सोचो उस सब्जी को आप भी खाते होंगे। जानवरों में आप देखिए, आप वही चारा वही अवशेष प्रयोग में लाते हैं, जानवर खाते हैं, उनके दूध में उसके अवशेष आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। सब्जियों में ऐसे रसायन हम लोग प्रयोग कर लेते हैं जो सब्जियों में प्रयोग नहीं करने चाहिए, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फसल चक्र का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किसी तरीके से अपने फसल चक्र में एक दलहनी फसल को फिट करना है। और एक नकदी फसल कोई ले लीजिए, अगर जहाँ कोई नकदी फसल हो एक दलहनी फसल का समावेश हो जाए तो आपका सोने में सुहागा हो जाएगा। और आपको बहुत अपनी प्लानिंग करके, किसान भाई उसे एक मेरी और प्रार्थना है कि हम खेती का कोई बजट नहीं बनाते, कोई पहले प्लान नहीं करते। कई बार चीज़ें बेहिसाब पैदा हो जाती हैं, उनके कोई कीमत नहीं मिलती और कई बार बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो हमको अपने एक संतुलित रूप से अपनी सुनियोजित योजना के अंतर्गत कृषि की जब तक हम लोग करना शुरू नहीं करेंगे तब ये दिक्कतें बनी रहेंगी। और हमें विश्वास है किसान भाई अगर मेरी इस बात को मानेंगे, थोड़े से खेत पे एक बार करके देख लीजिए, आधा एकड़, चौथाई एकड़, एक एकड़ जैसी आपकी क्षमता हो एक बार करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसको करने लगेंगे। दूसरी एक बात और बता दूं, धान की फसल में और भी फसलों में जिंक की कमी होती है। नैनो जिंक बहुत ही फायदेमंद है, बहुत अच्छा प्रभाव है। नैनो जिंक की अगर एक सीसी को एक एकड़ में आप 100 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर देंगे तो जिंक सल्फेट के प्रयोग से आप बच जाएंगे। अब जिंक सल्फेट सोचते हैं हम 10 किलो डाल रहे हैं एकड़ में या 33% वाला 6 किलो डाल रहे हैं, काम कितना आता है, 2-5% ही जिंक उससे मिलेगा पोषक तत्व। नैनो कापर हम लेके आए हैं, अगर डालेंगे तो कापर पोषक तत्व की पूर्ति होगी और साथ में कापर एक तरीके से उसमें फंगस से लगने वाली बीमारियों से भी पौधे को बचाएगा। तो ये जितने भी नैनो तकनीक आधारित विभिन्न संस्थाएं हमारी उत्पाद लाई हैं देश में और सब भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत हैं, उनका उपयोग करना हम सभी का दायित्व तो बनता है। इसको एक बार करके हम लोग जरूर देखें। मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, आप सभी ने मुझे सुना, आपका धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया और भाई इस तरह आप खेती करेंगे तो खेती से आमदनी भी होगी और जो आपका उत्पाद होगा वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरा होता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर योगेंद्र कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी। और बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से जो नैनो तकनीक है उसका प्रयोग कीजिए और जो सब्जियां हैं उसमें ज़्यादा रासायनिकों का प्रयोग मत कीजिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए वो सही नहीं है। और अगर सेहत की बात करें तो हम बात करते हैं हमेशा कि गर्मी का मौसम है, गर्मी में पानी की कमी हमारे शरीर को नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे फल और सब्जियों का आप चयन कीजिए जो कि पानी से भरपूर हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तुरई है, घिया है। बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और पचाने में भी बड़ी आसान होती हैं, ऐसी सब्जियों को आप खाइए। ऐसे फलों का चयन कीजिए जिसमें भी पानी है। इसके साथ साथ पेय पदार्थ भी बहुत हैं जो हमें हमारे शरीर को ठंडक देते हैं, जैसे नींबू पानी है, नारियल पानी है, बेल का शरबत है, लस्सी है। तो ठंड जो भी ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखती हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए और फ्रिज का पानी ना पिए, बल्कि पानी जो है वो आप मटके का पीजिए क्योंकि वो बहुत अधिक ज़्यादा ठंडा नहीं होता। फ्रिज में कई बार होता है बहुत अधिक ठंडा पानी हो जाता है और उससे गला ख़राब हो जाता है और हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में आप खाने पीने का पूरा ध्यान रखें।
3: बिल्कुल, हमें जो मौसमी फल और सब्जी ये तो ज़रूर लेना ही चाहिए और आजकल पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो जितना ज़्यादा से लिक्विड फॉर्म में आप लीजिए, नारियल पानी पिए, शिकंजी ले लीजिए, छाछ बना के ले सकते हैं। एंड कुछ लोग जैसे अब सब्जियां नहीं पसंद करते तो उनका सूप बना लीजिए, उससे भी आपके ना बॉडी के अंदर हाइड्रेशन रहेगी हमेशा। तो मौसमी फल सब्जी आसानी से मिल भी जाते हैं और उनकी जो कीमतें होती वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फाइबर और लिक्विड बेस्ड चीज़ें आप ज़्यादा गर्मियों में लें।
2: बिल्कुल। और अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं दिनेश कुमार और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे दिनेश कुमार और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये रागनी। और आपको याद दिला दें कि कल है शनिवार, 6:30 पर आप सुन पाएंगे फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार, जिसमें आप अपनी फरमाइशों से हमें अवगत कराते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही आज का कृषि जगत यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

कृषि जगत, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब गजल और कव्वाली के कार्यक्रम में सुनते हैं ये कव्वाली।

0: इसी के साथ कव्वाली का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 30 जून से शुरू होगा और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा आज से शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों और आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह पहल कर्मचारियों के परिवारों को आत्मनिर्भर बनने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने और भविष्य

0: भविष्य को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का सशक्त संबल प्रदान करेगी। साथ ही श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को लिबरलाइज्ड मेडिकल हेल्थ स्कीम के तहत मेडिकल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए, जिनके माध्यम से उन्हें और उनके परिवारजनों को सूचीबद्ध अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनडीएमसी परिवार का हिस्सा बने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंका की महिला और बाल कल्याण मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रीलंका के लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश गहरे सभ्यतागत बंधनों, लोकतांत्रिक मूल्यों और अटूट जनसंबंधों से जुड़े हुए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता को और अधिक मजबूत करेगा और महिला नेतृत्व के माध्यम से गहन सहयोग को प्रेरित करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। प्रश्न पत्रों तक उनकी पहुंच थी। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। सीबीआई ने बताया कि कल गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुणे की अदालत में पेश किया जा रहा है और उन्हें दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सूद ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं है बल्कि एक विकसित होता शिक्षा केंद्र है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्री सूद ने कहा कि शिक्षा अवसरों और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान से भविष्य की ओर और भविष्य से राष्ट्र निर्माण की ओर, यही प्रगतिशील नई दिल्ली की पहचान है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत बैठक कर उनके स्कूलों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों से कहा कि वे वर्चुअल बैठक की कार्यप्रणाली की आदत विकसित करें। उन्होंने वर्चुअल बैठकों के संचालन के लिए प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों को 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस पर विशेष कार्य करने का भी निर्देश दिया। साथ ही श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में एआई आधारित लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दे रही है।
4: सरकार ने अपनी नीति को थोड़ा बदला है। बहुत बड़े विज्ञापन न देकर बच्चों के इनोवेशन के लिए पैसा खर्च करने का काम

0: सरकार ने किया है। एनईपी 2020 में पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो एक आग्रह किया गया है उसके संदर्भ में इन डिजिटल टूल्स का बेस्ट उपयोग करें।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। ये उपाय पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों और संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद किए गए हैं। दिल्ली के कला, संस्कृति और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा आज ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने के लिए ईवी कार चलाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में मेट्रो मंडे, दो वर्क फ्रॉम होम और न्यूनतम गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2: सरकार ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है मेट्रो मंडे और दो वर्क फ्रॉम होम, न्यूनतम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, और पूरी सरकार इसका पालन कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरी तरह से अगर आप देखें तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर रहे हैं लोग, वर्क फ्रॉम होम। मेरे पास ये जिम्मेदारी है कि मैं दिल्ली के प्रतिष्ठानों से, व्यापारियों से बात करूं और ज्यादातर लोग अपने संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम को लागू कर रहे हैं।
1: श्री मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने परामर्श भी जारी किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी सरकारी संसाधनों के उपयोग, ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल वृद्धि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक संतुलित कदम है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये बस सेवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीएमआरसी को दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं। 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली ये बसें सुरक्षा, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। इस बस का किराया 10 से 15 रुपए के बीच रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यूपीआई और नकद भुगतान विकल्पों के माध्यम से यात्री टिकट खरीद सकते हैं। यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बस सेवा संचालित की जाएगी। यह बस सेवा कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और स्थलों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का अभियान 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह पाए। विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण और सामग्री मुद्रण का कार्य 20 जून से 29 जून 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO द्वारा 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आयोग ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में कुल 1,48,23,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में प्रतीक्षा कक्ष का उद्घाटन भी किया। श्री वाही ने अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने अस्पताल के पार्क में वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए तथा वहां रखे कूलर को साफ करके जनता की सुविधा के लिए इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अस्पताल में 100 बिस्तरों की गहन चिकित्सा इकाई के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज ऑपरेशन मिशन के अंतर्गत आगामी मॉनसून सीजन के चलते अंतरविभागीय बैठक की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में दिल्ली में जलभराव और नालों की सिल्ट सफाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान आयुक्त ने बताया कि एमसीडी ने मॉनसून से पहले अपने अधिकार क्षेत्र के नालों की लगभग 65% सिल्ट सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग 4 फीट और उससे अधिक चौड़ाई वाले 1375 नालों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जो दिल्ली के कुल बड़े नालों का लगभग 50% हिस्सा है। श्री खिरवार ने कहा कि मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या को रोकने के लिए सभी विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय और बेहतर समझ के साथ काम करना होगा। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश के नागरिकों से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति मित्र बनकर नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। विभाग के सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि नशा मुक्त भारत बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है। विभाग ने विश्वास व्यक्त किया कि आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी। भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में ये मजबूत प्रदर्शन व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। देश के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अप्रैल 2026 में 34.66% बढ़कर 9 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वर्टिस फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट सक्षम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका के अवसरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाकर सशक्त बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करना है। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिनभर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR 30 जून से शुरू होगा और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं नाटक।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में प्रस्तुत है विशेष नाटक हवा में गूंजते शब्द 90 साल की यात्रा। आलेख समी, प्रस्तुति काजल सूरी।

0: ये आकाशवाणी है। हम मना रहे हैं 90 वर्षों का वो सफर जहां आवाजों ने इतिहास लिखा। आइए चलते हैं उस दौर में जब शब्द हवा में उड़कर दिलों तक पहुंचते थे।
1: भारत में

0: रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत 1927 के दशक में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की स्थापना हुई। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र जल्द ही एक प्रमुख प्रसारण केंद्र बन गया, जहां से हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होने लगे।
1: आकाशवाणी दिल्ली के रेडियो नाटकों का इतिहास भारतीय प्रसारण और सांस्कृतिक विकास की एक महत्वपूर्ण धारा को दर्शाता है। ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि समाज, भाषा और साहित्य को जोड़ने वाला सशक्त उपकरण भी बना। 1920 के दशक में रेडियो के प्रसार के साथ ही नाटक का प्रसारण शुरू हुआ। 1930 से 40 के दशक में ये मनोरंजन का प्रमुख माध्यम बन गया।

0: आकाशवाणी दिल्ली के रेडियो नाटकों की यात्रा में आपका स्वागत है।
1: ये आवाजों की दुनिया है, जहां मंच दिखाई नहीं देता लेकिन कहानी जीवित होती है।
0: ये सिर्फ एक संस्था की कहानी नहीं, ये आवाजों की एक जीवित परंपरा है।
2: मेरा नाम सुचित्रा गुप्ता है। मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक संस्थान नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार रहा है जिसने मुझे बचपन से संजोया, संवारा और पहचान दी। मैंने यहाँ अपनी शुरुआत की एक बाल कलाकार के रूप में। इन 65 वर्षों में मैंने न जाने कितने नाटक किए और सौभाग्य से देश के श्रेष्ठ निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला। हर निर्देशक की अपनी शैली थी, अपनी दृष्टि थी और हर नाटक अपने आप में एक नई सीख लेकर आता रहा। हर किरदार, हर संवाद, हर रिकॉर्डिंग मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।
1: आकाशवाणी दिल्ली के रेडियो नाटक, जहां शब्दों ने मंच नहीं हवा को अपना घर बनाया।
0: यहीं से शुरू हुआ रेडियो नाटक का सुनहरा सफर।
3: बंदी, ओ बंदी, बंदी,
4: क्या है, सोने दो।
3: मुक्त होना चाहते हो?
4: अभी नहीं, नींद खुलने पर।
5: जागते रहो।
3: सुनो,
4: हाँ,
3: फिर अवसर नहीं मिलेगा। आंधी की संभावना है और तारे भी छिप गए हैं।
4: तो क्या तुम भी बंदी हो?
3: धीरे बोलो, आज ही मेरे बंधन ढीले हैं।
4: अच्छा, कौन हो तुम?
3: देखो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं।

0: लो, मेरे ढीले बंधन तो खुल गए। लाओ तुम्हारे बंधन भी खोल दूं।
1: हाँ।
0: दो इधर लाओ ना।
1: ये यहाँ से ध्यान से। मैं मुक्त हो गया।
2: 1930 के दशक से शुरू हुई ये यात्रा आज 90 वर्षों का इतिहास बन चुकी है।
3: इस दौर में रेडियो नाटक की शुरुआत प्रयोगात्मक रूप में हुई। मंच नाटकों को रेडियो के अनुकूल ढालने की कोशिश की गई। साहित्यकारों को रेडियो से जोड़ा गया।
2: सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर और उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी और उर्दू के प्रमुख साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार थे, जिनका आकाशवाणी दिल्ली से गहरा संबंध रहा है।
3: सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर और उपेंद्र नाथ अश्क ने आकाशवाणी में कार्य किया और उनके कई नाटकों और कहानियों का

0: प्रसारण आकाशवाणी से हुआ।
1: आकाशवाणी, शब्दों की वो दुनिया जिसने 90 वर्षों से अनगिनत कहानियों को आवाज दी है। हम आपको ले चलते हैं उन दिनों में जब कलम और आवाज मिलकर जादू रचते थे।
2: मैं सादत हसन मंटो। रेडियो पर कहानी लिखना आसान नहीं, यहां शब्दों को बोलना पड़ता है। सिर्फ लिखना नहीं, हर शब्द को जीना पड़ता है। आवाज ही असली किरदार बन जाती है।
1: मंटू साहब, आपकी कहानियां रेडियो पर जीवन बन जाती हैं।
3: ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो हवा में तैरती है। मैं कृष्णचंद्र। रेडियो ने मेरी कहानियों को गांव गांव तक पहुंचाया। जहां किताब नहीं थी वहां आवाज थी, वहां रेडियो पहुंचा। मेरी कहानियां गांव की आवाज बन गईं।
4: मैं उपेंद्र नाथ अश्क। संवाद जितना सरल होगा असर उतना गहरा होगा। रेडियो नाटक में शब्द नहीं, संवेदना बोलती है। रेडियो नाटक में सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है।
5: देखिए भाई, रेडियो की ये दुनिया बड़ी निराली है। यहां शब्द ही सब कुछ है, ना रंग ना मंच, फिर भी पूरा संसार खड़ा हो जाता है।
2: हाँ अश्क साहब, और यही इसकी ताकत भी है। यहां सच छिपाया नहीं जा सकता, आवाज सीधे दिल तक जाती है।
3: और कल्पना की उड़ान भी। यहाँ श्रोता अपनी अपनी दुनिया खुद रचते हैं। हम सिर्फ बीज बोते हैं, पेड़ तो उनकी सोच में उगता है।
4: यही कारण है कि नाटक सिर्फ मंच तक सीमित नहीं, आकाशवाणी ने उसे घर घर पहुंचा दिया।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
4: देखिए मंटो साहब, रेडियो ने हमें कागज से उठाकर सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया।
2: हाँ अश्क साहब, यहाँ कहानी लिखी नहीं, जी जाती है। हर आवाज में एक सच्चाई होती है। रेडियो ने हमें ईमानदार भी बनाया है
3: जी।
2: यहाँ दिखावा नहीं चलता, सिर्फ असर चलता है।
4: बिल्कुल।
3: और असर तभी होगा जब कहानी दिल से निकले, चाहे वो दर्द हो, हंसी हो या सच्चाई। और वही सच्चाई श्रोताओं को बांध लेती है। जब हमारा नाटक प्रसारित होता है तो हर घर एक रंग मंच बन जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: सही कहा। रेडियो ने हिंदी और उर्दू दोनों को एक ही धड़कन में पिरो दिया है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
2: और यही वजह है कि हमारे किरदार अब सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की आवाजों में बसते हैं
3: जी। और सोचिए, बिना मंच बिना पर्दा, सिर्फ आवाज।
2: हाँ।
3: और फिर भी कितना असर।
2: वाह।
4: जब तक शब्द है ये तरंगे चलती रहेंगी
3: जी।
4: ये माइक सिर्फ मशीन नहीं है, ये हमारी आवाज को अमर कर देता है।
2: और हमारे सच को भी, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो।
3: और हमारी कहानियों को
2: जी,
3: जो हर घर तक पहुंचती हैं
2: जी। जी जी,
6: इन शब्दों में वही जादू है जिसने 90 वर्षों से आकाशवाणी को जीवंत रखा है। अश्व मंटो और कृष्णचंद्र जैसे रचनाकारों ने न केवल नाटक लिखे बल्कि आवाज को आत्मा दी।
1: इन महान साहित्यकारों की आवाजें आज भी गूंजती हैं आकाशवाणी के गलियारों में।
6: आकाशवाणी, जहां कभी स्याही की खुशबू से नाटक जन्म लेते थे और आज कीबोर्ड की टकटक से।

0: अश्क साहब
1: जी,
0: आप लोग सच में हाथ से पूरा नाटक लिखते थे?
1: हाँ।
0: इतनी मेहनत और फिर लाइव प्रसारण?
1: मेहनत ही तो असली पूंजी थी। स्याही से लिखे हर शब्द में ठहराव होता था, सोचने का वक्त मिलता था।
0: अच्छा।
2: और काट छाट भी आसान नहीं थी, गलती हुई तो पूरा पन्ना फिर से लिखो। आज तो डिलीट का बटन है, उस वक्त सब्र था।
3: बिल्कुल, मगर मजा भी था। हर शब्द

0: जैसे दुनिया फतेह कर ली हो। जब मैंने ऑडिशन दिया था उस समय चिरंजीत जी थे, सत्येंद्र शरद जी थे और दीनानाथ माथुर जी थे। सब अपनी कला में गुरु थे अपने फन के। जो हमारा तलफ्फुज है, किस तरह से शब्दों को तोल मोल कर बोलना है, ये सब उन्हीं ने सिखाया हमें। हमारी रिहर्सल हुआ करती थी और अगर हम पेन ना लेकर जाएं, ऐसे देखते थे कि पेन लेकर नहीं आते ड्रामा सेक्शन में, जबकि सबको स्क्रिप्ट मिलती थी तो उसमें करेक्शंस करनी है, पॉजेस बनाने हैं, कैसे पॉज के ऊपर एक लाइन देनी है, किस शब्द को किस वजन से बोलना है, वो सब बताया जाता था। इतनी बारीकी से सब समझाया जाता था कि आज भी वो हमारे काम आ रहा है, हमारी स्पीच में ये बातें बहुत अहम हैं। आज भी मुझे याद है कि एक बार तिलक नगर का जिक्र आया किसी नाटक में, किसी डायलॉग में, तो मैंने तिलक नगर बोल दिया तो दीना भाई ने उसी वक्त, तिलक नहीं होता, तिलक होता है। तो वो छोटी छोटी सी बातें आज भी याद आती हैं। और उन दिनों में जो बहुत बड़े बड़े नाटक हुआ करते थे स्टेज पे, उनको अभी रेडियो रूपांतर होता था। दर्द आएगा दबे पांव शीला भाटिया का नाटक था जो हम रिकॉर्ड करने आए थे। बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आए, हमारे वो जो लुक आफ्टर करते थे प्रोडक्शन को, वो हमारी प्रॉपर्टी का ट्रंक भी उठा कर ले आए थे। तो वहाँ पर इतना हंसे हम लोग कि रेडियो पे प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो साउंड इफेक्ट्स होते हैं। फिर वो दौर गया, बहुत बढ़िया सफ़र रहा। और आज कितने लोगों के साथ हमने काम किया है, पर हाँ, जो इनिशियल हमारी फाउंडेशन थी, जो हमारी नींव रखी गई, वो तो दीनानाथ जी और सत्येंद्र शरद जी इनके द्वारा ही रखी गई। उनके नाटकों में काम करके ही हमारे को आज वो सब मिला है जो हम अपने फन के लिए, अपने थिएटर पे, फिल्म्स में, टेलीविज़न में, जो हमारी डायलेक्ट डिलीवरी है उसमें अगर कुछ भी ठीक है तो वो इन्हीं लोगों की गाइडेंस की वजह से है। और क्या क्या एक्टर होते थे, वीएम बडोला जी, श्याम अरोड़ा जी, उत्तरा थी, दीनानाथ जोशी होते थे, ओम शिवपुरी जी। लेकिन स्टूडियो आज वही है, वही स्टूडियो है। तब उसे स्टूडियो नंबर 5 बोलते थे, आजकल स्टूडियो नंबर 1 है। लेकिन वही जगह, वही स्टूडियो, जब भी वहां पर जाते हैं तो सारी पुरानी यादें ताजा हो आती हैं।
1: एक यात्रा जो शब्दों से शुरू होकर दिलों तक पहुंचती है।
2: आकाशवाणी, शब्दों और संवेदनाओं का अमर सफर, जहां शब्द ही दृश्य हैं और आवाज ही अभिनय।
3: यहाँ नाटकों में कोई मेकअप नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, रेडियो पर तो बस कलाकार की आवाज ही टूल है, और श्रोता को उस दुनिया में लेकर जाना जो वास्तव में श्रोता देखता नहीं था लेकिन फिर भी देखता था। आवाज का ताना बाना ही कुछ यूं होता था, और उतार चढ़ाव, रुकना, हंसना, बोलना, रोना, ये सब कुछ इसी आवाज के करिश्मे का असर होता है। आवाज ही कलाकार का, रेडियो के कलाकार का चेहरा बन जाती है। अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के दिलों तक पहुंचना होता है। सच में मौन भी कभी कभी मुखर हो जाता है। इतने वर्षों तक अनगिनत नाटक किए, अनगिनत किरदार निभाए, लेकिन हर बार माइक के सामने खड़े होकर वही उत्साह, वही जिम्मेदारी महसूस होती है।
4: यहां चेहरे नहीं दिखते लेकिन दर्द और खुशी सब सुनाई देता है। यहां अभिनय आंखों से नहीं, आत्मा से होता है।
5: बिल्कुल, और हर शब्द एक दृश्य बन जाता है। यही तो रेडियो का जादू है, कल्पना का थिएटर।
4: सही कहा, माइक्रोफोन के सामने चेहरा नहीं, भावना चाहिए। रेडियो नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, साहित्य का जीवंत रूप है।
6: सही कहा, यहाँ अभिनय शरीर से नहीं, आत्मा से होता है,
5: और हर शब्द एक दृश्य बन जाता है।
4: बिल्कुल।
1: प्रारंभिक दौर 1936 से 1947, आकाशवाणी के रेडियो नाटकों को आकार देने में कई निर्माताओं और निर्देशकों की अहम भूमिका रही।
3: ये तो एक साधना है, इसी साधना का हिस्सा रही वो रिहर्सल्स, जहां स्क्रिप्ट कैसे मार्क की जाती है, उच्चारण का क्या महत्व है, डिक्शन कैसे प्रभावशाली बनाता है, भाषा का ज्ञान कितना आवश्यक है, किरदार को समझना, उसके क्षेत्रीयता को समझना, उसकी बैकग्राउंड को समझना, ये सब कुछ समझकर ही फिर वो किरदार

0: अपनी शक्ल पाता है। स्क्रिप्ट मार्क करना बहुत ज़रूरी। मार्क करना मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ किस शब्द पर जोर देना है, कहाँ छोटा पॉज है, कहाँ बड़ा पॉज है। हर कलाकार अपनी शैली विकसित कर लेता है। हमारे एक निर्देशक थे जो बहुत जोर देते थे कि भाई तुम्हारे हाथ में रिहर्सल के दौरान पेन या पेंसिल ज़रूर होना चाहिए। ये भी डिसिप्लिन का एक हिस्सा है, साधना का एक हिस्सा है कि स्क्रिप्ट को मार्क करिए। अभी जो बताया जा रहा है आप यहाँ रिहर्सल रूम से बाहर निकलते ही भूल जाएंगे, इसलिए इसे मार्क कीजिए और निर्देशक जो कह रहा है उस पर गौर कीजिए।
1: ये कहानी है उन आवाजों की जो दिखाई नहीं देती लेकिन दिल में बस जाती हैं।
0: बचपन का किस्सा यूं है कि लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और उन दिनों में स्क्रिप्ट ना साइक्लो स्टाइल होती थी और कागज भी मोटा होता था, और मेरी तो हाइट भी इतनी कम थी, बच्ची थी, कि मेरे लिए वहाँ एक पेडेस्टल रखना पड़ता था खड़े होने के लिए। लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, उसमें दो मुख्य भूमिकाएं थी, एक वयस्क की और एक बच्चे की। जब तक हम आधे रास्ते पहुँचे ब्रॉडकास्टिंग में तो पता चला कि मेरे हाथ से स्क्रिप्ट छूट गई। अब स्टूडियो में पैनिक, कोई बोल तो सकता नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्ट चल रहा है, आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो मेरे साथी कलाकार जो वयस्क व्यक्ति का रोल कर रहे थे, उन्होंने एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, मुझे गोद में उठाया और अपनी स्क्रिप्ट में दिखाते हुए कहा कि मतलब इशारा किया कि मैं यहाँ हूँ, ये लाइन बोल रहा हूँ और तुम्हारी यहाँ लाइन है। और वो कलाकार और कोई नहीं, ओम शिवपुरी जी थे, जिन्होंने बाद में फिल्मों वगैरह में बहुत काम किया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत ज़रूरी रहती है। आकाशवाणी मेरा विद्यालय बन गया। मैंने यहाँ अपनी आवाज़ की बारीकियों को समझा और शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को जीना सीखा। सच कहूँ तो हर भूमिका ने मुझे कुछ नया सिखाया। और माइक मेरे लिए एक यंत्र नहीं, मेरा साथी बन गया, जिसके सामने मैं हर बार एक नया जीवन जीती रही।
2: आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रेडियो नाटक रिकॉर्ड हो रहा है।
3: बहुत अच्छा है।
4: ओके
3: ओके,
5: माइक टेस्ट
4: नहीं, फट रही आवाज,
3: फट रही आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, लेवल अप एंड डाउन है। हाँ जी,
5: साइलेंस प्लीज।
6: आज के लाइव नाटक के लिए तैयार हो जाएं।
5: मेरा नाम दीनानाथ है, मैं रेडियो नाटक का प्रोड्यूसर रहा हूं। स्टूडियो में हर सन्नाटा भी एक संवाद है, एक ध्वनि है, उसे सुनना ही निर्देशन है। माइक्रोफोन आपका मंच है, आवाज में ही अभिनय चाहिए।
6: जल्दी कीजिए, 5 सेकंड में ऑन एयर। स्टूडियो की लाल बत्ती ऑन ही ध्वनि संकेत है और ये रहे हम ऑन एयर।
7: मेरा नाम सत्येंद्र शरत है, मैं रेडियो नाटक का प्रोड्यूसर रहा हूं। हर नाटक सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होता, ये एक अनुभव होता है। हर नाटक एक जिम्मेदारी है, सिर्फ मनोरंजन नहीं।
8: मैं चिरंजीत, प्रोड्यूसर रेडियो नाटक। आवाज का उतार चढ़ाव ही दृश्य बनाता है। कैमरा नहीं है लेकिन दुनिया है। माइक्रोफोन के सामने कोई चेहरा नहीं चलता, सिर्फ आवाज चलती है। आवाज की गहराई ही दृश्य बनाती है। कल्पना की उड़ान एक आवाज, और श्रोता अपने मन में पूरा शहर बना लेते हैं।
0: मैंने जिस समय ब्रॉडकास्टिंग शुरू की और आज के बीच में, तकनीक में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। शुरुआती समय में रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती थी। रात 9 बजे से 10 बजे तक का हर हफ्ते 1 घंटे का नाटक लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इफेक्ट्स भी लाइव लगते थे। दरवाज़ा खुल रहा है, खिड़की बंद हो रही है, बरसात है, बादल गरज रहे हैं, पत्तों पर चल रहे हैं, हवा चल रही है, सब कुछ लाइव लगता था। फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सब इंट्रोड्यूस हुए और आज निहायत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बदलाव के सफर की हम सफर रही।
8: सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर चुनौती वही है, दिल को छूना। तकनीक बदल गई है, लेकिन कहानी अगर सच्ची नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्याही से लिखी है या कंप्यूटर से।
1: स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1970 रेडियो नाटक अपने स्वर्ण काल में पहुंचे। इस समय हवा महल जैसे कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए।
2: और फिर प्रयोग और विस्तार का दौर 1970 से 1990। इस काल में रेडियो नाटकों में नए प्रयोग हुए, तकनीकी रूप से नाटक अधिक प्रभावशाली बने।
0: आकाशवाणी के स्वर्णिम दौर का मैं हिस्सा रही, मुझे बहुत गर्व है इस बात का। उस समय रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ माध्यम था और उसी माध्यम से श्रोताओं के दिलों तक पहुंचना होता था।
1: आकाशवाणी ने रेडियो नाटक को जन जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।
4: नया रेडियो नाटक आने वाला है, सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है?
9: चलो
4: बैठ जाना, लेकिन बेटा पहले जाके ना चाय बना के सबके लिए।
10: हर रविवार नया नाटक, घर में उत्सव जैसा माहौल।
11: हम जानते थे लाखों लोग हमें सुन रहे हैं।
10: यही है रेडियो नाटक का जादू, न मंच न पर्दा, फिर भी दुनिया हमारी।
11: और हर आवाज एक कहानी, और हर कहानी एक जिंदगी।
12: मैं दिनेश वर्मा, आकाशवाणी दिल्ली और रेडियो नाटक का हिस्सा होना मेरे लिए महज एक काम नहीं बल्कि एक रूहानी सफर रहा है। रेडियो नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ कलाकार के पास चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज होती है। हमने यहाँ सीखा कि कैसे एक हल्की सी सांस या आवाज का उतार चढ़ाव श्रोताओं के दिल में एक तस्वीर बना सकता है। दिग्गज प्रोड्यूसरों के साथ काम करते हुए जो अनुशासन और बारीकियां हमने सीखी ना, वो आज भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने सीखा कि शब्दों में रंग और आवाज में जज्बात कैसे भरे जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि बिना देखे भी सिर्फ अपनी आवाज की बारीकियों से सुनने वालों के जहन में एक पूरी दुनिया कैसे खड़ी की जाती। रिहर्सल रूम की वो चाय, स्क्रिप्ट पर की गई वो घंटों की चर्चा और फिर फाइनल रिकॉर्डिंग का वो रोमांच। लोग कहते हैं कि रेडियो सिर्फ सुनने की चीज है, पर मैं कहता हूं कि रेडियो सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। हमारे लिए माइक्रोफोन के सामने खड़ा होना किसी इबादत से कम नहीं है। आज भी जब स्टूडियो की वो लाल लाइट जलती है ना, तो दिल की धड़कन वैसे ही बढ़ जाती है जैसे पहले दिन बड़ी थी। रेडियो नाटक की दुनिया में हम कभी राजा बने, कभी फकीर, तो कभी एक आम आदमी, बिना मेकअप और बिना कैमरे के सिर्फ अपनी रूह और आवाज से किरदारों को जिंदा करना एक जादू ही तो है। आकाशवाणी के गलियारों में आज भी उन पुराने नाटकों की गूंज सुनाई देती है। ना कोई लिबास और ना ही कोई साजो सामान, रेडियो तो बस रूह से रूह की एक पहचान है।
13: अब हम डिजिटल रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन भावना वही पुरानी है।
10: जैसे पहले लोग रेडियो पर कान लगाकर सुनते थे, आज भी रेडियो के साथ लोगों का वैसे ही जुड़ाव है।
14: मैं गीता वर्मा, आकाशवाणी का ड्रामा सेक्शन हमारे लिए एक पाठशाला की तरह रहा है। प्रोड्यूसर्स की वो डांट और प्यार दोनों ने ही हमें तराशा है। उनके सानिध्य में रहकर मैंने सीखा कि आवाज का उतार चढ़ाव यानी मॉड्यूलेशन ही एक कलाकार का सबसे बड़ा शस्त्र है। माइक्रोफोन के सामने सिर्फ संवाद नहीं बोले जाते, बल्कि अपनी सांसों और टोन से किरदार की रूह को छूना पड़ता है। सफल रेडियो नाटक के पीछे शब्दों की शुद्धता और समय की पाबंदी का बड़ा महत्व है। कभी कभी लगता है कि हम कलाकार तो बस एक माध्यम है, असली जादू तो उन आवाजों में है जो हवा के जरिए लोगों के बंद कमरों और खुले दिलों तक पहुंचती हैं। रेडियो वो कैनवास है जहां हम अपनी आवाज के रंगों से श्रोताओं के मन में चित्र उकेरते हैं। यहाँ कोई चमक धमक नहीं, बस जज्बात की सच्चाई होती है। जो मीलों दूर बैठे किसी अजनबी को भी अपना बना लेती है।
2: भले ही आज नए माध्यम आ गए हों, लेकिन रेडियो नाटक की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है।
1: आकाशवाणी ने हवा महल जैसे कार्यक्रमों के जरिए रेडियो नाटक को लोकप्रिय बनाया।
2: 90 साल,
1: हजारों नाटक,
2: लाखों आवाजें,
1: ये कहानी खत्म नहीं होती,
2: क्योंकि जब तक आवाज है
1: रेडियो नाटक जीवित रहेगा।
2: आकाशवाणी के रेडियो नाटकों ने भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया है। यह न केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि शिक्षा और जागरूकता का प्रभावी माध्यम भी बना। आज भी इसकी विरासत भारतीय प्रसारण इतिहास में अमूल्य स्थान रखती है।
1: आकाशवाणी, जहां आवाजें कभी बूढ़ी नहीं होती।
2: आकाशवाणी नाटक, जहां शब्द आज भी हवा में जीवित हैं।
1: आज भी आकाशवाणी दिल्ली अपनी नाटकों के जरिए संदेश, संस्कृति और संवेदना को जीवित रखे हुए है।
2: अगर शब्दों को पंख मिले हैं तो वो आकाशवाणी ही है।
1: ये सिर्फ एक रेडियो नहीं,
2: ये हमारी रूह की आवाज है।
9: आवाज कभी खत्म नहीं होती।
15: आवाज कभी खत्म नहीं होती।
16: हम हैं आवाजें।
15: हम हैं आवाजें।
17: हम हैं कहानियां।
15: हम हैं कहानियां।
18: हम हैं रेडियो नाटक।
15: हम हैं रेडियो नाटक।
14: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अभी आप सुन रहे थे एक विशेष नाटक, हवा में गूंजते शब्द, 90 साल की यात्रा। आलेख समीर और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे राघवेंद्र तिवारी, राजेश बख्शी, प्रज्ञा झा, मयंक मनिल मिश्रा, सुयश दीप सिंह, नितिन गुप्ता, वैभव पाल, हर्षित सिंगल, ऋषि उनियाल, दिव्यांका ठाकुर, नेहा शर्मा, सलीम खान, अदिता चौधरी और रघु राम।
19: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म मन से ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन

0: उनकी पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श

0: के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ye hamari sabse badi prathmikta hai.

11:30 पर। 11:45 पर कवालियाँ नश्र की जाएंगी, फ़नकार होंगे मोहम्मद हयात कवाल और हमनवा। आलमी खबरें शब के 12 बजे नश्र की जाती हैं।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक फनकार सिलसिले के तहत लीजिए सामिन समात फरमाइए चंद गैर फिल्मी गज़लें।

0: करने और सरकार की मंजूरी के बगैर मीडिया ब्रीफिंग करने के तनाजुर में मुअत्तल किया गया है। थाईलैंड ने हेंता वायरस के फैलाव से मुतालिक बढ़ती आलमी तशवीश के दौरान इस बीमारी को ख़तरनाक मुतादी मर्ज करार दिया है। मुतादी अमराज से मुतालिक थाईलैंड की कौमी कमेटी ने सख्त इकदाम को मंजूरी दी है, जिनमें मुश्तबा मामलों की 3 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्टिंग, 12 घंटे के अंदर मर्ज की तशखीस और ज़्यादा ख़तरा लाहक करीबी रबतों का 42 दिन का क्वारंटीन शामिल हैं। हुकाम ने जानवरों के जरिए कुतरे गए लोगों या शदीद खतरात वाले इलाकों का माजी में सफ़र कर चुके लोगों को मशवरा दिया है कि वो तेज़ बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसी अलामत नज़र आने पर फौरी तौर पर इलाज कराएं। हंता वायरस बुनियादी तौर पर कुतरने वाले मुतासरा जानवरों, उनके पेशाब, लुआब और फजले के जरिए फैलता है। हंता वायरस का इंसान से इंसान फैलाव का इम्कान बहुत कम है। भारतीय महकमा मौसमियात ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल गर्म और मरतूब मौसमी हालात की भी पेशगोई की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख तक केरलम पर छा जाने का इम्कान है। इस तारीख में 4 दिन की मामूली कमी बेशी हो सकती है। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वां सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज़ रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा ने क़याम अमन और आबोहवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज़्यादा मजबूत कसी रुखी कार्रवाई पर ज़ोर दिया है। CBI ने नीट UG 2026 सवालिया पर्चा लीक केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने RG कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 IPS अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और ताजखंड में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 और चांदी के 7 कर तारीख रकम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आज हमारे हेल्थ टिप्स का मौजू है रीढ़ की हड्डी। सामेन, जैसा कि हम जानते हैं रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम है और इसकी हम किस तरह हिफाजत कर सकते हैं, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। आप प्रोफेसर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली के शुभाय हड्डी में।
2: स्पाइन की जो बीमारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो जन्म से ही शुरू हो सकती हैं। अच्छा। जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार उनकी बनावट ऐसी होती है कि रीढ़ की हड्डियां जो पीछे हैं वो पूरी अच्छे तरीके से बनती नहीं है, तो अंदर की जो स्पाइनल कॉर्ड है, नसें जो हैं, वो कई बार बाहर रह जाती हैं। तो बचपन से ही शुरू हो सकती हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो रिकेट्स की बीमारी में टेढ़ापन आ सकता है। जब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें भी रीढ़ की हड्डियां में टेढ़ापन आ जाता है, आपने देखा होगा कई लोग की कमर बिल्कुल टेढ़ी होती है या आगे बहुत ज़्यादा झुके हुए होते हैं बच्चे। इसके अलावा यंग एज में एक्सीडेंट से हड्डियां टूट सकती हैं, तो रीढ़ की हड्डियां भी टूट सकती हैं। लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो लोग ऑफिस में बहुत समय तक बैठ के काम करते हैं उन लोगों को कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये भी बहुत आम पाया जाता है आजकल। और इसके अलावा जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो होती है, जो उम्र की वजह से बदलाव आ जाते हैं, उसकी वजह से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और महिलाओं में तो हड्डियां कमज़ोर भी हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जैसे कि TB है, TB भी रीढ़ की हड्डियों में हो सकती है। तो ये कि हर चीज़ हो सकती है, जो भी किसी भी शरीर के अलग और किसी भाग में हो सकती है, वो सारी चीज़ें स्पाइन में भी हो सकती है। आपको अपने स्पाइन का ख्याल रखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं वो एकदम बीच में हैं, उसके साइड्स में जो हैं मसल्स होती हैं, और हमारा पूरे शरीर का जो आकार है, जो वजन है, वो सब रीढ़ की हड्डियों के से ही जा रहा होता है। अगर आसपास की मांसपेशियां जो मसल्स हैं अगर वो स्ट्रांग नहीं

0: होंगी तो वो जल्दी थक जाएंगी, जल्दी थक जाएंगी तो फिर वो दर्द करेंगी। तो कमर का दर्द या पीठ में जो दर्द होता है लोगों को, वो सिर्फ रीढ़ की हड्डियों की वजह से नहीं होता है, वो कई बार मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से भी हो जाता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि चाहे जितनी भी लाइफस्टाइल बिजी हो, लेकिन अगर वो 10 मिनट 15 मिनट रोज़ हम सब अगर एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डियों की जो एक्सरसाइज होती है, कमर की जो एक्सरसाइज होती है, अगर ये 10-15 मिनट भी रोज़ अगर हम रोज़ करेंगे तो हमारी धीरे धीरे वो मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी। मसल्स स्ट्रांग होंगी तो जल्दी थकेंगी नहीं, जल्दी थकेंगी नहीं तो वो दर्द नहीं करेंगी। और आजकल एक्सरसाइज के अलावा उनको विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, अपने डाइट का भी ख्याल रखना है, अपने वज़न का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वज़न भी बढ़ता जाए धीरे धीरे। तो आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है, स्पोर्ट्स खेलने हैं, वज़न बढ़ने नहीं देना, क्योंकि वज़न बढ़ेगा तो फिर वही वज़न आपकी रीढ़ की हड्डियों के ज़रिए नीचे जाएगा और फिर उसमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। और ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो उसके लिए शुरू से ही अगर हम ख्याल रखेंगे और टेस्ट करा लेंगे तो हम उससे भी बच सकते हैं। लंबे समय तक बैठने के लिए पोस्चर इम्पॉर्टेंट होता है और स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डेफिनेटली जो, क्योंकि इंडोर्स काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी स्पाइन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, हम उसकी वजह से ही बैठ पाते हैं, उसकी वजह से ही खड़े हो पाते हैं, उनकी वजह से ही हमारा आकार होता है, हमारी हाइट होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इलाज होता है, वो हम चर्चा कर ही चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन, कि हमें ये समस्याएं हो ही ना। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, अगर आप रीढ़ की हड्डियों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स आपकी बैक की मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, गर्दन की मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड। इसके अलावा आपको नियमित एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, जिसमें विटामिन डी भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन्स भी हो, और अपने वज़न का ख्याल रखें, वज़न ना बढ़ना दें। शरीर का वज़न जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रीढ़ की हड्डियों पर जोर पड़ेगा। बच्चों को मैं खासकर एडवाइस देना चाहूँगा कि खूब आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, धूप में खेलें, ताकि उनको विटामिन डी मिलता रहे, उनकी मसल स्ट्रांग रहें। और बस यही बोलना चाहूँगा, पोस्चर का बहुत ज़रूरी है, कि पोस्चर वर्क प्लेस पे बहुत आम प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो उसके लिए भी पोस्चर अपना सही मेंटेन रखें, बीच बीच में ब्रेक्स लें।
1: सामीन, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब की बातें आपको पसंद आई होंगी। अपने मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए हम डॉक्टर राहुल खरे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सामीन, आज के हेल्थ टिप्स में हमारा मौजू था स्पाइन हेल्थ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। पेश खिदमत है स्टूडियो मुशायरा।
2: सामीन की खिदमत में कलीम अहमद का आदाब। सामीन, बज़्म मुशायरा में हर सदा का अलग अलग रंग होता है, कोई दर्द सुनाता है तो कोई खुशबू बिखेरता है, किसी के अशार में चांदनी सी नरमी है तो किसी के लहजे में बिजली सी तेजी। एक शायर दिल को सुकून देता है तो दूसरा दिल में हलचल मचा देता है, कोई इश्क की बात करता है तो कोई हकीकत का आईना दिखाता है, कुछ आवाज़ें नर्म सरगोशी जैसी होती हैं तो कुछ गूंजती गरज की तरह लगती हैं। हर शायर का अंदाज जुदा, मगर सबका मकसद दिल तक पहुँचना है। कहीं गज़ल में मिठास है तो कहीं नज़्म में तलखी का एहसास। बज़्म में हर कलाम अपनी पहचान बनाता है, मगर असर का मेयार मुख्तलिफ होता है। यही बज़्म मुशायरा का हुस्न है कि यहाँ फ़र्क में भी हमाहंगी मिलती है। आइए सुनते हैं ये मुशायरा, जिसकी निज़ामत कर रहे हैं जनाब मोईद रशीदी।
3: हज़रात, आज के इस मुशायरे में 3 शुरा मौजूद हैं। खाकसार मोईद रशीदी हमारे ज़माने के जो मासिर शुरा हैं, उनमें बेहद मुमताज़ डॉक्टर रागिब अख्तर और डॉक्टर सालिम सलीम। आज की ये जो नस्ल है उसमें जो नुमाइंदा आवाज़ें हो सकती हैं उनमें ये दो नाम हैं, और ये खाकसार भी उसी नस्ल का हिस्सा है। इससे कबल कि मैं अपने इन दोनों दोस्तों को زحمت کلام

0: दूँ, मैं एक गज़ल के कुछ शेर हाजिर करता हूँ। सिराज औरंगाबादी की ज़मीन है और ये गज़ल। कभी आसमान पे चांद था, कभी रात तारों भरी रही।
1: वाह,
0: कभी आसमान पे चांद था, कभी रात तारों भरी रही। मैं शहीद जुर्मे निगाह था, मेरे साथ बेखबरी रही। कभी आसमान पे चांद था, कभी रात तारों भरी रही। मैं शहीद जुर्मे निगाह था, मेरे साथ बेखबरी रही। तेरे नाम का मैं चराग लेके निकल पड़ा था हवाओं में। तेरे नाम का
1: मैं चराग लेके
0: निकल पड़ा था हवाओं में। न तो खौफ था कभी आंधियों का, न फिक्रे बखिया गरी रही। तेरे नाम का मैं चराग लेके निकल पड़ा था हवाओं में।
1: क्या कहने,
0: न तो खौफ था कभी आंधियों का, न फिक्रे बखिया गरी रही। कभी दो घड़ी रुखे यार पर, कभी दो घड़ी रुखे दार पर। कभी दो घड़ी रुखे यार पर, कभी दो घड़ी रुखे दार पर। जो किया हिसाब दिलो जहां, तो खुला के दर बदरी रही।
2: क्या बात।
0: कभी दो घड़ी रुखे यार पर, कभी दो घड़ी रुखे दार पर। जो किया हिसाब दिलो जहां, तो खुला के दर बदरी रही। कोई कारो बारे नफस नहीं, कोई कारजारे हवस नहीं। कोई कारोबारे नफस नहीं, कोई कारजारे हवस नहीं। सो मिजाजे आईना साज में, वही खुए शीशा गरी रही। कोई कारोबारे नफस नहीं, कोई कारजारे हवस नहीं। सो मिजाजे आईना साज में, वही खुए शीशा गरी रही। पसे राजे कुन फयकू है क्या, सरे जुस्तुजू ये जुनू है क्या।
1: अच्छा,
0: पसे राजे कुन फयकू है क्या, सरे जुस्तुजू ये जुनू है क्या। जो किया सवाले अजल कभी, तो सदाए पर्दा दरी रही।
1: क्या बात है। वा, वा, वा।
0: पसे राजे कुन फयकू है क्या, सरे जुस्तुजू ये जुनू है क्या। जो किया सवाले अजल कभी, तो सदाए पर्दा दरी रही। और इस गजल का आखिरी शेर है कि जो खराब होना था दश्त में, तो हवा के दोष पे चल पड़े। जो खराब होना था दश्त में, तो हवा के दोष पे चल पड़े। कि मरीज़े इश्क के वास्ते, न दवा न चारा गरी रही। जो खराब होना था दश्त में, तो हवा के दोष पे चल पड़े। कि मरीज़े इश्क के वास्ते, न दवा न चारा गरी रही। कभी आसमान पे चांद था, कभी रात तारों भरी रही। मैं शहीद जुर्मे निगाह था, मेरे साथ बेखबरी रही। और कुछ शेर मैं हाजिर करता हूँ गज़ल के, कि नम आँखों में ख्वाब लिए कुछ अपने घरों में बैठे हैं। कुछ अपने महताब लिए तारीक रुतों में बैठे हैं। नम आँखों में ख्वाब लिए कुछ अपने घरों में बैठे हैं। कुछ अपने महताब लिए तारीक रुतों में बैठे हैं। जालिम और मजलूम के सारे फ़र्क मिटा देती है रात। जालिम और मजलूम के सारे फ़र्क मिटा देती है रात। जिन लोगों ने कत्ल किया था, नौहा घरों में बैठे हैं। जालिम और मजलूम के सारे फ़र्क मिटा देती है रात। जिन लोगों ने कत्ल किया था, नौहा घरों में बैठे हैं। जंग में लश्कर पहले अपने अंदर से ही टूटेगा। जंग में लश्कर पहले अपने अंदर से ही टूटेगा। घात लगाए दुश्मन जब अपनी ही सफ़ों में बैठे हैं।
2: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: जंग में लश्कर पहले अपने अंदर से ही टूटेगा। घात लगाए दुश्मन जब अपनी ही सफ़ों में बैठे हैं। वक्त की इज्जत पर जाने कब, किस वक्त पलट जाए बाजी। वक्त की इज्जत पर जाने कब, किस वक्त पलट जाए बाजी। पत्थर मारने वाले सारे शीशा घरों में बैठे हैं।
2: क्या बात है।
0: वक्त की इज्जत पर जाने कब, किस वक्त पलट जाए बाजी। पत्थर मारने वाले सारे शीशा घरों में बैठे हैं। कल जो

0: खंजर पार हुए सीनों में उतर कर राहों के। कल जो खंजर पार हुए सीनों में उतर कर राहों के, आज वो सारे खंजर जाकर चारा घरों में बैठे हैं।
1: बहुत अच्छा।
0: कल जो खंजर पार हुए सीनों में उतर कर राहों के, आज वो सारे खंजर जाकर चारा घरों में बैठे हैं। और एक गज़ल और मैं हाजिर करता हूँ कि एक न एक दिन नफ़रत अपना रास्ता बदलेगी। एक न एक दिन नफ़रत अपना रास्ता बदलेगी, पहले हम बदलेंगे फिर ये दुनिया बदलेगी।
1: बहुत अच्छा बात है।
0: एक न एक दिन नफ़रत अपना रास्ता बदलेगी, पहले हम बदलेंगे फिर ये दुनिया बदलेगी। पहले हम बदलेंगे फिर ये दुनिया बदलेगी, सुबह चराग के बुझते ही फिर क़िबला बदलेगा। सुबह चराग के बुझते ही फिर क़िबला बदलेगा, फिर मख्तल में कोई इबादत सजदा बदलेगी। सुबह चराग के बुझते ही फिर क़िबला बदलेगा, फिर मख्तल में कोई इबादत सजदा बदलेगी। मतला हाजिर करता हूँ कि जुनू में इंतहा होने से पहले, जुनू में इंतहा होने से पहले, न सोचा था खुदा होने से पहले। जुनू में इंतहा होने से पहले, न सोचा था खुदा होने से पहले। बदन पर आज खामोशी लपेटे, बदन पर आज खामोशी लपेटे, चला आया सदा होने से पहले। बदन पर आज खामोशी लपेटे,
1: चला आया
0: सदा होने से पहले। बिछड़ते वक्त कहना था बहुत कुछ,
1: बिछड़ते
0: वक्त कहना था बहुत कुछ, मैं क्या कहता जुदा होने से पहले। बिछड़ते वक्त कहना था बहुत कुछ, मैं क्या कहता जुदा होने से पहले। बिछड़ते वक्त कहना था बहुत कुछ, मैं क्या कहता जुदा होने से पहले। मैं तेरा हूँ ये अब जाना है मैंने, मैं तेरा हूँ ये अब जाना है मैंने। मैं किसका था तेरा होने से पहले, मैं तेरा हूँ ये अब जाना है मैंने। मैं किसका था तेरा होने से पहले, वफा का हर चलन सिखला दिया था किसी ने बेवफा होने से पहले।
1: क्या बात है।
0: वफा का हर चलन सिखला दिया था किसी ने बेवफा होने से पहले। निकल आऊँ तेरी सरहद से बाहर, निकल आऊँ तेरी सरहद से बाहर, मैं खुद से मावरा होने से पहले। और एक गज़ल कि गर्दे महताब का यारा तो किया होता कभी, गर्दे महताब का यारा तो किया होता कभी, अपने ख्वाबों को सितारा तो किया होता कभी। गर्दे महताब का यारा तो किया होता कभी, अपने ख्वाबों को सितारा तो किया होता कभी। जिंदगी और ही दुनिया में तुझे ले जाती, जिंदगी और ही दुनिया में तुझे ले जाती, अपनी मिट्टी से किनारा तो किया होता कभी। जिंदगी और ही दुनिया में तुझे ले जाती, अपनी मिट्टी से किनारा तो किया होता कभी। तूने साहिल के थपेड़ों को नज़र भर देखा, तूने साहिल के थपेड़ों को नज़र भर देखा, मेरी मौजों को इशारा तो किया होता कभी। तूने साहिल के थपेड़ों को नज़र भर देखा, मेरी मौजों को इशारा तो किया होता कभी। ऐ समुंदर की तरफ देखने वाले तूने, ऐ समुंदर की तरफ
1: देखने वाले
0: तूने, अपने तूफान का नज़ारा तो किया होता कभी। ऐ समुंदर की तरफ देखने वाले तूने, अपने तूफान का नज़ारा तो किया होता कभी। हर शबे गम के मुकद्दर में सहर होती है,
1: हर शबे गम के
0: मुकद्दर में सहर होती है, अपने अश्कों पे गुजारा तो किया होता कभी। हर शबे गम के मुकद्दर में सहर होती है, अपने अश्कों पे गुजारा तो किया होता कभी, अपने अश्कों पे गुजारा तो किया होता कभी। हजरात, इन अशार के बाद अब मैं अपने अहद के मुमताज़ लहजे के शायर जनाब डॉक्टर सालिम सलीम को ज़हमत कलाम देता हूँ कि वह अपने अशार से हमें नवाजें।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ शेर मुख्तलिफ गज़लों से हाजिर कर रहा हूँ। हंगामा गर मीन दिनों अशके रवां का है, हंगामा गर मीन दिनों अशके रवां का है, ये सारा

0: रो
1: नहीं
0: नहीं
1: पाया,
0: पाया वो रात, ख्वाब में आने को कह गया था मगर,
1: वो रात ख्वाब में आने को।
0: वो रात ख्वाब में आने को कह गया था मगर, खुशी वो थी कि सहर तक मैं सो नहीं
1: क्या
0: पाया,
1: बात है।
0: खुशी वो थी कि सहर तक मैं सो नहीं पाया, उसको छूते ही अंगारा कैसे बनती है, उसको छूते ही अंगारा कैसे बनती है, देखो मेरी खाक सितारा कैसे बनती
1: क्या बात है,
0: है।
1: वाह वाह।
0: और कुछ शेर एक दूसरी गजल के, मेरे जुनू पे तुम्हें एतबार आए ना आए,
1: मेरे जुनू पे
0: मेरे जुनू पे तुम्हें एतबार आए ना आए, ये सर का जख्म खुलेगा बहार आए ना आए,
1: सर का जख्म
0: ये सर
1: खुलेगा
0: का जख्म खुलेगा
1: बाहर
0: बहार आए ना आए, खुमारे गिरिए पहम है और नींद का बोझ,
1: हमारे।
0: खुमारे गिरिए पहम है और नींद का बोझ, अब इसके बाद कोई गमगुसार आए
1: आए
0: ना
1: ना
0: आए,
1: आए,
0: अब इसके बाद कोई गमगुसार
1: आए ना
0: आए ना
1: आए,
0: आए, भटकता फिरता रहूंगा मैं जंगलों में यूं ही,
1: भटकता फिरता रहूंगा।
0: भटकता फिरता रहूंगा मैं जंगलों में यूं ही, मेरे लिए कोई दरिया के पार आए ना आए,
2: वाह,
0: मेरे लिए कोई दरिया के पार आए ना आए, ये किस कयाम की ख्वाहिश में चल के आए हैं,
1: ये किस कयाम की।
0: ये किस कयाम की ख्वाहिश में चल के आए हैं, जो लोग अपने घरों से निकल के आए हैं,
1: क्या बात है,
0: जो लोग अपने घरों से
1: निकल के
0: निकल
1: आए
0: के
1: हैं,
0: आए
1: क्या
0: हैं,
1: बात है।
0: गए थे सैर को उस बागे हुस्न में लेकिन, गए
1: इस
0: थे सैर को उस बागे
1: में
0: हुस्न में लेकिन, वहां से लौटे तो जैसे के जल के आए
1: क्या
0: हैं,
1: बात है,
0: वहां से
1: लौटे तो
0: लौटे तो
1: जैसे के
0: जैसे
1: जल
0: के
1: के
0: जल
1: आए
0: के
1: हैं,
0: आए हैं, उसे ख्वाब की तस्वीर देखने के लिए,
1: उसे एक ख्वाब की तस्वीर देखने के लिए।
0: उसे ख्वाब की तस्वीर देखने के लिए, हमारी आंखों में क्या क्या धुंधल के आए हैं, हमारी आंखों में
1: क्या क्या धुनाई
0: क्या
1: है।
0: क्या धुंधल के आए हैं। एक गजल देखिए कि इस तरह तन्हाइयाँ अपनी नजाया कीजिए,
1: इस तरह तन्हाइयाँ
0: इस तरह तन्हाइयाँ अपनी नजाया
1: नजाया
0: कीजिए,
1: कीजिए,
0: आपके आशिक हैं हम घर पर बुलाया कीजिए, आपके आशिक हैं हम घर
1: घर
0: पर
1: पर
0: बुलाया
1: बुलाया।
0: कीजिए, और आपकी दहलीज पर बैठा हुआ राही हूँ मैं,
1: आपकी
0: आपकी
1: दहलीज
0: दहलीज पर बैठा हुआ राही हूँ मैं, एक ज़रा घर से निकलिए और साया कीजिए,
2: वाह,
0: एक ज़रा घर से निकलिए
2: और साया
0: और
2: कीजिए,
0: साया कीजिए, छू के कर दीजिए हमें गायब जहाने खाक से,
1: वाह वाह वाह, क्या
0: छू
1: मिसाल।
0: के कर दीजिए हमें गायब जहाने खाक से, जो हकीकत है उसे एक दिन किनाया कीजिए, जो हकीकत है उसे
1: उसे
0: एक
1: एक दिन
0: दिन
1: किनाया कीजिए,
0: किनाया कीजिए, और कत्ल कीजिए शौक से हमको सरे बाजार आप, कत्ल कीजिए शौक से हमको सरे बाजार आप, और हमारी नाश गलियों में फिराया कीजिए,
1: क्या बात है,
0: और हमारी नाश गलियों में फिराया कीजिए, लफ्ज़ और इजहार के सारे वसायल आपके, लफ्ज़ और इजहार के सारे
1: सारे
0: वसायल
1: वसाइल
0: आपके, लफ्ज़ और इजहार के सारे वसायल आपके, अब हमारे पास जो कुछ है पराया कीजिए,
2: वाह,
0: और आपके आने से हम आते हैं अपने आप में,
1: आपके आने
0: आपके
1: से,
0: आने से, आपके आने से हम आते हैं अपने आप में, एक करम कीजिए हमारे पास आया कीजिए,
2: बहुत अच्छा शेर, वाह वाह
0: एक
2: वाह,
0: करम कीजिए हमारे पास
2: आया कीजिए।
0: आया कीजिए, धूप की शिद्दत में सारा हुस्न कुमला जाएगा,
1: धूप की
0: धूप की
1: शिद्दत में,
0: शिद्दत में सारा हुस्न कुमला जाएगा, खोलिए जुल्फों को और चेहरे पे साया कीजिए,
2: वाह,
0: खोलिए जुल्फों को और चेहरे पे
1: साया
0: साया
1: कीजिए,
0: कीजिए। एक दूसरी गजल के कुछ शेर के, एक शोर सरे दीदए तर होता हुआ है, एक शोर सरे दीदए तर होता हुआ है,
2: सीने में
0: सीने
1: कोई
0: में कोई
1: खाक बसर
0: खाक
1: होता
0: बसर होता
1: हुआ।
0: हुआ है, देखें कि कहीं वसल की बाजी न पलट जाए,
1: देखें,
0: देखें कि कहीं वसल की बाजी न पलट जाए, ये मारकए जुल्फ तो सर होता हुआ है,
1: वाह वाह,
0: वाह,
1: क्या बात है,
0: ये मारकए जुल्फ तो
1: तो सर
0: सर होता
1: होता
0: हुआ
1: हुआ है।
0: है, हर रोज नए दश्त में आबाद हुए हम, हर रोज कोई शहर खंडर होता हुआ
1: क्या
0: है,
1: बात है, वाह
0: हर
1: वाह
0: रोज नए दश्त में
1: वाह, वाह
0: आबाद
1: वाह,
0: हुए हम,
1: हर रोज कोई
0: हर
1: शहर
0: रोज कोई शहर खंडर होता
1: होता
0: हुआ
1: है,
0: है, यारा है किसे मंजिल हस्ती की तलब का,
1: यारा है किसे।
0: यारा है कि

0: इससे
1: से पहले
0: पहले
1: और खुदाए रोशनाई जा मैं किरतास में आ, खुदाए रोशनाई जा मैं किरतास में आ, बिसाते मुश्तरी पर अपनी पसपाई से पहले, बिसाते
0: वाह
1: मुश्तरी पर अपनी पसपाई से पहले, सुना है करिए जा में भी शोरे हाव हु था,
0: सुना है
1: सुना है
0: करिए
1: करिए
0: जाम
1: जा में भी शोरे हाव हु
0: था।
1: था, फुगा अंगेज मंजर बाफ तन्हाई से पहले,
0: वाह वाह वाह,
1: फुगा अंगेज मंजर बाफ
0: तन्हाई
1: तन्हाई
0: से
1: से
0: पहले।
1: पहले, हुसूले जात में रद्दे शिकेबाई से पहले, अनल हक कह रहा था मैं
0: जब ईसाई से
1: जब
0: पहले।
1: ईसाई से पहले।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: एक गजल के कुछ और अशआर मुलाहिजा फरमाए। क्या खबर कौन पसे दीदे हैरान रहा है,
0: क्या खबर कौन
1: क्या
0: पसे
1: खबर कौन
0: दीदे
1: पसे
0: हैरान रहा है।
1: दीदे हैरान रहा
0: क्या
1: है,
0: अच्छा मिसरा है, वाह
1: मैं
0: वाह,
1: रहा हूँ कि कोई ख्वाब परेशान रहा
0: बहुत
1: है।
0: अच्छा
1: वाह
0: शेर, क्या
1: वाह वाह,
0: कहना है, वाह वाह वाह,
1: क्या खबर कौन पसे दीदे हैरान रहा
0: वाह
1: है,
0: वाह,
1: मैं रहा हूँ कि कोई ख्वाब
0: ख्वाब
1: परेशान
0: परेशान
1: रहा
0: रहा।
1: है, तोड़ कर दिन मेरी आशुफ्ता मिजाजी का हिसार, तोड़ कर दिन मेरी आशुफ्ता मिजाजी का हिसार, रात के जर्फ पे अंगुश्त बदंदा रहा है,
0: वाह
1: रात के जर्फ पे अंगुश्त बदंदा रहा है,
0: वाह वाह
1: और
0: वाह,
1: आबले सींच के गुलजार बना देंगे इसे,
0: आबले सींच
1: आबले
0: के।
1: सींच के गुलजार बना देंगे इसे, इन दिनों दश्त इसी सोच में गलता रहा है,
0: वाह
1: इन दिनों दश्त इसी फिक्र में गलता रहा है, और बेहिसी दायरे जब्त में महबूस रही, बेहिसी
0: दायरे जब्त
1: दायरे
0: में
1: जब्त में
0: महबूस रही।
1: महबूस रही, और एहसास पसे वहशते जिंदा रहा है, और
0: बादशाह
1: एहसास पसे वहशते जिंदा
0: जिंदा
1: रहा
0: रहा
1: है।
0: है।
1: और कुछ अशआर सुनिए कि
0: अच्छा।
1: मेरी तलब में नए ख्वाब बुनने वाले सुन, मेरी तलब में नए ख्वाब बुनने वाले सुन, मैं कर रहा हूँ बदन खाक के हवाले सुन,
0: वाह वाह
1: मैं कर
0: वाह
1: रहा
0: वाह,
1: हूँ बदन खाक के हवाले सुन, मैं बुझते गांव की परछाइयों से लर्जा था,
0: आहा
1: मैं बुझते गांव की परछाइयों से लर्जा था, निगल रहे हैं मुझे शहर के उजाले सुन,
0: वाह
1: निगल रहे हैं
0: वाह वाह
1: मुझे
0: वाह,
1: शहर के उजाले सुन, और कहीं नहीं हूँ मैं अपने हिसार से बाहर, कहीं नहीं हूँ मैं अपने हिसार से बाहर, सो मेरी ज़ात में आ और मुझको पाले सुन,
0: वाह
1: सो मेरी ज़ात में आ और मुझको पाले सुन, और सुलग रहा हूँ मैं मुद्दत से खाक होकर भी, सुलग रहा हूँ मैं मुद्दत से खाक होकर भी, निगाह फेर ले इस आग को बुझा ले सुन,
0: वाह
1: निगाह फेर ले इस आग को बुझा ले सुन, और पलट के देखने देगी नहीं अना मुझको, पलट के देखने देगी नहीं अना मुझको, सदाएं देके मुझे उस तरफ बुला ले सुन,
0: वाह,
1: सदाएं देके मुझे उस तरफ
0: तरफ
1: बुला
0: बुला
1: ले
0: ले
1: सुन।
0: सुन।
1: और एक नज्म जो है पेश कर रहा हूँ, तो
0: अच्छा
1: नज्म का उनवान है मुनकिरे लफ्ज़ कुम, दश्ते इमकान में मासियत की पहाड़ी तले, एक ताफुन ज़दा लाश लावारिसो बेकफन, एक मुर्दा दरीदा बदन, मुनकिरे लफ्ज़ कुम अपने अतराफ के सारे उरियां मनाजिर की तहकीर करती हुई, चश्मे वा मुंतहाओं में गुम, करकसो जागे जाहो हशम, जिसका उरियां बदन नोच लेने के दर पे हैं वो कौन है, कोई दरियूज अगर दुजद इकलीमो जर, हैफ कोई नहीं
0: वाह
1: जुर्म उसका फकत है यही, कि वो औसाफ फकरात को तर्क करने से कासिर रहा।
0: वाह,
1: एक नज्म हिसार तखफ नज्म का उन्वान है, सितम गराने हरीम शब, ऐसे शब गजीदा चराग से क्या गिला करूं, क्या
0: वाह
1: उम्मीद रखूं,
0: वाह,
1: सितम गराने हरीम शब, ऐसे शब गजीदा चराग से क्या गिला करूं,
0: क्या
1: क्या
0: उम्मीद
1: उम्मीद
0: रखूं।
1: रखूं, हवादिसे जुल्मते शबीना के दाम में क्या गमे स्याहो सफ़ेद रखूं, हवादिसे जुल्मते शबीना के दाम में क्या गमे स्याहो सफ़ेद रखूं, मैं आफताबे कोहन की किरणों को अपनी बोसीदा ख्वाब गह में छुपाए कब से कराहता हूँ, मैं आफताबे कोहन की किरणों
0: वाह
1: को
0: वाह
1: अपनी बोसीदा ख्वाब गह में छुपाए कब से कराहता हूँ, मैं ज़िंदगी की फरेब गाहों में सोख्ता एक सुरमई मौत चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी की फरेब गाहों में सोख्ता एक सुरमई मौत चाहता हूँ, सोए हिसारे तखफ, सोए हिसारे तखफ, तेरे दाम के शिकंजे में कुछ नहीं है, यकीन कर اس عقاب ماضی کے سرخ

0: जेब में कुछ नहीं है।
1: वाह वाह, क्या बात
0: बहुत
1: है,
0: अच्छा,
1: क्या
0: बहुत
1: बात है।
0: अच्छा। नज्म का उन्वान है दुरूने ख्वाब कैद।
1: दुरूने ख्वाब कैद। इरशाद,
0: कैसा लगता है जब अपने ख्वाब के अंदर कैद हो कोई।
1: कैसा लगता है जब
0: कैसा
1: अपने
0: लगता
1: ख्वाब
0: है
1: के
0: जब
1: अंदर।
0: अपने ख्वाब के अंदर कैद हो कोई, खासकर ऐसी हालत में जब जहन किसी ताबीर के लफ्ज़ से नावाकिफ हो।
1: क्या बात,
0: अकवन के पत्तों पर रेंगते कीड़े तुमने देखे होंगे। अकवन के पत्ते पर रेंगते कीड़े तुमने देखे होंगे। मैं भी उन कीड़ों के जैसे, कोए जैसे ख्वाब की कैद में खाबिदा हूँ।
1: वाह
0: मुझको कुछ मालूम नहीं है, ख्वाब मुझे तितली जैसे पर बख्शेंगे या वक्त के इस सैलाब में मेरे ख्वाब ही मेरी कब्र बनेंगे।
1: वाह वाह वाह,
0: वाह
1: क्या बात है,
0: वाह वाह
1: क्या बात है।
0: वाह वाह वाह।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर राग़िब अख्तर, उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत नज़मों और गज़ल के अशार से नवाज़ा। और यकीन जानिए, गज़ल की शायरी तो हमारे यहाँ बहुत होती रही है और हो रही है, लेकिन नज़्म की शायरी करना आसान नहीं है कि उसके लिए जो फ़ज़ा दरकार होती है और जिस तरह का मुतालिया दरकार होता है और एक ख़ास उसलूब जिस तरह पैदा करना होता है, वो कम लोगों के हिस्से में आता है। तो हमारे ज़माने में और हमारी नस्ल में राग़िब अख्तर जैसे नज़्म के शायर मौजूद हैं। आज के इस मुशायरे में डॉक्टर राग़िब अख्तर और डॉक्टर सालिम सलीम, खाकसार मुईद रशीदी, अपने कलाम से नवाज रहे थे।
2: समीन, अभी आप सुन रहे थे ये मुशायरा जिसकी निजामत कर रहे थे जनाब मोईद रशीदी। तरतीबो पेशकश थी जनाब इंतज़ार सैफी की। अब अपने मेज़बान कलीम अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
3: अभी आप मुशायरा समाप्त फरमा रहे थे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। शब के 10:30 हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामिल इरशाद का। मेज़बान मोहम्मद इमरान का प्यार भरा आदाब कबूल कीजिए।

वाइट फील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। आइए सामेन अब सुनते हैं मेला फिल्म का ये नगमा। शमशाद बेगम की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल को मौसीकी से सजाया है नौशाद ने। पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। दादाजी धूनी वाले मार्ग खंडवा मध्य प्रदेश से हसु बाबा और सफिया अरहान खोकर। विदर्भ अकोर से के संजीव डावेराव, सुनीता डावेराव और डॉक्टर कुस्तुब डावेराव और इस नगमे को पसंद किया। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पपी किरण खुराना अल्लबे ने। जयराज पलोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। मंडी हरजी राम मलोर से नथु राम शर्मा, ललित शर्मा और इंद्राज शर्मा। और छोटी बलिया मुंबई कर्जा से अहमद भाई फुलवाले, शमीम अहमद फुलवाले और इमरान अहमद फुलवाले। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और कीर्ति भारती। खांची पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और अशरफ खान। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नज़र।

लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये दो गाना। फिल्म है तराना और इस नगमे को पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। सुब्रत चौधरी कोलकाता से आपने ये फरमाइश भेजी थी और कुमार गली कालेगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा चंदन, कुल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना और सोनू तस्नीम, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, पतौड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल और अंकुल जनागल, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, सामा नवाज और बाबू अहद, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चनाताई गोंडाने और हिरमन शंडे, जय जिनेंद्र लिसनर क्लब परभनी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई और परगेश संघई, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिरामणि वर्मा, पारस मनी वर्मा और पुष्पेंद्र मनी वर्मा। दतरंगी के ही एक और ईमेल है ये भगवत वर्मा की जानिब से, और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान और कल्पित चौहान, राजनगर मधुबनी कांति निकेतन से रुद्र प्रताप गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और दादा ठाकुर, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी, पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा, गांव हिपरसोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और कृष्णा शेख, महनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहकर राही, श्रीमती सरिता गोहकर और अर्जुन गोहकर डुग्गू प्यारे से, यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, मनमोहन राजावत राज मधु राजावत सुरक्षित आप हैं नई राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से, और पुरानी बिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हामिदुन सिद्दीकी और जिशान अहमद सिद्दीकी। बलजिंदर कौर, नवनीत निशु और बाबू सिंह धीमान मुक्तसर पंजाब से, पटियाली रोड गंज डुंडवारा से इरफान कुरैशी, रिहान कुरैशी और फैजान कुरैशी, सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन आपने अच्छा ये लिखा है, नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा जिला सोलापुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल लवंगी वाले, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव। सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा फिल्म तराना से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में।

आइए सामेन, अब सुनते हैं शमा फिल्म का ये नगमा। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में नगमा निगार कैफी आज़मी, तर्ज बनाई है गुलाम मोहम्मद ने, और इंतज़ार है आप सभी दोस्तों को इस नगमे का। विरमगाम गुजरात से अजीत भवसार, परमिला भवसार और भावेश कुमार और इस नगमे को पसंद किया शबनम अकरम और तबरेज ने। आप टिकरी मध्य प्रदेश से धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया, और मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद से शेख ज़ियाउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान और शेख अताउर रहमान। काटा रोड शिवाजी नगर वाशिम से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे और मायरा सुरेशे, अल्तमस समीना मुदस्सिर, जुम्मा नगर खंडवा के ये हैं बच्चे, और कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अंकित दले। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत। मुरादाबाद दुल्लापुर मध्य उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इरफान और मोहम्मद यूनिस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री, चिंपा कॉलोनी खंडवा से। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, राट कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रमेकर, हर्ष रमेकर और अक्षय रमेकर। पुन्ना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत, और इसी नगमे को पसंद किया गांव पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी। अयोध्या नगर राले गांव से विनोद कुमार धावले हैं शायद, और विनुताई धावले, फैज अहमद शाकिर मुल्ला जी और शब्बीर मुल्ला जी, बरगर बेल हुबली कर्नाटक से, और गांव लोगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और राजदीप। बीकानेर राजस्थान से कैलेश चंद्र सोनी, गोविंदा और उत्तम कुमार सोनी। देवरी भाटापारा से क्यार साहू, आकाश और कमलेश। तहसील रोड गंज डुंडवारा से कैचराही, गुड़िया बेगम और वकील। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरादी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। वारन शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान और अंकित चौहान। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता और कीर्ति अरोड़ा। और ये आपने नाम नहीं लिखा दोस्त, ये ईमेल है जनाब प्रभुदास कोटेचा की जानिब से, और इन्होंने कुछ लिख दिया लेकिन अपना हंसाबेन कोटेचा, आशीष कोटेचा, आप हैं जंक्शन प्लॉट राजकोट से। पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद किरण और छाया बंछोर का ईमेल हमें मिला और इसी नगमे को पसंद किया है। महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने, आप हैं रामगढ़ कैंट से।

मोहम्मद, जाकिर मंसूरी, कमरू निशा और शबीता, कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराज से परवीन हागोने, योगिता हागोने और प्रियाली हागोने, मामूलवाड़ी महाराज से स्वपन तारे, वसंत राव भोजने और निवृत्ति अडोकर।

कर्नाटक गुलबर्गा से ही मोहम्मद रुकमुद्दीन मंठाल, शब्बीर बनहट्टी और आसिफ इकबाल की ये पसंद, और सुनना चाहते थे इस नगमे को मॉडल टावर करनाल से सुधीन नूतन, इशप्रीत शर्मा और नूर महर मैसौल, सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तला जहानाज और फरा जहानाज ने, और एडवोकेट नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद आफे फातमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, चिरमिरी कुर्सिया कलाड़ी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह, फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से एम वहीद रुमानी, मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी, प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा और करणवीर करण, आपका ईमेल हमें मिला, चंदखड़ा अहमदाबाद से आनंद राज सागर, तरुलता सागर और अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा, कर्नाटका स्टेट से यह है चिन्ना तिरुपति गांव है, आप हैं प्रकाश, श्याम श्यामला अश्वनी और रमेश साथ में हैं, आनंद मनवित, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से राम जी साहू, जीवनलाल रजक और निमनी साहू, मुताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख वजीर और सुहेल शेख, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर और बेगम रुखसार, मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान बेगम, शमा रफी और पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग, ताज मंजिल लक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसन पवार, और नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई और शेख चांद, कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान, नंदकिशोर घटे, अंजलि कड़वा और बाला साहब करवा आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से, बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी और सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग, अकोट से विनायक बिंडे, श्रीमती मंगला बिंडे और शुभम बिंडे, इसम जावेद, शगुप्तांजुम गुमला झारखंड से, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, जमशेदपुर से अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह और राकेश कुमार, और नलेश्वर नगर नरवेल मारा से पीएस नभाकर, निर्मला नोहाकर और विशाल नोहाकर, राम रतन टाकेज कुंडलवाड़ी से गंगाधर स्वांकर और साथ में विजय लक्ष्मी स्वांकर, आइए सामेन अब सुनते हैं गजल फिल्म का ये नगमा या गजल ही है मोहम्मद रफी की आवाज़ में, और इसकी मौसीकी तरतीब दी है मदन मोहन ने, पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने, साहिल लुधियानवी की ये गजल और मौसीकी से सजाया है मदन मोहन ने, पसंद है आप सभी दोस्तों की। इमाम मंजिल बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार शर्मा, माया देवी शर्मा और वर्मा, माफ कीजिएगा, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा, शंभू दयाल खटक, विमला देवी और योगेश कुमार खटक आप हैं। गांव जाखोद से पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और आरजू जजोरिया, जामिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल, सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे और कृष्णा गोड़खे, रोहिदा चौक पंधारपुर सिटी से भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान और कांति रानी गुंजन, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्केवाली फन्ना झा, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से, और दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति आपका भी ईमेल हमें मिला, पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, आप दोस्तों का शुक्रिया, आपकी पसंद आपकी नज़र।

भगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी, और बंगाली पंजा नागपुर से भारती प्रकाश रामभरे, जाह्नवी रामभरे और वैष्णवी हर्ष रामभरे, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम और दिशानी साथ में ये, और एक नाम है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, कांदला बंदर कस्से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी का भी ईमेल हमें मिला, और धाड़ी नांदोड़ा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाटे, संदीप बाटे और अमूल्य बाटे।

बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से और वार्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी अरोड़ा नाथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी और सीता गीता प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी तनुजा जोशी और दुर्बी जोशी। और ये रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हिमलता और हिना। जामा मस्जिद डुंडवारा से रियाज अहमद अंसारी आफ्ताब अहमद अंसारी और लुबना अंसारी और शास्त्रनगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल और सायराज सपकाल। अमीर खुसरू रोड गंज डुंडवाड़ा से डॉक्टर दबीर हसन बेगम शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम। सामेन सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म है मेरा कसूर क्या और इस नगमे के साथ ही आज का तामिल इरशाद प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान को दीजिए इजाज़त।

0: हमारे साथ ब्राजील हर इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा है। ट्रेड रिलेशंस भी हमें बढ़ाने होंगे क्योंकि कई चीजों में ब्राजील सबसे आगे है, और इसलिए अभी से अगर हम ब्राजील का साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रेड रिलेशंस में तो आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद ये बात साबित होगी, इसलिए जरूरी है कि हम ब्राजील का साथ देते रहें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
2: During the course of two-day foreign ministers meeting, discussion took place around three broader themes: global and regional matters, reform of global governance and multilateral system, and BRICS at 20 under the theme building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. These three sessions allowed members to exchange views and share perspectives on main pillars of BRICS: strategic partnership, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people relations. The session on the theme BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last two decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme building for resilience, innovation, cooperation and sustainability, as well as the future direction of the grouping.
1: BRICS ke theme jo hai usme kaha gaya hai ki hum koshish karenge resilience, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, और उन्होंने बात की है कि रिफॉर्म्स, ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलैटरल सिस्टम। मल्टीलैटरलिज्म पे काफी चर्चा हुई है, इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, शुरू में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो खेमे थे, कम्युनिस्ट खेमा और अमेरिका का खेमा। उसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका का खेमा बचा, और वो भी पूर्व की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यूक्रेन पहुंच गया, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पहले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक आवरण बना करके, भले ये कहा गया था कि ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और पोस्ट वर्ल्ड वार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्ध हो गया कि साहब ये सिस्टम चल नहीं सकता, खासतौर से इसलिए कि छोटे छोटे देशों या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सबके लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा। तो ये माना गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए, और अब मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के चलना, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उन देशों के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढें जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव से, नेशनल इंटरेस्ट से मेल खाता हो, वहां से हम शुरू करें, और तब उस पर हम वो न्यू रहेगी और उस पर एक हम बिल्डिंग बनाए, वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी। अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स का इनोवेशन, रेजिलियंस की आजकल बहुत बात हो रही है, इनोवेशन की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो हमें चाहिए अभी ब्रिक्स कंट्रीज को, क्या बल्कि जो ग्लोबल साउथ को, वो इनोवेशन ज्यादा जरूरी है। जो हमारे संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए हमें कैसे दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मिनरल्स का दोहन कर सकें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मल्टीलेटरलिज्म, हम बहुदेशवादी या बहुक्षेत्रवादिता में विश्वास रखें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
2: The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity and sustainability, health and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course, people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty. Ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the global south. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement.
1: ये भी मांग रही है कि यूएन के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है, तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
0: देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से

0: ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए। वीटो सिस्टम जो है वो एक बीमारी है, मैं कहूँगा। आपने आज की दुनिया में जहाँ लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहाँ पर आपने एक तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया है। अब होता क्या है कि जिस देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, अब वो देश तो वीटो करेगा ही, इसलिए वहाँ पर वो प्रस्ताव टूट जाता है। तो ऐसे में तो कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीटो पावर को खत्म करना या इसको और डाइल्यूट करना, प्रतिनिधित्व पूरक करना, प्रतिनिधित्व परक करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव की सुरक्षा परिषद में बहुत प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उनको भी पावर दी जाए, या मतलब जो वीटो पावर जो 5 कंट्रीज हैं और जो बाकी हैं उनके बीच में शक्ति का असंतुलन वहाँ सुरक्षा परिषद में कम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए, लेकिन इसमें कहाँ तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही है।
1: जियोपॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
0: देखिए, मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है। इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती जाएगी। इसलिए समाधान यही है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है।
1: अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
0: देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड, जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट हैं, जल डमरू मध्य है, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन।
1: ये सारे मैनमेड
0: है, मैनमेड है, लेकिन जो नेचुरल है वो बाबल अंदब है या हुरमुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य या प्रभुत्व नहीं हो सकता। तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहां के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहां से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहां पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है।
1: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में और आपने बड़े चर्चा की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। वक्त हो चुका है कव्वालियों का, तो लीजिए सुनिए मोहम्मद हयात कव्वाल और साथियों से कव्वालियां।

Yeah.

0: 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। इस तरह भारत के लड़कों और लड़कियों ने की टीमों ने इस जुमरे में मजमूई तौर पर 17 तमगे जीते हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फरहमी की खातिर आबनाए हुरमुज के रास्ते को महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का अदा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज़्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखी बीजिंग बातचीत का खैर मकदम किया है और दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तकम बनाने से इत्तफाक किया है। और मकाओ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। क्लास के मौसीकी के बज़्म में लीजिए सामेईन, अब सुनिए सरोद पर बजाया हुआ राग भैरव और राग जौनपुरी। फनकार हैं चंद्रिमा मजुमदार।

चांदनी रात। लीजिए सामिन, इस फिल्म का ये दो गाना सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं शकील बदायूनी, तर्ज बनाई है नौशाद ने।

0: कांस्य के दो तमगे जीते हैं और ताशकंद में 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के दो और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, सबका एक बजा चाहता है। अब उर्दू सर्विस की आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर हम अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंड सिंह ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आर्जीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक आयोजित

0: strict enforcement. A ceremony to mark 118th birth anniversary of Indian anti-colonial revolutionary fighter Sukhdev Thapar, one of the iconic trio of Sukhdev, Bhagat Singh, Rajguru, was held in Pakistan's Lahore yesterday. The event was organized by the Bhagat Singh Memorial Foundation, Pakistan, at the Democratic Lawn of Lahore High Court Bar. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Chennai Super Kings by 7 wickets in Lucknow. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुहानी गोल्डन एरा के। ये ओल्ड हिंदी फिल्म के आपको हम गीत सुनवाएंगे, वो गीत जो आज भी आपके दिलों पर राज करते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों को लेकर हाजिर हूँ मैं अल्पना, और शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस फिल्म मंजिल फिल्म से इस गीत के साथ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में आप ये खूबसूरत सा गीत सुनेंगे।
2: कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरी, जी हाँ, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड हिंदी फिल्म से प्यारे प्यारे नगमे। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म बाजी से।

सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत जो कि हमने आपके लिए चुना है पुरानी फिल्मों से और पुराने नगमे जो कि गोल्डन एरा के नगमे हैं जो आज भी हमारे दिलों पे वैसे ही दस्तक देते हैं जैसे पहले दिया करते थे। तो चलिए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आवाज़ फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।

हाँ, हम भी आपके साथ वादे से जुड़े हुए हैं और लेकर आते रहते हैं प्यारे प्यारे गीत। और चलिए अगला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, रंगोली के फिल्म से।

लीजिए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहुत ही प्यारा गीत है और इसे हमने चुना है फिल्म स्वयंवर से।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे फिल्म संगीत का ही ओल्ड फिल्म गीतों का ही कार्यक्रम है। लेकिन इस प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, समय समाप्त हो रहा है इस कार्यक्रम का। आगे भी सुनते रहिएगा अगले और कार्यक्रमों के

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRL लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कि सुनहरे कार्यक्रम। 2 बजने को है कुछ ही पलों में।

0: समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसी ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। वक्त हो गया है 2:10 और ये वक्त है गीत बहार कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। तो चलिए आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारे प्यारे गीत।

और एक डायरेक्टर के साथ काम काफ़ी कर चुका हूँ जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: गुपचुप अरे आ जा रे फिर वही रात आए जाने जा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, जिसके अंतर्गत आपने सुनी नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के

0: प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने हुर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम की अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माही, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on the

0: Merci.
1: अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। कहते हैं कि प्यार करके कोई जताए ये ज़रूरी तो नहीं, याद करके कोई बताए ये ज़रूरी तो नहीं। रोने वाले तो दिल में ही रो लेते हैं अपने, कभी आँख में आंसू आए ज़रूरी तो नहीं। हमेशा दिल जो है अपने एहसासों को बयां करने में हिचकिचाता रहा है। कभी ये एहसास उसके होठों पर हंसी बनकर उभरते हैं और कभी आँखों में नमी बनकर उभरते हैं। कोई शख्स ऐसा भी होता है ज़माने में जो अपने एहसासों को अपने दिल तक दबा कर रखता है और यूं ही परेशानियों में, मुश्किलों में, दुखों में बस दीवारों से मिलकर रोता है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे मेहदी हसन की आवाज में ये खूबसूरत गजल,
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद

0: बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल की
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
3: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभो।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कलाकार थे सरस्वती राजगोपालन। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रुद्र वीणा। कलाकार हैं सरस्वती राजगोपालन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। सुबह के 4:53 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग अर्ध मत्स्येन्द्रासन की। इसके बाद देशभक्ति गीत और कार्यक्रम स्वर रंजनी आप सुनेंगे 5:30 पर। 6:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में आप अनुराधा पौडवाल, मनोज मिश्रा, उषा मंगेशकर, शरण, ओम शरण और जगजीत सिंह के गाए कुछ भजन सुनेंगे। छः बजकर 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन सुमित्रा नंदन के पंत के विचारों पर रामचरित मानस का समय रहेगा 6:45। कार्यक्रम संगीतिका आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप विनोद कुमार तिवारी के गाए कुछ भजन सुनेंगे। गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगी 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। धरती आकाश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर।

इस कार्यक्रम में आप जो विषय है वैज्ञानिक समाज के विकास में विज्ञान साहित्य का महत्व और अंडमान निकोबार की जैव विविधता। मिट्टी दी महक, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का समय रहेगा 10:10 पर। महिला कार्यक्रम घर आंगन आपके लिए प्रसारित किया जाएगा 12:10 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से 1:10 पर एसएफ कार्यक्रम में आज की फिल्म है बेटी बेटा।

और इसके साथ हम आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे कार्यक्रम ब्रज माधुरी हम आपके लिए लेकर आएंगे। 3:30 पर नाटक 1 करोड़ की बोतल। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नाम जपया वंड सगया देख चलाई देख वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगरियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी

आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इसनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विसोड़िया गया है। खुले दरसर दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया।